0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
4: A very good morning आप सभी को सुप्रभात. आज मंगलवार 25 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं.
0: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
0: Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: A very good morning आप सभी को सुप्रभात. ट्यूजडे की एक खूबसूरत सुबह है और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती का राइज एंड शाइन. मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया और आज की सुबह शुरू करते हैं कुछ ऐसे सदाबहार गाने के साथ जो सिर्फ गाने तो नहीं होते, ये तो यादों के वो पन्ने हैं जिन्हें जब भी खोलते हैं एक पुरानी से मुस्कान चेहरे पर आ ही जाते हैं. कुछ गाने हमें स्कूल के दिन याद दिलाते हैं, कुछ पहली दोस्ती, कुछ पहला प्यार और कुछ बस वो जमाना जब जिंदगी थोड़ी सिंपल थी और खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में

0: मिल जाती थी। तो अगर आप अभी बेड से उठ रहे हैं, चाय बना रहे हैं, किचन में बिजी है, टिफिन की तैयारी में लगे हुए हैं, या सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़े हैं, आज की सुबह हम यादों के नाम करते हैं, तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का कीजिए और कह दीजिए गुड मॉर्निंग सभी को, मेक इट अ ब्यूटीफुल वन। क्योंकि अगर आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ट्यूसडे बहुत ही अच्छे से कटे, तो आप ज़रूर ये कट सकते हैं। चलिए एक खूबसूरत सदाबहार गाना हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं, एंड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स जो सवेरे सवेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे, क्योंकि हर दिन हैप्पी ही होना चाहिए। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट ट्रैक, नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: राइज एंड शाइन, स्टार्ट फ्रेश, स्टे शार्प, वेक अप विद द वर्ल्ड। वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: जी सवेरे सवेरे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. क्या है कि स्कूल ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है, सो आपको हम वो कोश कहते हैं. और यहाँ पर हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं. सो लेट्स हेड टुवर्ड्स देम. जयशन जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आपको. आप अभी ड्राइव कर रही हैं एंड गोइंग टू वर्क. आई होप कि आपने गाड़ी साइड में पार्क कर ली है एंड तब आप मैसेज भेज रहे हैं. सो यस, आपके सभी दोस्तों के नाम तेम्बा उमिरन दानु जीवन अंगुथिया आकाश अरवन रामदेवर मीवन और सभी के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है. और राइट, आपके नाम ही हम एक बहुत ही खूबसूरत गाना डेडिकेट करते हैं. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम, विशिंग यू ऑल ईद मिलाद और नबी मुबारक. तहे दिल से हम आपको भी विश करते हैं बहुत सारी शुभकामनाएं. हैव अ नाइस ब्लेसिंग डे टू ऑल. आप पुश कर रहे हैं अब्दुल और साइरा बानू जी की ओर से ये मैसेज आया है. और यस, हम जरूर एक बहुत ही सुंदर गाना आपके नाम चलाएंगे. एंड ऑल्सो यहाँ पर आपने नाम नहीं भेजा है, बट कह रही है कि हैप्पी डे इट इज़, क्योंकि ऑलरेडी सेंस रेडियो हैज़ बिकम रेडियो मस्ती और एक साल हो गए हैं. एंड यस, इट्स एक साल ऑफ प्यू मस्ती यहाँ पर आप लोगों का साथ मिलता रहे, बस हम यही चाहते हैं. एंड यस, लेट मी टेल यू दैट बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, बहुत सारी गुडीज़ हैं जो आपको मिलेंगे. गेम्स, गिफ्ट्स, बहुत बहुत कुछ होने वाला है. सपोज दैट यू हैव टू स्टे ट्यून टू रेडियो मस्ती. एंड यहाँ पर हमारे साथ कौन है? सुया बिहारी जी हैं, आप हैं कुंगमा से. और हैप्पी ट्यूजडे विश करती है सभी को, सभी दोस्तों को एंड बगन परिवार, किरदर परिवार एंड जो भी लोग आपको जानते हैं. वैसे हम भी आपको जानते हैं, यहाँ पर आप हमेशा साथ निभाती है. सो यस, आपके नाम नेक्स्ट ट्रैक, आपके पूरे परिवार के नाम. वेरी गुड मॉर्निंग. यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड है ललिता जीतन जी. गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड गाने आपको पसंद आ रही है, चलिए आप एंजॉय कीजिए और इस ट्यूजडे को और भी खूबसूरत बनाते चलिए. वेल, यहाँ पर नॉर्मल मैसेजेस भी हम देख रहे हैं. वी हैव नीता, आप है बॉलू से. और एक प्यारा सा गाना आप अपने प्यारे हबी सुभाष के नाम, ग्रैंड चिल्ड्रन नीरव आराध्या एंड मोहिस्वा परिवार के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट गाना उनके नाम.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 35 मिनट हो चुके हैं. सुबह अभी तो पूरी तरह रोशन नहीं हुई है, लेकिन एक नया दिन तो शुरू हो चुका है. और ट्यूसडे मंडे के बाद का वो दिन है जहां हम थोड़ा रिदम पकड़ना शुरू करते हैं. किसी के लिए आज का दिन ऑफिस का है, किसी के लिए बिजनेस का, किसी के लिए पढ़ाई का, और किसी के लिए घर संभालने का. लेकिन चाहे आपका दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, सुबह की ये कुछ पल सिर्फ अपने लिए रखिए.

0: एक कप चाय, एक अच्छा सा गाना, थोड़ी सी फ्रेश हवा और एक पॉजिटिव थॉट, बस इतना ही काफी है मूड को रीसेट करने के लिए। और आज का थॉट, हर सुबह जिंदगी का एक नया मौका होती है। कल जो नहीं हो सका, जरूरी नहीं कि आज भी ना हो, तो आप अपना 100% दीजिए और हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने फिर भी अपना 100% तो दिया, तो कल की टेंशन को कल में ही रहने दीजिए। आज का नया दिन है, आपके पास नए फैसले हैं, नए मौके हैं, और सबसे जरूरी एक और चांस है खुद को खुश रखने का। तो चाय की एक सिप लीजिए या कॉफी, जो भी आपको पसंद है, स्माइल कीजिए और रेडियो मस्ती के साथ इस ट्यूसडे को बनाए एकदम मस्त, और एंजॉय कीजिए हमारे ये गाने। दैट्स मी, आपके रिया आपके साथ, और बढ़ती है नेक्स्ट गाने की ओर।
1: Wake up with the sun and the sound of fun. RM2 Radio.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: चलिए जी अपने घर मिलाते चलिए, 6:45 बज रहे हैं और समय हो चला है आपको बताने का कि आज का दिन आपके लिए कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम, तो हम शुरू करते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। घर परिवार से खुशी मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है और आज आपका लकी नंबर है 9।
2: टॉरस

0: वृषभ राशि। आज धैर्य बनाए रखिए, जल्दबाजी से बचिए, काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको और परिवार का साथ भी मिलेगा। खर्च पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। लकी नंबर है आज आपका 6।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज मन हल्का और खुश रहेगा, किसी अपने से अच्छी बात होगी, काम के सिलसिले में नया मौका मिल सकता है आपको। अपनी बात प्यार से रखिए। लकी नंबर है आज आपका 5।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज परिवार के साथ सुकून भरा समय मिलेगा, पुरानी चिंता कम होगी, काम में आपकी मेहनत नजर आएगी, सेहत और आराम का भी ख्याल रखिए। लकी नंबर है आज आपका 2।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज आपका हौसला बढ़ा हुआ रहेगा, जो काम कुछ समय से अटका था उसमें गति आ सकती है, किसी बड़े की सलाह काम आएगी, दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है आपको और पैसों से जुड़ा कोई अच्छा फैसला हो सकता है, अपनों के साथ समय जरूर बिताए। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: लीब्रा तुला राशि।
0: आज रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, किसी खास इंसान से दिल की बात हो सकती है, काम में नए विचार काम आएंगे और दिन सुकून भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, काम में जिम्मेदारी बढ़ सकती है लेकिन आप उसे अच्छी तरह संभाल लेंगी, पुरानी मेहनत का फल मिलने का योग है। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: आज कुछ नया सीखने या नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है, दोस्तों का साथ मिलेगा, सफर का भी योग बन सकता है और अपनी सुबह पर थोड़ा संयम रखिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज दिन व्यस्त रहेगा लेकिन काम पूरे होने से संतोष मिलेगा, किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें, घर का माहौल अच्छा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज मन में नए ख्याल आएंगे, काम में आपकी सोच की तारीफ हो सकती है, किसी पुराने रिश्ते में फिर से बातचीत हो सकती है, दिन ओवरऑल अच्छा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज दिल को सुकून देने वाली कोई खबर मिल सकती है आपको, परिवार का साथ बना रहेगा और अपने किसी पुराने सपने पर फिर से काम शुरू कर सकते हैं आप, दिन बहुत ही शुभ रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 2। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ मंगलवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:53 और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, बट बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर. तो सोचा क्यों ना हम आपके जो संदेश है आपने अपनों तक पहुँचाया भी. टोटली यहाँ पर सरिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. आप है गुडलैंड से और सभी को विश करती है अ वेरी गुड मॉर्निंग. आपको भी गुड मॉर्निंग और एक साल की बहुत बधाई दे रही है हमें. थैंक यू सो मच. और आप ही की वजह से तो हम हैं और ऐसे ही प्यार हमेशा अपनी उछावट करते रहे एंड गाने आप एंजॉय करते रहिए. सो प्लेंडी भपाई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविश, अविशा, अविनाश, आदु, कृष, करण, ममालीना, दौलत परिवार है हमारे साथ जुड़े हुए. और एक अच्छा सा ट्रैक आपके नाम जरूर डेडिकेट करते हैं. नेक्स्ट ट्रैक जाता है भाई विक्रम विपन के नाम जो अभी काम कर रही है. और आपकी बहन भारती आपको वो ख्वाहिश कहती है. ऑल्सो सभी रेडियो मस्ती स्टाफ के लिए आप एक गाना रिक्वेस्ट करिए. ऑल राइट, हम जरूर. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. यहाँ पर जरूर चलाएंगे एक अच्छा सा गाना. एंड यहाँ पर भरपूर साथ निभा रही है सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम और वर्षी. एंड आप ऐसे ही साथ निभाते चलिए. एंजॉय दिस ट्यूसडे मॉर्निंग हमारे साथ. हमारे साथ ऑल्सो कनेक्टेड है अमृता जी. आप है पॉइंट साबले से और कहती है कि गाना फ्रॉम द मूवी चिट्ठोर आपका फेवरेट गाना था एंड आपने ये बहुत ही एंजॉय किया. सो यही तो हमारा इरादा है कि आपका जो मॉर्निंग हो वो बहुत ही मस्त रहे और बहुत ही खूबसूरत रहे. हमारे साथ ऑल्सो कनेक्टेड है यहाँ पर, नाम क्या है आपका, देवानंद जी. गुड मॉर्निंग, नमस्ते आपको. हैप्पी ट्यूजडे विश करते हैं सभी को. और डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट ट्रैक फॉर बबीता, दर्शनी, क्रिस्टी, नकुल एंड रिया. ऑल्सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बर्थडे मैसेज आया है. बर्थडे सॉन्ग फॉर बीटी जो आज एक साल की हो गई है. बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम मम्मा पापा अक्षय वैष्णवी. एंड एक प्यारा सा गाना जरूर आपकी छोटी सी प्रिंसेस के नाम डेडिकेट हम करेंगे.
3: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड. Radio Musti.
4: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता. आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए. ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती.

लाल मरी से उषा हमारा भरपूर साथ निभा रही है। तो चलिए गाना आपके नाम जाता है आशा जी और किशोर दा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी सितमगढ़ ऑल्सो जाता है हमारे सभी लिसनर्स के नाम एंड रोट दिस वन। एंड इसके बाद आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम सुमहरा अकबर अली के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आदाब आपको सुमहरा।
1: नमस्कार आदाब। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय निदेशिका करीना ने जिससे पूर्व वित्त मंत्री रंगाना देन पड़ियाची और पुराने व्यापार मंत्री सुदेश कालीचंद के बीच फोन पर हुई बातचीत का मुद्दा कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पूछताछ का केंद्र रहा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को करीब 30 बिलियन रुपए की कीमत पर पेट्रोली कॉन्ट्रैक्ट देने के सिलसिले में एफसीसी जांच कर रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार प्रवीण जगनाथ ने फोन पर हुई बातचीत पर कुछ नहीं कहना चाहा क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठेके के सिलसिले में बात की और पुष्टि की कि एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने कॉन्ट्रैक्ट देने पर मंजूरी दी। अंडर वार्निंग पूछताछ के बाद प्रवीण जगनाथ को जाने की इजाजत दी गई। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के पति गुलशन गोविंद को जमानत पर रिहा करने पर एतराज जताया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कैसनोयाल के बाशिंदों के साथ उनके रिश्तों के मद्देनजर और मुख्तलिफ स्कीपरों के साथ उनके ताल्लुकात से शायद वो फरार हो जाएं। प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि रिनजापू से सीसीटीवी तस्वीरों से मुजरिमाना पहलू सामने आए हैं। आज मुल्क भर में इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद की मिलाद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले जा रहे हैं और जश्न किए जा रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर की 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के आखिरी पैगंबर की पैदाइश हुई थी। कई दूसरे मुल्कों की तरह मुशरस में खास तकरीबों का इनेकाद किया जा रहा है। कैंसर के इलाज के लिए ज़रूरी दवाओं में कल एक दवा उपलब्ध कराई गई। बाकी के की दो दवाओं की कमी के चलते नेशनल कैंसर सेंटर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आपात बैठक भी बुलाई गई और इस हालत की वजहों का पता लगाया गया। मंत्री अनिल बिचू ने कहा कि दवाओं की खरीद के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान की अर्थनीति को सीमित बनाएगा। वो उसके तजारती साझेदारों को निशाना बनाएगा क्योंकि मध्य पूर्व की जंग में कोई नया मसौदा सामने नहीं आया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी और दोपहर बाद पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटों में रह रहकर बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान आसमान साफ होगा और हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगुनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 13 से 15, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूरज 6:25 पर उगेगा और शाम को 5:59 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
0: तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, एक बार फिर सभी को 6:11 हो चुके हैं। ट्यूसडे की सुबह थोड़ी और रोशन हो चुकी है। जी हाँ, हम अभी अभी खिड़की के बाहर झांक रहे थे और देखा कि सूरज की एक किरण तो हल्की सी नजर आ ही गई है। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, आपकी रिया, इन योर राइज एंड शाइन, द सेकंड आवर ऑफ राइज एंड शाइन। अभी हमने शुरू किया है द गानी कोई तुमसा नहीं क्रिश मूवी से, और इसके साथ मूड भी बिल्कुल सेट हो गया है। अब सदाबहार से थोड़ा सा रुख बदलते हैं, अब गाने होंगे मिक्स, कुछ प्यार भरे, कुछ दिल को छू जाने वाली गाने, कुछ ऐसे जो सुबह सुबह पैरों को हल्का सा थरकने पर मजबूर कर दे, क्योंकि इट्स ट्यूसडे, आई नो, बट स्टिल इट्स अ गुड डे। ट्यूसडे है, हफ्ते का दूसरा दिन, मंडे की भाग दौड़ पीछे छूट गई और अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार ये दिन पकड़ रहा है। कुछ लोग अभी भी कंबल में हैं, कुछ चाय की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी में हैं, और कुछ तो शायद अभी भी रेडियो के सामने हैं और ये गाने एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, आप एंजॉय करते रहिए हमारे ये गाने। अब जहाँ भी है, बस एक बात याद रखिए कि सुबह का पहला एहसास पूरे दिन का रंग तय कर सकता है। तो आज शुरुआत रखिए हल्का सा, दिल अच्छी सोच और खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। और हाँ, नॉट टू फॉरगेट दैट कल 26 अगस्त को रेडियो मस्ती मना रहा है अपनी पहली सालगिरह। एक साल का ये सफ़र आपके बिना बिल्कुल अधूरा होता। तो कल का दिन होगा आपका, हमारा, रेडियो मस्ती का। फिलहाल म्यूजिक का सिलसिला जारी रखते हैं, बस आप वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और ट्यूसडे मॉर्निंग को बनाए एकदम मस्ती भरा। नॉट फॉरगेट आपके डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499124। और यहाँ पर हम मिस्ट्रेस की ओर देख रहे हैं तो बहुत बहुत सारे हैं जो हम थोड़ी देर में जरूर वापस लेकर आएंगे। रेडियो मस्ती।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वेल ये समय तो बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ रहा है आपकी मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट और यहाँ पर किशन रघुनाथ जी हमारे साथ है जो चुके हैं आप हैं सुगे नाम से और अपनी पत्नी माला और दो बेटियों के नाम जिया एंड रिया आप नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं और राइट है ज़रूर हम नेक्स्ट गाना उनके नाम चलाएंगे रेखा जी हमारे साथ है जो चुकी है और नेक्स्ट गाना आप अपने नाम और अपनी बेटी अंश के नाम जो है पोवो जैसे And हमारे नाम as well. So thank you so much, Rekha ji, for this lovely message यहाँ पर. Also हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ चुकी है वरुणा जी. आप हैं प्लेंटी गौशे से और डेडिकेट करती है नेक्स्ट गाना फॉर शिक्षा दृष्टि आपकी बेटी के नाम. So yes, ज़रूर उनके नाम बहुत ही खूबसूरत गाना हम चलाएंगे. हमारे साथ संध्या लक्ष्मण जुड़ चुकी है लॉन्ग माउंटेन से और विश करती है अपनी ग्रांड डॉटर को तोशिता को वेरी हैप्पी बर्थडे. आज एक साल की हो गई है सो बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम आपके नाना नानी मामू आदि एंड पापा वसु पापा अक्षय द होल चकौगी परिवार आपको विश कर रहे हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको. इंदिरा उसी हमारे साथ है जुड़ी है पृथ्वी वैजय से और आपके पूरे परिवार के नाम नेक्स्ट गाना क्यों नहीं ज़रूर. सुया बिहारी जी गुड मॉर्निंग नमस्ते आपको एंड नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम ही आपके परिवार दोस्तों के नाम. यहाँ पर नॉर्मल मैसेजेस में वी हैव पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है एंड ऑल्सो आज पूजा का जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा. बहुत सारा प्यार गुड विशेज कमिंग फ्रॉम योगेश फ्रॉम सेबास्टोपोल. और नेक्स्ट गाना ऑल्सो जाता है फॉर बीटी डिशिका जिनका आज जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे टू यू टू डिशिका एंड रेडियो मस्ती टीम विशेज यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. जो भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे गोज़ आउट टू यू ऑल एंड आई होप कि आपका दिन बहुत बहुत ही अच्छा कटे एंड आपको वो सब कुछ मिले जो आप हमेशा से चाहते थे.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

25 अगस्त 2026 की सुबह नमस्कार और आदाब, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। नन्हे से अद्रियानो केलियानो पेरिन की बेरहम हत्या के चलते ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन चेतना अभियानों को और ठोस करने तथा पारिवारिक समर्थन पर जोर दे रहा है, जबकि रेज ब्रेव गर्ल्स कातिल को सजाए मौत देने की मांग कर रहा है। कई घंटों तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में पूछताछ के बाद कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को जाने की अनुमति दी गई। उनके वकील रव गुलबुल का कहना है कि मैकेंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को प्रदान 30 बिलियन रुपए के ठेके में उनके मुवक्किल के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। कैंसर के इलाज के लिए आउट ऑफ

0: दवाओं में से एक दवाई कल नेशनल कैंसर सेंटर पहुंची, बाकी की दो दवाओं की कमी पाटने के लिए अस्पताल में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल सक्रिय। आज हजरत मोहम्मद की पैदाइशी तारीख पर ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। मुल्क भर में हजरत मोहम्मद की उम्मत में खुशी की लहर। और अमेरिका ने ईरान की अर्थनीति बर्बाद करने का किया दावा। नमस्कार आदाब। नन्हे से आदगियानों के लियानो पेगिन की बेरहम हथिया के चलते खुशबुआ के साथ साथ पूरे मॉरिशस में गुस्सा, सदमा और दर्द के जज्बात हैं। पेट में कटा मारने के बाद उसके पिता ने 7 महीनों के इस बच्चे को एक चादर में लपटाया। डॉक्टर शैला प्रसाद जानकी ने पोस्टमार्टम किया। 30 साल का उसका पिता जॉन डैनियल पेगिन को गिरफ्तार किया गया, जिसने खुद पुष्टि की कि उसने ये हरकत करने से पहले ड्रग नोशी की थी। ये घटना दूसरे मुलजिम बच्चों की याद दिलाती है जो खेलने की उम्र में थे लेकिन बड़ों के बुरे खेल के ही शिकार बन गए। उनमें 19 महीनों की माही कैतालिया नालातोंबी और 7 वर्षीय एलुजी कैतालिया गास्पो शामिल थी। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनीता गोरा का कहना है कि एक चेतना अभियान चलाया जा रहा है और प्रभावित बच्चों का समर्थन किया जा रहा है। अनीता गोरा के मुताबिक परिवारों की मदद की जानी चाहिए ताकि हिंसा की ऐसी स्थितियां पेश ना हों, खासतौर पर ऐसी घटनाएं ना हों। आद्रियन वालिया ने ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन से बात की। यचना मिश्रा की जबानी उन्हें सुनते हैं।
1: Ce qui s'est passé à Rougebois avec un enfant, un bébé, est très très grave. Je condamne cet acte de barbarisme et de violence.
2: Rougebois mein jo ek bacche ke sath hua wo घिनौना है। मैं इस बर्बरता की निंदा करती हूं। अधिकारियों द्वारा लागू कदम और चेतावनियों के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही हूं कि कैसे ड्रग्स के नशे में भी एक व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकता है। अधिकारियों को साथ मिलकर काम करना होगा, ऐसी नाजुक जगहों पर जागरूकता और बढ़ाना होगा ताकि ऐसी वारदात वापस ना हो।
1: Autour de tout cela, dans les régions vulnérables, il faudrait peut-être renforcer encore ce genre d'accompagnement pour que ça ne se répète plus.
0: और इस हादसे के चलते रेज ब्रेव गर्ल्स संगठन कानून को और सख्त बनाने की मांग कर रहा है। तंजीम के अनुसार एक मासूम बच्चे की जान लेने वाले को मौत की सजा दी जानी चाहिए। रेज ब्रेव गर्ल्स का मानना है कि बच्चों को कानून के हवाले से सबसे मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस तरह के जुर्म की गंभीरता के लिए इंसाफ होना चाहिए। रेज ब्रेव गर्ल्स से प्रशिला मोती को सुनते हैं। आद्रिया वालिया, यचना मिश्रा।
3: Nous visons capable d'une sanction qui maximale qui porte jusqu'à la réclusion et la perpétuité.
2: सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। कानून और माता पिता को अपने बच्चे की रक्षा करनी ही चाहिए। एक बच्चे को मार देना ये अस्वीकार्य है। ये सवाल खड़े करता है कि अधिकारी बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं और जब कोई जेल से निकलता है तो फॉलो अप कैसे हो रहा है।
3: Par exemple, qui mon autorité peut faire pour protéger mes enfants et aussi quand j'ai mon les sortir dans prison, qui peut faire pour qu'ils capables sécuriser sa personne.
2: पुलिस ने मुश्किल परिस्थितियों में बेहतरीन काम किया, लेकिन पुलिस अकेले ही सबकी रक्षा नहीं कर सकती। सभी संस्थाओं और अधिकारियों को पुलिस के साथ काम करना चाहिए।
3: Un travail qui vraiment rapide demande circonstances difficiles par rapport avec meurtre de l'enfant et malheureusement la police tout seul pas capable protéger tout le monde. Les autorités en entier, tout mon institution bien capable de travailler ensemble avec la force policière.
0: जॉन डैनियल पेगिन पर कत्ल करने का अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज है। वो 31 अगस्त को फिर से अदालत के सामने पेश होगा। उसे फिलहाल ब्रांसेकर्ड मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती की गई है। आज छोटे से आद्रियानो केलियानो पेगिन के अंतिम संस्कार किए जाएंगे। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय निदेशिका करीना निजुस पूर्व वित्त मंत्री रंगनादन पडियाची और पुराने व्यापार मंत्री सुरेश कालीचरण के बीच फोन पर हुई बातचीत का मुद्दा कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पूछताछ का केंद्र रहा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को करीब 30 बिलियन रुपए की कीमत पर पिचोली कॉन्ट्रैक्ट देने के सिलसिले में एफसीसी जांच कर रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार प्रवीण जगनाथ ने फोन पर हुई बातचीत पर कुछ नहीं कहना चाहा क्योंकि

0: ये वो इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठेके के सिलसिले में बात की और पुष्टि की कि एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने कॉन्ट्रैक्ट देने पर मंजूरी दी थी।
1: Un contrat inalloué
2: par le board.
1: Par le board. Mais moi, nous tous, on est au courant. Le public est au courant. Moi, pas au courant. C'est le board de la STC qui vient mettre un argument qui fait accepter ça l'offre-là.
0: अंडर वार्निंग पूछताछ के बाद प्रवीण जगनाथ को जाने की इजाज़त दी गई। उनके वकील रव कुलबुल के मुताबिक अभी तक उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई पहलू सामने नहीं आया है। लुवीना सोफी ने उनसे बात की।
3: इसका लेया पानी ना उकन मालदोन की कबाबिन मोंट्रे दो ला लुकाशमन से कॉन्ट्रा ओ कॉन्ट्रेर सेट एन कॉन्ट्रा कि डोने अ एन मोमेंट प्रेसी कोट पेई ची फेक पास दो कोविड वो कने डेज अन पेई ची फेर्मे l'industrie touristique fermée, partout fermée, peine à devise, peine à non rien. Donc un contrat qui pour dans le bénéfice pour le bénéfice du pays. Et moi là pour faire ressortir aussi qui aucun zamen fait cette déclaration, cette complainte ou qui fin acquise n'importe qui qu'un de qui mal donne.
0: सांसद वेरोनिक लुगोविन के पति गुलशन गोविन को जमानत पर रिहा करने पर एतराज जताया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काजनोयाल के बाशिंदों के साथ उनके रिश्तों के मद्देनजर और मुख्तलिफ स्कीपरों के साथ उनके ताल्लुकात से शायद वो फरार हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि रिनन टापू से सीसीटीवी तस्वीरों से मुजरिमाना पहलू सामने आए हैं। लुवीना सूफी, यचना मिश्रा।
4: गुलशन गोविन कल रिवियनो जिला अदालत में पेश हुए। यह पेशी उन्हें 4 गांजे के पौधों की खेती और मेथाडन रखने के आरोप में जमानत पर रिहा किए जाने की मांग के संबंध में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए जिदान भातू ने गुलशन गोविंदा की रिहाई का विरोध करते हुए 3 आधार बताए, फरार होने का जोखिम, दोबारा अपराध करने की आशंका और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना। उन्होंने विशेष रूप से साल 2008 में नशीली दवाओं से जुड़े एक अपराध में गुलशन गोविंद को हुई सजा का उल्लेख किया। उनके अनुसार एक नए मामले में उनका ऐसा शामिल होना ये दर्शाता है कि वे अपराध की सीढ़ी पर ऊपर बढ़ रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए रुबेन मुरुंगापिले के तर्क 31 अगस्त को सुने जाएंगे। अभियोजन पक्ष का ये भी कहना है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो गुलशन गोविंद को मॉरिशस और लाहौरियों के बीच कथित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जोड़ते हैं। इस मामले में जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत 234 मिलियन रुपए बताए जाते हैं। जहां तक गंभीर परिस्थितियों के साथ गांजे के आरोप की साजिश और तस्करी के कथित आरोप का सवाल है, इस आरोप को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 अगस्त को होगी। अदालत में पेशगी के बाद पेशे से प्लंबर गुलशन गोविंद को 31 अगस्त तक फिर से हिरासत में भेजा गया है। आज सुने उनकी पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। 21 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सामान्य तौर पर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए था। एंटी ड्रग्स यूनिट ने हिरासत बढ़ाने के अनुरोध के पीछे ये कारण बताया कि संदिग्ध से कई अन्य बयान दर्ज किया जाना बाकी है।
0: कैंसर के इलाज के लिए ख़त्म ज़रूरी दवाओं में से कल एक दवा उपलब्ध कराई गई है। बाकी 2 दवाओं की कमी के चलते नेशनल कैंसर सेंटर ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आपात बैठक भी बुलाई गई और इस हालत की वजहों का पता लगाया गया। मंत्री अनिल बिच्चू ने कहा कि दवाओं की खरीद के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बेहतर निगरानी के लिए हर 2 हफ्ता एक मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक लगेगी। देखिए विस्तार। कुछ हफ्तों से सिस्प्लैटिन 3 दवाओं में शामिल थी जिनकी कमी है। कैंसर में मुब्तिला मरीजों को इनकी जरूरत पड़ती है। नेशनल कैंसर सेंटर में सिस्प्लैटिन की एक खेप पहुंची। पैक्लिटैक्सेल और इरिनोटिकोन नामी दूसरी दवाओं की कमी पाटने के लिए अस्पताल अपना प्रोटोकॉल अमल में लाया ताकि इलाज जारी रहे। 90% से ज्यादा मरीजों को इन दवाओं की जरूरत पड़ती है।
4: डॉक्टर अश्विन चिन्योक बताते हैं।
2: Une pénurie, c'est vrai, c'est que du PCFR, c'est du PCFR adapté du protocole un petit peu pour

0: servir ben, les autres molécules à la place et que, jusqu'à ce que nous recevions un médicament. Là. Tout le monde protocole qui nous servit, c'est un protocole qui est internationalement acceptable.
1: अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की वजह से वितरण प्रणाली बाधित है. उत्पादन के वास्ते मॉलिक्यूल के बुनियादी सामानों की सप्लाई में मुश्किलें हो रही हैं. फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के मुताबिक दवाओं की कमी पाटने के लिए स्थानीय मंडी के सप्लायरों से काम लेना पड़ रहा है. अंतरिम निदेशिका वहीदा गोपी

0: ça, ben, plusieurs compagnies à Maurice, quand nous lancent une cotation, se disent, informe-nous qu'ils ne sont pas capables de nous ce médicament-là, pour cette raison-là. Donc, là, nous trouvons une source ailleurs, c'est un producteur qui fait, dit, en grande échelle, qui est capable de nous, un petit peu, dans cette production, cette cave, envoyer-nous à Maurice.
1: स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ऑन्कोलॉजी के माहिर डॉक्टरों के साथ एक आपात बैठक लगाई गई। जल्द से जल्द दवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री अनिल बच्चू के मुताबिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: ये जो दो दवाइयां हैं, हम लोग यहीं पर लोकली हासिल करने की कोशिश करेंगे, और ताकि बाद में खासकर कैंसर के लिए कोई समस्या ना हो, तो मैंने एक फोर्टनाइटली मीटिंग का मतलब है हर दो सप्ताह पर यहाँ एक मीटिंग बैठेगी मेरे ही मंत्रालय में। मैं रहूँगा और अन्य लोग भी रहेंगे देखने के लिए कि कहाँ पर दवाइयों की कमी है। और दूसरी बात है, मैं सेंट्रल सप्लाई जो हमारा डिवीजन है, सप्लाई डिवीजन, उन लोगों को मैंने चेतावनी दिया है कि जब कहीं कभी जब दवाई कम होने लगता है तो उन लोगों का कर्तव्य है कि मंत्रालय को जाना चाहिए, हम लोगों को सूचित करना चाहिए कि इन सब दवाइयों की कमी है और हमें क्या करना है। उसके अलावा भी पहले एनसीसी जो था, जो कैंसर अस्पताल था, वे विक्टोरिया हॉस्पिटल, कांदोस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा रहता था सब कुछ के लिए। लेकिन हमने ये सोचा कि अब से जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ है एनसीसी का, वे डायरेक्टली हमारे मंत्रालय में संपर्क करें और हमारे मंत्रालय के द्वारा उनकी देखभाल होगी, प्रतिदिन की क्या क्या कमी है, किस चीज़ों की कमी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर की बीमारी के कारण बहुत से लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण है क्यों हमारे यहाँ दवाइयों की कमी पड़ रही है।
1: नेशनल कैंसर सेंटर में प्रदान इलाज के लिए 200 जरूरी दवाओं की जरूरत होती है और इस फहरिस्त में 17 नई दवाइयों को जोड़ा गया। हर महीना अतिरिक्त 300 नए मरीज इस अस्पताल में इलाज पाने के लिए आते हैं। आज मुल्क भर में इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद की मिलाद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले जा रहे हैं और जश्न किए जा रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर की 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के आखिरी पैगंबर की पैदाइश हुई थी। कई दूसरे मुल्कों की तरह मुशरस्मी खास तकरीबों का इनेकाद किया जा रहा है। मस्जिदों में सुबह सादिक खास तकरीरें की जा रही हैं। जुमा मस्जिद में भी खास प्रोग्राम किया गया और हस्ब दस्तूर फिनिक्स में हल्का कादरिया इशात इस्लाम की जानिब से कौमी सतह पर ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी।

ईद मिलादुन नबी मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक और रूहानी मौका है। ये दिन मुस्लिम कौम को नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी, आपकी तालीमात और आपके खूबसूरत अखलाक को याद करने का मौका देता है। 12 रबीउल अव्वल 570 एडी के साल में प्यारे नबी की पैदाइश मक्का में हुई थी। आपकी वालिदा का नाम बीबी आमिना था। दुनिया में आने से पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला की वफात हो चुकी थी। उनकी परवरिश उनके दादा जान अब्दुल मुतल्लिब और बाद में आपकी तरबियत आपके चचा अबू तालिब ने की। कम उम्र में ही हजरत मोहम्मद के साथ कई करिश्मे हुए थे। 40 साल की उम्र में खुदा से उन्हें नबुवत का पैगाम मिला। 23 सालों के दौरान उन पर इस्लाम की सबसे अजीम किताब कुरान पाक को नाजिल किया गया था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीक हयात खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी, जो इस्लाम पर ईमान लाने वाली पहली खातून थी। सरकारे दो आलम ने हमेशा अपनी जिंदगी में अहले दीन को मोहब्बत, रहमत, इंसाफ, सब्र और इंसानियत का दरस दिया।

आपने हमेशा सच बोलने, जरूरतमंदों की मदद करने और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हुस्न सलूक से पेश आने की तालीम दी। ईद मिलादुन नबी का असल पैगाम यही है कि सब अपनी जिंदगी में सीरतुन नबी को अपनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। हलका कादिरिया इशारे इस्लाम की दावत पर आज फिनिक्स के अलीमिया कॉलेज में ईद मिलादुन नबी मुनाकिद की जाएगी। हस्बे दस्तूर हजरत मौलाना शाह अनस सिद्दीकी खास मेहमान होंगे। इसके अलावा सुन्नी रजवी पोटलवी ईद

0: मुस्लिम कौम को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मुर्शिद सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में अयोध्या रामायण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज MSDTF भवन पोटलुई में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। महासचिव गौतम मंता दिन ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं।
1: 9:30 बजे MSDTF भवन पोटलुई में अयोध्या रामायण प्रतियोगिता के संदर्भ में क्विज कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं। यह क्विज कंपटीशन रामचरितमानस पर आधारित होगी। यह प्रतियोगिता लोगों को सांस्कृतिक इतिहास जानने, नैतिक मूल्यों को साझा करने और मजेदार तरीके से महाकाव्य के बारे में अपनी जानकारी परखने में मदद करता है। ये आयोजन सीखने की प्रक्रिया को इंटरैक्टिव बनाते हैं और युवा पीढ़ी को पारंपरिक साहित्य पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आप आइए और देखिए कि हमारे नई पीढ़ी, हमारे नौजवान कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम।
0: एक साल का सफर ओरन 2 को एक साल पूरा हो चुका है। एक साल जो पलक झपकते ही पूरा हो चला। इस एक वर्ष में पूरी टीम ने साथ मिलकर संगीत के इस सफर को नए मुकाम तक पहुंचाया है। बेस्ट FM की जगह लेने के बाद कई नई आवाज़ें और कई पुरानी आवाज़ों के साथ एक नई पहचान लिए राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो स्टेशन का ये चैनल लोगों के मन को लुभाता गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मकसद एक ही है, श्रोताओं का मनोरंजन। रेडियो मस्ती के सफर पर यचना मिश्रा की रिपोर्ट पेश है।
2: RM2, your number one Bollywood radio station.
3: RM2, Radio Masti, नई पहचान, नई आवाजें और कुछ पुरानी भी। एक साल पूरा हो चला जब से रेडियो मस्ती का सफर शुरू हुआ। बेस्ट FM की जगह लेने वाला ये रेडियो चैनल एक नई सोच, नए अस्तित्व, नई टीम के साथ आगे बढ़ता गया।
2: Stay tuned, stay musty, Radio Musty.
3: Oriental Radio की मैनेजर नर्वदा खेदना बताती हैं,
4: तीन रेडियो चैनल्स एक साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण है। बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी तक सीख रही हूँ। पिछले एक साल में काफी कुछ नया हुआ है, जैसे रेडियो मॉरिशस का दैनिक प्रोग्राम आज की चर्चा अब MBC टेलीविजन के तीसरे चैनल पर सीधा प्रसारित होता है। और M3 में सुबह 5 बजे से दिन के 12 बजे तक विभिन्न भाषाओं तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती तथा उर्दू में कार्यक्रम है। और M2 रेडियो मस्ती की बात करें तो ये हमारा कमर्शियल रेडियो चैनल है। हमारे सभी आजीज एक से बढ़कर एक बेहतरीन म्यूजिक लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और नयापन यहाँ पर ये है कि स्टूडियो से निकलकर हम पहुँच रहे हैं हमारे लिसनर्स तक। फैमिली बीच फन डे का आयोजन हुआ। पहली बार के लिए हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया। चारों जोन से कोई 45 कॉलेजों ने इसमें भाग लिया।
5: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: सुबह से लेकर रात तक सभी को संगीत तक के साथ जोड़े रखना ये आसान काम नहीं, लेकिन RM2 रेडियो मस्ती पिछले एक साल से ये काम करने में और श्रोताओं को जोड़ने में कामयाब रहा।
4: यहाँ तक पहुँचने के लिए सभी का साथ रहा। धन्यवाद देना चाहूँगी सभी आजेज को, रेडियो टेक्निकल टीम को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग तथा हमारे सभी स्पॉन्सर्स को, जिनके बिना हम नहीं। ताकत मुट्ठी में होती है, एक अकेले से काम नहीं होता।
5: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: अलग अलग समय पर सभी उम्र के श्रोताओं के लिए RM2 संगीत लाता है। हर एक घंटे में देश विदेश की खबरें भी प्रसारित होती हैं, साथ में स्पोर्ट्स न्यूज भी। संगीत का ये रोमांचक सफर जो आगे बढ़ता जा रहा है। इतने सारे कार्यक्रम, लेकिन एक ही मकसद, आपका मनोरंजन।

इंजन और M2 विदेश में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान की अर्थनीति को सीमित बनाएगा, वो उसके तिजारती साझेदारों को निशाना बनाएगा क्योंकि मध्य पूर्व की जंग में कोई नया मसौदा सामने नहीं आया। अमेरिका का दावा है कि वो ईरानी अर्थव्यवस्था को मुश्किल परिस्थितियों में डालेगा। वो ईरान के साथ जुड़े देशों पर नई पाबंदियां लगाने का इरादा रखता है। अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों में रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद पश्चिम और सेंट्रल प्लाटो में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षाएं होंगी और दूसरे इलाकों में मौसम साजगार रहेगा। आज रात के दौरान आसमान साफ होता जाएगा और मौसम अच्छा रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुंदर चंचल रहेगा लेकिन दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 13 से 15, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:59 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। नन्हे से एड्रियानो केलियानो पेरिन की बेरहम हत्या के चलते ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन चेतना अभियानों को और ठोस करने तथा पारिवारिक समर्थन पर जोर देती है, जबकि रेस ब्रेव गर्ल्स कातिल को सजाए मौत देने की मांग कर रहा है। कई घंटों तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में पूछताछ के बाद कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को जाने की अनुमति दी गई। उनके वकील रऊफ गुलबुल का कहना है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को प्रदान 30 बिलियन रुपए के ठेके में उनके मुवक्किल के खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं। कैंसर के इलाज के लिए आउट ऑफ स्टॉक दवाओं में से एक दवाई कल नेशनल कैंसर सेंटर पहुंची, बाकी की दो दवाओं की कमी पाटने के लिए अस्पताल में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल सक्रिय। आज हजरत मोहम्मद की पैदाइशी तारीख पर ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। मुल्क भर में मुस्लिम कौम यानी प्यारे नबी की उम्मत में खुशी की लहर। और अमेरिका ने ईरान की अर्थनीति बर्बाद करने का किया दावा। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभागों और हमारे तकनीकी साथी यूसुफ सुबाची की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ दिन आप सभी को। नमस्कार और आदाब। थोड़ी देर में शोक समाचार सुन पाएंगे। शोक समाचार सुनिए। सैमा तैरुद मेबर्ग में 72 साल के 72 years old जनाब मोहम्मद स्वादिक खान गुजेल। जनाब मोहम्मद स्वादिक खान गुजेल जो बाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज साढ़े बारह बजे इनकी बेगम मोहतरमा जुलेखा गुजेल के घर सैमा तैरुद मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए मेबर्ग की जुम्मा मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया दे क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। एवेन्यू कॉरियर फ्लिक ऑन फ्लैक में 65 साल की 65 years old श्रीमती माया देबी दनहाऊ। श्रीमती माया देबी दनहाऊ पैदाइशी नाम सीताराम जो मिस माया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और हैमिल्टन कॉलेज में काम करती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे इनके घर एवेन्यू कारियर फ्लिकॉन फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रामा मेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। मोफियाचिल रोजबेल में 78 साल के 78 years old जनाब फारिद मियाजन जो फारिद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके बेटे मोहम्मद इस्लाम मियाजन के घर मोफियाचिल रोजबेल से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM।

रॉयल रुड रामप्लमोर मॉडल बेअमे 88 साल की एटी एज इज ओल्ड श्रीमती तारानी मीतू, श्रीमती तारानी मीतू पैदाइशी नाम बंधन जो कुशवंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दोपहर बाद एक बजे इनके बेटे श्याम मीतू के घर रॉयल रोड रामप्लमोर मॉडल बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। लैग्रीमों साहब की अमे 77 साल की 77 years old श्री इंद्रजीत पर्तुब जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनकी पत्नी सुनीता पर्तुब के घर लैग्रीमों साहब की से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकुंस्टांस साहब की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM ब्रॉन्सेकॉट स्ट्रीट वाकवामी 73 साल के 73 years old श्री त्यबानी गुसाई ननकू जो बाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर ब्राउनसेकॉट स्ट्रीट वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM एवेन्यू बुगैनविलिए लेमोन विलेज में 89 साल की 89 years old श्रीमती विद्वंती महाबीर जो मैडम शिव के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर एवेन्यू बुगैनविलिए लेमोन विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियानुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM ला लूसी बिल्डिंग बेलेयर में 61 साल के 61 years old श्री राजदेव फुलेसौ जो राज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनकी पत्नी जयंती फुलेसौ के घर लालूसी बिल्डिंग बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसेलमा मंडप लाशमिने बेलिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM जिंगवोलेन में नील फेनिक्स में 62 साल के 62 years old श्री सोनालाल सोबी जो सुधीर प्लोम्बिये के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके घर जिंगवोलेन में नील फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM पॉइंटो साबल में 50 साल के 50 years old श्री तारेश्वर अश्विन शंकर जो नितिन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह नौ बजे एलियनसन पॉइंटो साबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 9 AM कौलाबू मोताइलोंग में 75 साल की 75 years old श्रीमती सुलालिता बुल्डवा जो मैडम पतिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े ग्यारह बजे इनके बेटे अविनाश राम प्रसाद के घर कौलाबू मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेवकुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 11 AM सुभाष रोड मोसेलमो रामफल बुआमोंग प्लेंडी पपाई में 64 साल की 64 years old श्रीमती प्रेमिला कासावेन पैदाइशी नाम लक्ष्मण प्रसाद जो प्रेमिला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दस बजे इनके बेटे विजेंद्र कासावेन के घर सुभाष रोड मोसेलमो रामफल बुआमोंग प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टेमिनुस थ्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM सेंट क्वा पोर्ट लुई में 95 साल की 95 years old श्रीमती परमावती जुडन जो परमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे मुर्रा फ्यूनरल पिची थ्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज लेसालीन की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM लाबो स्ट्रीट पॉम्पलमूस में 54 साल के 54 years old श्री दीपक रघुबर जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े बारह बजे इनके बेटे उदय रघुबर के घर लाबो स्ट्रीट पॉम्पलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉम्पलमूस की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 12:30

हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।

डांस करने का तो मौका ही है. एंजॉय. हैप्पी एनिवर्सरी गाइस. वेलकम टू रेडियो मस्ती. ये है आपका मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ सुबह के 7:13. It's celebration time. Hello.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वही सच कहती हूँ, मज़ा ही आ गया यहाँ पर। तो भाई हम सभी मिलकर झूम ही रहे हैं, एंजॉय कर ही रहे हैं। सो आप सभी को रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंज की फर्स्ट एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। या वी आर सेलिब्रेटिंग एक्चुअली इन द स्टूडियो। हमारा स्टूडियो भी आज भरा भरा सा है एंड एवरीवन इज सो सो हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप हमें खुश करते हैं, इसलिए तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि वो खुशी हम चार गुना करके आप तक पहुँचाते हैं। यस, गीतों का साथ हो, बॉलीवुड की न्यूज़ हो या तो फिर स्पोर्ट्स हो, हर तरह से हर एक सेलिब्रेशन में हम आपके साथ शामिल रहते हैं। वैसे अगर आपको किसी को बर्थडे सरप्राइज करना है तो डोंट फॉरगेट, आप अभी से ही उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी जो है, अभी समय हो गया है, जब एनिवर्सरी है तो खुश तो करना पड़ेगा आपको, और आपको खुश करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक गेम। जी हाँ, आपके लिए लेकर आए हैं गेम। सो जैसा कि रोज़ हम आपको याद दिला दिए हैं, आज फिर हम आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे। आज फिर हम कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे मैजिक, उसके लिए क्या करना है? यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड द टाइमलेस वॉइस ऑफ द वन एंड ओनली शान। यस, आपको मिलेगा मौका टू एक्सपीरियंस द मैजिक लाइव। जी हाँ, और ये हो रहा है रेडियो मस्ती के साथ, क्योंकि आपको ये मौका दिया जा रहा है। सो द गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu। और अगर आप रेडियो मस्ती के साथ खेलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल सकता है एक प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट। सो इट्स वन वॉइस, इट्स वन स्टेज, वन अनफॉर्गेटेबल नाइट एट SBICC। ये होने वाला है 5th of September from 8 PM, proudly organized by ticketbox.mu। अब आप सोचेंगे कि भाई इतना सब कुछ हो गया, आप अब सवाल भी कर लो। जी बिल्कुल, हमारे पास हमारा सवाल है, तो अगर आप ध्यान से सुने तो मुझे जवाब दीजिएगा। ध्यान से सुने और फिर मुझे जवाब दीजिएगा। आपको मुझे बताना है, डू ticketbox.mu गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर, डू ticketbox.mu गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर। आपको मुझे जवाब देना है ए येस आफ्टर वन ईयर, बी येस आफ्टर थ्री ईयर्स, या तो फिर सी नो दे नेवर एक्सपायर। सो आप जल्दी से मुझे अपना जवाब भेजिए ऑन 5499 1294।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Come and meet the MBC and Lotoverti this Wednesday, 26th of August, or celebrate KJ MBC RM2 or MBC RM3 ki first anniversary. Subah 10 baje se lekar all over the island. Games, hangama, full on masti, guaranteed. Aaye aur maza lijiye Lotoverti ki sabhi zaruri educational informations aur responsible khel ke bare mein. Quiz sessions, goodies aur celebrations poore din ke dauran. Zyada jankari के लिए लुतुवेयर लुतुटेक के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए. लुतुवेयर और एमबीसी, हंगामा ही हंगामा.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
0: A good beat for your morning show. RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन गाइज. हमने सवाल किया था आपसे और एक टिकट का सवाल है भाई, और ये कोई ऐसा वैसा टिकट नहीं है. आपको एक प्लैटिनियम टिकट दिया जा रहा है फॉर शान लाइव कॉन्सर्ट. और हमने आपसे पूछा था बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से, एंड द क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल. हमने आपसे पूछा था डू टिकट बॉक्स डॉट एम यू गिफ्ट कार्ड्स एक्सपायर. Is it a yes after 1 year? Is it a yes after 3 years? Or is it no, they never expire? And the right answer is C, no, they never expire. Aur sahi jawab dene ke liye thank you so much everyone. Aap logon ne bilkul sahi jawab diya hai. So yahan kaun hoga winner, ye to hum janenge hi. Abhi hamara lucky draw ho gaya hai, lekin isse pehle main aapko batana chahungi ki Shan is one of India's most beloved playback singers, known for his smooth soulful and versatile स्टाइल वॉइस. और 90s के बाद उनका कुछ इस तरह से बॉलीवुड में छा जाना हुआ, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, मेलोडिक गाने हो या फील गुड सॉन्ग्स हो. और साल के बाद एक क्या कहें, एवरी टाइम वो कुछ नए गानों के साथ आते रहे और हम सबका दिल चुराते रहे. सो हिंदी सिनेमा एंड इंडियन पॉप म्यूजिक में उनके बहुत सारे हिट गाने हैं, एंड इसके चलते उनके इतने सारे फैन फॉलोइंग हैं. हर एक जनरेशन उनको पसंद करता है. और जब वो स्टेज पर आते हैं ना, तो उनको ज़्यादा एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है. उनके पास वो एबिलिटी है टू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस. यही तो है वजह कि सब उनको इतना प्यार करती हैं, मेकिंग हिम अ पॉपुलर लाइव परफॉर्मर, राइट? सो वी गोना एंजॉय द कैरिस्मेटिक एनर्जी और उनकी आवाज़ में जो जादू है वो हम सुनेंगे SBICC पाई में ऑन 5th of September आज फ्रॉम 8 PM. तो चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि द गेम वॉज पावर्ड बाई ticketbox.mu. एंड हमारे विनर कौन है इसके लिए भाई, चलिए जानते हैं कौन है. So यहाँ पर पूजा होराधन जो कि रहती हैं थ्रियोली, उन्होंने जीता है हमारा ये जो टिकट है. सो मैं आपको बता दूँ, आप जीत रहे हैं ये प्लैटिनम टिकट फॉर शान लाइव कॉन्सर्ट, जो आपको कलेक्ट करना आना पड़ेगा एट MBC अपने ID कार्ड के साथ.

0: फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी, तो हम भी जानना चाहेंगे कि हमारे साथ वो कौन है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं एंड किसका लक है आज कि वो हमारे साथ अपना स्पेशल डे जो है वो सेलिब्रेट कर सके। तो बर्थडे किसका है ये जानते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, प्लीज रिमाइंड मी योर नेम।
1: ज्योति बंधु।
0: ज्योति बंधु जी, आप कहाँ रहती हैं?
1: गुडलैंड रहती हूँ मैं।
0: अच्छा, आपको पता है आपसे कौन बात कर रही है?
1: निवेदिता ना।
0: अरे यार
1: आपकी आवाज मीठी है, सुनती हूँ तो आपको पहचान गई।
0: मेरी आवाज मीठी है? आपको कैसे पता चला मेरी आवाज मीठी है?
1: सुनती हूँ ना।
0: ओह माय गॉड, सो सो सो सो सो टच, थैंक यू सो मच। सो मैं आपको बता दूं, ज्योति जी आज आपका स्पेशल डे है, वैसे ही जैसे आज हमारा स्पेशल डे है, तो आप रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन के साथ सेलिब्रेट करें अपना बर्थडे।
1: Thank you, Daniel.

0: from Radio Masti.
1: रेडियो मस्ती की तरफ से, रेडियो मनोरंजन की तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में लोनो हाइपरमार्केट की तरफ से. एंड मैं आपको बता दूं, आपको मिल रहा है एक वाउचर और ये वाउचर आपको कलेक्ट करना पड़ेगा या आज या कल. अपने आईडी कार्ड के साथ आपको एमबीसी आना पड़ेगा. एंड चलिए, आपको कैसा लग रहा है आज आप रेडियो मस्ती के साथ, रेडियो मनोरंजन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात कर रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है. एक बात बोलूं
1: जी,
2: वो कहते हैं ना, इन क्रियोल में कहते हैं ना, लावाडोरे.
1: लावाडोरे.
2: तो वैसे ही आपकी आवाज सुरीली मीठी है, सभी को ऐसी आवाज नहीं मिलती. मेरी भी आवाज ऐसी नहीं है.
1: ओह माय गॉड, ऐसी बात नहीं करते. आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत प्यार करते हैं. पता है, जब आप किसी से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं ना, तो फिर आपको किसी के बारे में कुछ गलत लगता ही नहीं. आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है. और हम बहुत बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, उनका इतना प्यार मिलता है हमें, इतना साथ मिलता है. तो मैं आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ. और ज्योति जी, हमेशा खुश रहिए और ऐसे मुस्कुराते रहिए हमारे साथ, हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहिए. एंड डोंट फॉरगेट लुलु हाइपर

0: मार्केट की तरफ से आपका वाउचर है.
1: सो
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी बर्थडे.
1: हैप्पी बर्थडे, शुभ दिन आपको.
0: थैंक यू, थैंक यू. तो चलिए जी, तो ये तो थी ज्योति बंधु जी, और आपका भी आज बर्थडे हो सकता है, तो आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार एंड विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे.

0: हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3। स्माइल।
1: फोटो खींचनी है ना, सेल्फी ले रही हूँ। स्माइल।

0: sports news.
1: Radio Musti in the mix.
2: यस सर, चलिए हमारे स्पोर्ट्स गुरु से मिलने का टाइम आ गया है एंड उनका स्वागत करते हैं. गुड मॉर्निंग अरविंद.
3: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. नए मैनेजर ज़ाबी अलोंसो के साथ चेल्सी ने प्रीमियर लीग में जीत के साथ शुरुआत की. श्री गणेश सफल रहा पर गोलकीपर को लेकर चिंता भी है. फुलहम 2 चेल्सी 3. टीम का अटैकिंग ट्रियो जानलेवा दिखता है. नया खिलाड़ी मोगन रॉजर्स रिकॉर्ड 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग उससे पैसा वसूल होने लगा है. पहले मैच में खाता खोला. उसके साथ मैन ऑफ द मैच कोल पाल्मर और युआउ पेड्रो भी घातक रहे. इस त्रिकोणीय आक्रामक शक्ति से चेल्सी बहुत गोल स्कोर करेगा पर गोलकीपर को लेकर प्रॉब्लम है. रॉबर्ट सांचेज सस्ते में 2 गोल खा गया. 2 गलतियां 2 गोल. मैच के बाद अलोंसो ने कहा सांचेज को आगे के लिए सबक मिलेगा. परफॉर्मेंस बेहतर होगा. पर फुटबॉल पंडित जेमी कराग ने कहा चेल्सी के स्ट्राइकर इस सीजन प्रीमियर लीग के बेस्ट में हैं, लेकिन अगर सांचेज नंबर 1 गोलकीपर रहे तब भूल जाओ टाइटल. जो भी हो, चेल्सी जीत गया फुलहम के मैदान में. प्रीमियर लीग का दूसरा सप्ताह इस शुक्रवार से फ्राइडे मैच क्रिस्टल पैलेस और मैनचेस्टर सिटी के बीच. सैटरडे फिक्स्चर्स अर्ली किक ऑफ 3:30 बजे. 3:30 किक ऑफ लिवरपूल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट. फिर बोर्नमुथ एवर्टन, कोवेंट्री हल सिटी, टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड. संडे मैच चेल्सी ब्राइटन, लीड्स ब्रेंटफोर्ड, संडरलैंड फुलहम, मैनचेस्टर यूनाइटेड इप्सविच. और मंडे नाइट फिक्स्चर एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल. ये इस वीकेंड के मैच हैं. कल स्पेन के ला लीगा में ओसासुना और लेवेंटे के बीच मैच ड्रॉ गया 0-0. मलागा और डिपोर्टिवो के बीच भी मैच ड्रॉ 1-1. जर्मन कप में वुल्फबर्ग और अल्टग्लिएनिके के टीम के बीच मैच ड्रॉ 3-3. पेनाल्टी पर वुल्फबर्ग क्वालिफाई. एफसी कोल्ड जीत पाया. शाल्के 04 ने एक्स्ट्रा टाइम में जाके अपना मैच जीता. इटली के सेरी आ में लाजियो की जीत बोलोनिया पर 1-0 से. और एएस रोमा के लिए मालेन का हैट्रिक 4-0 से. रोमा ने फ्लोरेंटीना को हराया. ट्रांसफर न्यूज. मैनचेस्टर सिटी पाल्मेरास के विंगर आलन एलियास को साइन करने जा रहा है. दाम लगभग 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. आलन साविनो का स्थान लेगा जो टोटनहम हॉटस्पर में चला गया. मामूश भी जाने वाला है. मैनचेस्टर सिटी की नजर लिवरपूल के कोडी गाकपो पर भी है. टोटनहम भी गाकपो के पीछे है. निको गोंजालेस सिटी से न्यूकासल यूनाइटेड में जा सकता है. बात हो रही है लगभग 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की. इधर चेल्सी 3 ऑफर भेज चुका है बोर्नमुथ के एलेक्स स्कॉट के लिए. तीनों रिजेक्टेड. आर्सेनल पहले सितंबर के डेडलाइन डे से पहले एटलेटिको मैड्रिड से जूलियन अल्वारेज को साइन कर लेना चाहता है. पर प्रॉब्लम यह है कि अल्वारेज बार्सिलोना में जाना चाहता है. एटलेटिको मैड्रिड उससे अपने ला लीगा राइवल से नहीं बेचना चाहता. आर्सेनल 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है, ज्यादा भी. चैंपियंस लीग की बात करें. ग्रुप स्टेज के लिए आज 3 टीमें क्वालिफाई होंगी. प्ले ऑफ के रिटर्न लेग के 3 मैच आज खेले जाएंगे. सबा का मुकाबला एचबीआर शेवा से है. शेवा टीम 2-1 से आगे है पर सबा आज होम मैदान में होगा. बोडोग्लिंट एनईसी टीम का स्वागत करेगा. 3-1 की बढ़त है बोडोग्लिंट के लिए. और सेल्टिक जाएगा एलएएसके के मैदान में. 3-0 की जीत हुई थी फर्स्ट लेग में सेल्टिक के लिए. तो आज के लिए बोडोग्लिंट सेल्टिक फेवरेट हैं क्वालिफाई होने के लिए. कल बाकी मैच खेले जाएंगे. इंग्लैंड के लीग कप के सेकंड राउंड की बारी है. कुछ मेन फिक्स्चर्स. कार्डिफ नोविच, ब्लैकबर्न शेफील्ड यूनाइटेड, डोनकास्टर मिडल्सब्रो, फिर इप्सविच लेस्टर, प्लाइमूथ कोवेंट्री, शेफील्ड वेडनेसडे वुल्व्स, साउथहैम्पटन वेस्टहैम, स्टोक हल सिटी, बर्मिंगहम ब्रेंटफोर्ड और नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स. कल के मैचों में ब्रेंटफोर्ड बर्नले, न्यूकासल यूनाइटेड वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन, स्पर्स चार्ल्टन, प्रेस्टन एवर्टन. ये हैं इंग्लिश लीग कप के सेकंड राउंड के मैच. क्रिकेट. टीम इंडिया ऑन टॉप. श्रीलंका में दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम मेजबान होस्ट टीम श्रीलंका पर टोटल कंट्रोल. भारतीय टीम ने 503 रन बनाकर डिक्लेयर किया। पडिक्कल और ध्रुव जुरेल की ओर से शतकीय पारी दोनों

0: के लिए सेंचुरीज। जवाब में श्रीलंका 2 विकेट खोकर अभी केवल 8 रन बनाकर खेल रही है। आज तीसरे दिन का खेल होगा। श्रीलंका की टीम 495 रन से पीछे है आज तीसरे दिन का खेल। और साइकिलिंग के हमारे सितारे दुनिया भर में चमक रहे हैं। इंग्लैंड में किम्बर्ली, तो फ्रांस में ट्रिस्टन ऑजी, तो जूनियर में ट्रिस्टन ऑजी ओवरऑल रैंकिंग में दूसरा स्थान ले पाया। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ RM2। टेक केयर, बाय बाय, और लगे हाथ RM2 RM3 के। आज बहुत बड़ा दिन है और स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से मैं और विकास, हमारे सभी दोस्त आपको थैंक यू कहेंगे कि आप लोग सुबह शाम स्पोर्ट्स मैगजीन सुनते रहते हैं। और आपके मांग पर, आप लोगों के डिमांड पर हमने स्पोर्ट्स न्यूज़ को सुबह 2 बनाया, और थैंकफुल फॉर द मैनेजमेंट ये करने के लिए, क्योंकि इरादा ये है कि सुबह 7:40 पर कुछ लोग स्पोर्ट्स मैगजीन मिस कर जाते हैं, और दिन में जब ट्रैवल करते हैं काम की ओर तो बात करते हैं, ए विकास ने क्या कहा, अरविंद ने क्या कहा। सो इस उत्सुकता के लिए, इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको वो जानकारियाँ फिर से दे। एंड विल ट्राई अवर बेस्ट टू बी क्लोज टू यू। अभी प्रीमियर लीग है तो इस पर भी आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। सम न्यू थिंग्स कमिंग अप। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज स्पोर्ट्स फैंस। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, एक साथ बहुत कुछ करेंगे। टेक केयर, गुड डे।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाई क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo lot plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac. Numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
4: साल, एक सफर और हजारों यादें, म्यूजिक के बीच मस्ती की बातें।
5: RM2 रेडियो मस्ती, हर पैशन के संग।
4: आपके फेवरेट ट्यून से लेकर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट तक, आपकी स्माइल से लेकर आपकी स्टोरीज तक, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एवरी बीट ऑफ RM2। एक साल में मिले कितने सारे दोस्त, और सबसे बढ़कर आपका प्यार। आज वॉल्यूम थोड़ा लाउड करो, स्माइल थोड़ी और ब्राइट करो, और सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करो। दिस इज आवर सेलिब्रेशन।

सेलिब्रेशन तो बनती है मेरे दोस्त, आप भी शामिल हो जाओ। आज तो पूरा दिन डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। इट्स सेलिब्रेशन टाइम, हैप्पी एनिवर्सरी।

0: Good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Musty.
2: आज तो हम पूरे दिन पूरी रात डांस करने

0: वाले हैं और मौका भी है, वजह भी है डांस करने का। चलो इस बात पे जिनको डांस नहीं आता उनको मौका देते हैं कि वो खुशी के मारे डांस करे, ऐसा भी होता है। हाँ होता है, ये रेडियो मस्ती पे होता है भाई। चलो अभी मैं आपको मौका देती हूँ दो एंट्री टिकट जीतने का फॉर कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबान याद को डॉट सेंटर 90 मिनट डांस थिएटर प्रोडक्शन सेलिब्रेटिंग द जर्नी ऑफ कथक फ्रॉम इट्स ऑरिजिन एट द क्लासिकल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन टू इट्स आइकॉनिक प्रेजेंस इन बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा। वाइब्रेंट मिक्स dance, music, cinema and storytelling bringing together classical tradition and Bollywood nostalgia curated and directed by Vidushi Arpita Banerjee। चलिए आपको मिल रहा है ये दो entry tickets। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हो रहा है कोदा आर्ट सेंटर में on Saturday 29th of August 7:30 PM and Sunday 30th of August at 6 PM। अगर आप जीतते हैं तो आपको अपना जो टिकट है आकर एमबीसी में कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल क्या है पहले ये सुन लीजिए, मेरा सवाल है आपको मुझे ये बताना है, अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना रेडियो मस्ती रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसको मिस कर दूं। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी मूवी है जिसमें विद्या बालन ने आरजे का किरदार निभाया था, लेकिन इस अच्छा इस मूवी में उनका नाम था जानवी एंड वो हमेशा कहती थी हेलो मुंबई। तो चलो मैं तो नहीं कर सकती, हेलो मॉरिशस कहना चाहूंगी। तो आप मुझे ये बताइए 2006 की ये कौन सी मूवी है जिसमें विद्या बालन ने आरजे का किरदार निभाया था। ऑन 549
1: और 1294 रेडियो मस्ती Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
2: Tech Mag, powered by 365. Bien plus encore.
3: We improve smartphone screens, cameras and processors almost every year, but battery life remains one of the biggest weaknesses. That could begin to change thanks to silicon carbon battery technology. Traditional lithium-ion batteries commonly use graphite in their anodes. By incorporating more silicon, manufacturers can potentially store more energy in roughly the same amount of space. The result could be larger battery capacities without necessarily making our phones much thicker or heavier. The technology is already beginning to appear in smartphones, including some of the latest foldable devices. That doesn't mean we're suddenly going to get an entire week from one charge, but after years of relatively gradual improvements in smartphone batteries, the battery itself could finally become one of the next major areas of competition between manufacturers.
2: Tech Mag was powered by 365.
1: Bien plus encore.
4: RM2
2: Radio Mustang.

0: Alright guys, हमने सवाल किया था आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी मूवी है जिसमें विद्या बालन ने आरजे का किरदार निभाया था और उनका कैरेक्टर था जानवी. मूवी आई थी 2006 में और सही जवाब है लगे रहो मुन्ना भाई. यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बनी है आरती. आरती जी हाँ आरती, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें. तो चलिए यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, ये है फ्रॉम कच्छ मिलितिया. ओके मोजी, आरती मोजी फ्रॉम कच्छ मिलितिया, आपको कंग्रेचुलेशन. आपको मिल रहा है यहाँ पर दो टिकट्स फॉर कथक की कहानी बॉलीवुड की जुबान याद कोडा आर्ट्स. तो आपको टिकट आकर एमबीसी कलेक्ट करना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड के साथ. तो डोंट फॉरगेट, आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे से सफर के 3:30 बजे के बीच अपने आईडी के साथ आकर कलेक्ट कर सकते हैं गाना. चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम समाचारों की ओर जो आप सुनेंगे 8 बजे.
1: To Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Salam, Fajr ke 8 bajila. आवाज़ समाचार सुना जा. नन्हे से अद्रियानो किलियानो पेरिन के बेरहम हत्या के चलते खुशबुआ के संगे पूरा मुरीस में गुस्सा सदमा और दर्द के जज्बात बातें पेट में कटर से मारे के बाद उकर पिता 7 महीना के हई बच्चा के एगो चादर में लिपटाए. डॉक्टर शैला प्रसाद जान की पोस्टमार्टम करेला. 30 बरिस के उकर पिता जॉन डैनियल पेरिन के गिरफ्तार करल गर रहल बाते जे खुद पुष्टि करलन के उ ई हरकत करे से पहला ड्रग नोशी करलन. ई घटना दूसर मुलजिम बच्चा के याद दिलाए लीला जोन खेले के उम्र में रहलन लेकिन बड़े के बुरे खेल के ही शिकार बन गल बाते. ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के बताइले ला कि एगो चेतना अभियान चलावल जाला. ई हादसा के चलत रेज ब्रेव गर्ल संगठन कानून के और सख्त बनाए के मांग करता. तंजीम के अनुसार एगो मासूम लड़का के जान लेवे होला के मौ के सजाए मौत देने के चाहेला बाती. मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप के स्थानीय निदेशिका करीना निजुस, पूर्व वित्त मंत्री रंगाना देन पराची और पुराने व्यापार मंत्री सुरेश कालीचरण के बीच फोन पर होला बातचीत के मुद्दा काल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के पूछताछ का केंद्र रहेला. सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को करीब 30 बिलियन रुपये की कीमत पर पेट्रोली कंट्रैक्टर देवी के सिलसिले में FCC जाँच कराता. हमनी के सूत्र के अनुसार प्रवीण जगनाथ फोन पर होल बातचीत पर कुछ भी नहीं कहना चाहा काहे के उ एकर हिस्सा नहीं रहलन. उ बोलन कि ठेका के सिलसिले में बोलन कि STC के प्रशासनिक परिषद ठेका देने पे मंजूरी देलन जा. और अंडर वार्निंग पूछताछ के बाद प्रवीण जगनाथ के जाए

के इजाजत देवल कर रहल आज जो मुल्क भर में इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद के मिलाद मनावल जाला मुख्तलिफ इलाका में जुलूस निकाले जात रलन बातें और जश्न करल जात बातें इस्लामी कैलेंडर के 12 रबीउल अव्वल के अल्लाह के आखिरी पैगंबर के पैदाइश होल बा कई दूसर मुल्क के तरह मुरिस में भी खास तकरीब के इनकाद करल जात बा। विदेश में अमेरिका ईरान के अर्थनीति के बर्बाद करे के दावा करेला वो ऐलान करेला कि ईरान के अर्थव्यवस्था को उसीमित बनाएगा बनावेला वो कर तजारती साझेदार के निशाना बना के ऊपर पाबंदी लगाए के तो ये रहर समाचार नमस्ते और सलाम।

0: 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market din ke 10 baje se 11 baje tak. Port Louis Urban Terminal Mall din ke 12 baje se 1 baje tak. Roswell Mall by West din ke 2 baje se 3 baje tak. Flak Taxi Stand next to bus station sham ke 4 baje se 5 baje tak. सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ. सेव द डेट, सेव द डेट. बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें. साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैग. तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. Sponsored by Lutavere.
1: RM2
2: Radio Musty.
1: Feel the Musty.

0: नानी के हाथ की डल पिठा, वाह क्या बात है, भूख लग गई आपको ना? हमें भी लग गई, पर हम क्या करें, अभी कोई तो है नहीं, कोई खिलाएगा क्या कोई हमें? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: सुबह सुबह खाने की बात मत किया करो, कुछ कुछ होता है। मुझे नहीं, पेट में चूहे कूदने लगते हैं बेचारे, अभी तो चूहे हाथी बन गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:10 हुए हैं, आज है 25 अगस्त, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी। यस, फर्स्ट एनिवर्सरी। इतने सालों तक प्यार दिया, इतना साथ दिया, थैंक यू सो मच। और आज भी हमारे इतने सारे लिसनर्स हैं, अभी भी हमारे साथ हैं, वो जो आपने हमें जोर से हमारे हाथ को थाम के रखा है ना, इसके लिए थैंक यू सो मच। चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, आपने थामा ही रहा हमारा हाथ, छोड़ा नहीं कभी, इसके लिए तो डिजर्व करते हो आप बहुत सारा प्यार। इसीलिए तो कल आएंगे ना हम सेलिब्रेट करने आपके साथ। और आपने तो अभी नोट कर ही लिया होगा कि हम दुनिया के कोने, दुनिया नहीं, हाँ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं अपने रेडियो के जरिए। लेकिन हम कल जब निकलेंगे सेलिब्रेशन के लिए, तो उम्मीद करती हूँ कि जिन जिन जगहों के नाम हमने लिए हैं, आप वहाँ पे ज़रूर होंगे और हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ, अभी मौसम कैसा रहेगा आज ये तो जान लेते हैं। हमारे साथ हैं सुमेरा, उनसे मिलते हैं।
3: It's the weather broadcast with winners.
4: On est tous winners.
5: आम हालत हमारे इलाके में, हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, पूर्वोत्तरी इलाकों में बारिश होगी और दोपहर बाद पश्चिम तथा सेंट्रल प्लाटो में रह रहकर बारिश होगी, और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान आसमान साफ होगा और हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। तापमान, सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 13 से 15, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूरज 6:25 पर शाम को 5:59 पर सूरज ढल जाएगा।
3: योर वेदर फोरकास्ट ऑन RM2
2: रेडियो मस्ती। RM2 Radio Musti.
1: RM2
2: Radio Musti.
6: Changement climat. Pas tout n'est que pécose ça même. Qui fait? Parce que la vie tout du monde dans tout pays affecté par la sécheresse. Pas bonne tempête, pas bonne baisse production alimentaire. Et un pays qui est plus vulnérable que les autres. Maurice, pour faire tonne sur la voie, ensemble avec ben les autres pays comme nous, de COP31, qui est une conférence internationale au changement climat. La voix Maurice.

0: C'est où la voie? Participe dans consultation qui ministère l'environnement PFA avant nous soumettre nos positions nationales. Donne-nous l'idée ou proposition, l'eau ça mène l'adresse là. menv@govamu.org et cop31proposals2026@gmail.com. Ou pour gagner plus renseignements, l'eau site internet et l'eau BVA qui passe Facebook officiel ministère l'environnement. Date limite, 4 et tantôt, le 6 septembre 2026.
1: Common Meads MBC and Lotoverti. This Wednesday, 26th of August. Or celebrate KJ MBC RM2 or MBC RM3 ki first anniversary. Subah 10 baje se lekar all over the island. Games, hangama, full on masti, guaranteed. Aaye aur maza lijiye Lotoverti ke sabhi zaruri educational informations aur responsible khel ke bare mein. Quiz sessions, goodies aur celebrations poore din ke dauran. Zyada jankari के लिए लोटोवेयर लोटोटेक के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए. लोटोवेयर और एमबीसी, हंगामा ही हंगामा.
2: RM2
3: रेडियो मस्ती.
2: RM2 रेडियो मस्ती.
4: वार्म वेलकम जहां से भी आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं. घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 8:14.

0: हमारे स्टूडियो में भी घुंघरू तोड़ परफॉर्मेंस हो रहा है, सबके सब झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं वैसे जैसे कि आप।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए जी, आज बढ़कर 19 मिनट हुए हैं। वेलकम स्वागत एंड हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। ये सिर्फ हमारा डे नहीं है, ये आपका है, आपका प्यार है। हम तो कोई भी गाना चला दे लेकिन सुनने वाले तो आप हैं, प्यार बरसाने वाले तो आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब हम सोच रहे हैं कि हम भी थोड़ा प्यार की खुशबू फैला दें, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बारजेलो। जी हाँ, अभी ये गेम जो है इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय बारजेलो, योर फ्रेग्रेंस स्पेशलिस्ट। बारजेलो is at Victoria Urban Terminal, Portuis, Bargello, the scent of quality. वैसे इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, you can call on 214-68-11 or 5251-1805. And in the context of Rakhi, you can enjoy a 3-day special promo of 25% off on your niche brand perfumes till 28th of August only. तो यहाँ पर आपको voucher मिल सकता है worth 500 rupees. अब आपको मुझे बताना है, मेरे सवाल का जवाब देना है, ठीक है? ओके, आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द बारजेलोज शॉप नंबर एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल? व्हाट इज बारजेलोज शॉप नंबर एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल? इज इट A21, इज इट B39, इज इट C45? आपको जवाब देना है ऑन 549 and 1294 पूरे नाम और पते के साथ। तो जल्दी करो। और अरे पूनम आ गई, क्या कहना चाहती है सुनते हैं।
3: आज RM2 और RM3 की पहली सालगिरह है, आप सभी लिसनर्स के प्यार और साथ ने इस एक साल को खास बनाया। दिल से धन्यवाद और हैप्पी एनिवर्सरी टू RM2 और RM3।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती करके श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन। 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति, आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण, मधुर कीर्तन, घुसी मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: करेंगे सबका स्वागत।
1: हम भी तो बैठे हैं आपका स्वागत करने के लिए।
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musty.
1: चलिए जी, यहाँ पर आपके लिए हमने सवाल किया था, हमने पूछा था व्हाट इज बार्जेलोज शॉप नंबर एट विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल, इज इट ए 21, इज इट बी 39, इज इट सी 45। द राइट आंसर इज बी 39। यस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब चलिए देखते हैं कि हमारे विनर कौन हैं, कौन हैं जिन्होंने जीता है 500 रुपीज का ये वाउचर। सही जवाब देकर विनर बनी है योशिता सुकन फ्रॉम लिस्पेरांस त्रिबुशे। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो आपको मिल रहा है ये 500 रुपये का वाउचर, विच यू हैव टू बी केयरफुल, यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो वाउचर है आपको पोस्ट किया जाएगा। ओके, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको पोस्ट कर दिया जाएगा और आप जो है बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड लेट मी टेल यू दैट This game was brought to you by Barcello, your fragrance specialist, जो कि है at Victoria Urban Terminal, Portreys। चलिए इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को हम कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू हमें हमेशा अपने दिल में जगह देने के लिए। इट्स सेलिब्रेशन टाइम, यस वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती एंड रेडियो मनोरंजन।
4: साल भर में सबसे प्यारा
5: फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाटे दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा। पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्दाने RM2 अने RM3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ।
6: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
7: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु।

0: और चलिए जिन्होंने हमारे स्पोर्ट्स को मिस कर दिया है एक बार फिर अरविंद से मिले।
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं अरविंद का। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। नए मैनेजर ज़ाबी अलोंसो के साथ चेल्सी ने प्रीमियर लीग में जीत के साथ शुरुआत की। श्री गणेश सफल रहा पर गोलकीपर को लेकर चिंता भी है। फुलहम 2 चेल्सी 3 टीम का अटैकिंग ट्रियो जानलेवा दिखता है। नया खिलाड़ी मोर्गन रॉजर्स रिकॉर्ड 117 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग उससे पैसा वसूल होने लगा है। पहले मैच में खाता खोला उसके साथ मैन ऑफ द मैच कोल पाल्मर और युवाओ पेड्रो भी घातक रहे। इस त्रिकोणीय आक्रामक शक्ति से चेल्सी बहुत गोल स्कोर करेगा पर गोलकीपर को लेकर प्रॉब्लम है। रॉबर्ट सांचेज सस्ते में 2 गोल खा गया। 2 गलतियां 2 गोल। मैच के बाद अलोंसो ने कहा सांचेज को आगे के लिए सबक मिलेगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगा। पर फुटबॉल पंडित जेमी कैरागर ने कहा चेल्सी के स्ट्राइकर इस सीजन प्रीमियर लीग के बेस्ट में हैं, लेकिन अगर सांचेज नंबर 1 गोलकीपर रहे तब भूल जाओ टाइटल। जो भी हो चेल्सी जीत गया फुलहम के मैदान में। प्रीमियर लीग का दूसरा सप्ताह इस शुक्रवार से फ्राइडे मैच क्रिस्टल पैलेस और मैनचेस्टर

मैनचेस्टर सिटी के बीच। सैटरडे फिक्स्चर्स, अर्ली किक ऑफ 3:30 बजे, 3:30 किक ऑफ लिवरपूल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, फिर बोर्नमुथ एवर्टन, कोवेंट्री हल सिटी, टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड, संडे मैच चेल्सी ब्राइटन, लीड्स ब्रेडफोर्ड, संडरलैंड फुलहम, मैनचेस्टर यूनाइटेड इप्सविच, और मंडे नाइट फिक्स्चर एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल, ये इस वीकेंड के मैच हैं। कल स्पेन के ला लीगा में ओसासुना और लेवेंटे के बीच मैच ड्रॉ गया 0-0, मलागा और डिपोर्टिवो के बीच भी मैच ड्रॉ 1-1। जर्मन कप में वुल्फ्सबर्ग और अल्टग्लिएनिक के टीम के बीच मैच ड्रॉ 3-3, पेनाल्टी पर वुल्फ्सबर्ग क्वालिफाई। एफसी कोल्ड जीत पाया, शाल्के 0-4 ने एक्स्ट्रा टाइम में जाके अपना मैच जीता। इटली के सेरी अ में लाजियो की जीत बोलोनिया पर 1-0 से, और एएस रोमा के लिए मालेन का हैट्रिक 4-0 से रोमा ने फ्लोरेंटीना को हराया। ट्रांसफर न्यूज, मैनचेस्टर सिटी पाल्मेरास के विंगर अलन एलियास को साइन करने जा रहा है, दाम लगभग 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। अलन साविनो का स्थान लेगा जो टोटनहम हॉटस्पर में चला गया, मामूश भी जाने वाला है। मैनचेस्टर सिटी की नजर लिवरपूल के कोडी गाकपो पर भी है, टोटनहम भी गाकपो के पीछे है। निको गोंजालेस सिटी से न्यूकासल यूनाइटेड में जा सकता है, बात हो रही है लगभग 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की। इधर चेल्सी 3 ऑफर भेज चुका है बोर्नमुथ के एलेक्स स्कॉट के लिए, तीनों रिजेक्टेड। आर्सेनल पहले सितंबर के डेडलाइन डे से पहले एथलेटिको मैड्रिड से जूलियन अल्वारेज को साइन कर लेना चाहता है, पर प्रॉब्लम यह है कि अल्वारेज बार्सिलोना में जाना चाहता है, एथलेटिको मैड्रिड उससे अपने ला लीगा राइवल से नहीं बेचना चाहता। आर्सेनल 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है, ज्यादा भी। चैंपियंस लीग की बात करें, ग्रुप स्टेज के लिए आज 3 टीमें क्वालिफाई होंगी, प्ले ऑफ के रिटर्न लेग के 3 मैच आज खेले जाएंगे। सबा का मुकाबला एचबीआर शेवा से है, शेवा टीम 2-1 से आगे है, पर सबा आज होम मैदान में होगा। बोडोग्लिंट एनईसी टीम का स्वागत करेगा, 3-1 की बढ़त है बोडोग्लिंट के लिए, और सेल्टिक जाएगा एलएएस के मैदान में, 3-0 की जीत हुई थी फर्स्ट लेग में सेल्टिक के लिए, तो आज के लिए बोडोग्लिंट सेल्टिक फेवरेट हैं क्वालिफाई होने के लिए। कल बाकी मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड के लीग कप के सेकंड राउंड की बारी है, कुछ मेन फिक्स्चर्स, कार्डिफ नॉरविच, ब्लैकबर्न शेफील्ड यूनाइटेड, डोनकास्टर मिडल्सब्रो, फिर इप्सविच लेस्टर, प्लायमाउथ कोवेंट्री, शेफील्ड वेडनेसडे वुल्व्स, साउथहैम्पटन वेस्टहैम, स्टोक हल सिटी, बर्मिंगहम ब्रैडफोर्ड और नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स। कल के मैचों में ब्रैडफोर्ड बर्नले, न्यूकासल यूनाइटेड वेस्ट ब्रोमिच आल्बियन, स्पर्स चार्ल्टन, प्रेस्टन एवर्टन, ये हैं इंग्लिश लीग कप के सेकंड राउंड के मैच। क्रिकेट, टीम इंडिया ऑन टॉप, श्रीलंका में दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम मेजबान होस्ट टीम श्रीलंका पर टोटल कंट्रोल। भारतीय टीम ने 503 रन बनाकर डिक्लेयर किया, पदिकल और ध्रुव जुरेल की ओर से शतकीय पारी, दोनों के लिए सेंचुरीज। जवाब में श्रीलंका 2 विकेट खोकर अभी केवल 8 रन बनाकर खेल रही है। आज तीसरे दिन का खेल होगा, श्रीलंका की टीम 495 रन से पीछे हैं आज तीसरे दिन का खेल। और साइकिलिंग के हमारे सितारे दुनिया भर में चमक रहे हैं, इंग्लैंड में किम्बर्ली, तो फ्रांस में ट्रिस्टन ऑजी, तो जूनियर में ट्रिस्टन ऑजी ओवरऑल रैंकिंग में दूसरा स्थान ले पाया। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ RM2, टेक केयर, बाय बाय, और लगे हाथ RM2 RM3 के, आज बहुत बड़ा दिन है, और स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से मैं और विकास, हमारे सभी दोस्त आपको थैंक यू कहेंगे कि आप लोग सुबह शाम स्पोर्ट्स मैगजीन सुनते रहते हैं, और आपके मांग पर, आप लोगों के डिमांड पर हमने स्पोर्ट्स न्यूज़ को सुबह 2 बनाया, और थैंकफुल फॉर द मैनेजमेंट ये करने के लिए, क्योंकि इरादा ये है कि सुबह 7:40 पर कुछ लोग स्पोर्ट्स मैगजीन मिस कर जाते हैं, और दिन में जब ट्रैवल करते हैं काम की ओर तो बात करते हैं, ए विकास ने क्या कहा, रवि ने क्या कहा। सो इस उत्सुकता के लिए, इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको वो जानकारियाँ फिर से दे।

0: एंड विल ट्राई अवर बेस्ट टू बी क्लोज टू यू. अभी प्रीमियर लीग है तो इस पर भी आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे. सम न्यू थिंग्स कमिंग अप. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज स्पोर्ट्स फैंस. आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, एक साथ बहुत कुछ करेंगे. टेक केयर, गुड डे.
1: और हम साथ साथ हैं, है ना अरविंद.
2: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
3: चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
4: वो नहीं आने वाले, आने वाले, आने वाले. वो बेवफा छलावा थी.

0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो रेस लगा रही थी मेरे से, मैं आगे निकल गई, वो पीछे चली गई, वो भूल गई उसके पैर उल्टे हैं, वो आगे नहीं पीछे जाती है।
1: Wednesday, 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RN3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market. दिन के 10 बजे से 11 बजे तक पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल, दिन के 12 बजे से 1 बजे तक रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट, दिन के 2 बजे से 3 बजे तक फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन, शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को।

0: सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी स्पॉन्सर्ड बाय लुटवेयर। लुटवेयर मॉर्निंग बीट।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: A good beat for your morning show.
2: RM

0: Voss. Nestlé. Good food, good life.
1: दोस्तों, ग्रैटिट्यूड वो रोशनी है जो हमें याद दिलाती है कि लाइफ में जो है वो भी बहुत है। कभी कभी हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और जो ऑलरेडी मिला हुआ है उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। ग्रेटफुल होना मतलब हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करना। फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, पीस या सिंपली एक नया दिन। जो नहीं मिला उसका स्ट्रेस कम करो और जो मिला है उसके लिए थैंक यू कहना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स को हमेशा रिमूव नहीं करता, बट उन्हें देखने का नज़रिया ज़रूर बदल देता है। आज रात तीन चीज़ों को ज़रूर लिखें एंड बी जेन्युइनली ग्रेटफुल। और ज़्यादा नहीं तो अगर आप हमें इस समय सुन रहे हैं, आपके लाइफ में आपको जो भी मिला है उसके लिए थैंक यू बोलिए एंड बी ग्रेटफुल। जैसे कि हम ग्रेटफुल हैं कि हमारे जो रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स हैं, हमें अपना प्यार देते हैं, हमें अपना साथ देते हैं। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन। हमारी ज़िंदगी में इस प्यारे से क्या कहते हैं, इस प्यारे से तोहफे को अपनाने के लिए और हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए।
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
2: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
3: Milo, libère ta force.
2: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
3: Milo, libère ta force.
2: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
0: Nestlé, good food, good life.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
0: Nestlé, good food, good life.
5: RM2
6: Radio Musty.
5: Feel the

0: खुशियां बटोर लो। जी हाँ, खुशियां बटोरने आए हैं, खुशियां बांटने आए हैं, आप सबों का साथ देने आते हैं रोज। और हर रोज हम कोशिश करते हैं कि बस एक वजह बन जाए हैं हम या हमारे गाने आपके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो जी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस माइक के सामने नहीं होते हैं, जो बहुत काम करते हैं, जिनका हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये जो गेम्स होते हैं, ये जो गेम के बाद लोगों को कॉल करना होता है, उनको बोलना पड़ता है उनको क्या गिफ्ट मिला है, कब लेने आना है, या तो फिर कभी इधर उधर भागना होता है। जब हमारा आउटडोर कहीं पर हमारा प्रोग्राम होता है तो हमारे साथ मिलकर सारी प्लानिंग करना, सारी क्यूशी तैयार करना, गिफ्ट्स देखना, ये सारी चीज़ें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। एंड उनमें से वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन अभी आज मैं उरुषा को मिस कर रही हूँ, लेकिन इस लड़के को मैंने पकड़ के बिठाया है। मेरे साथ है दीपशिका। गुड मॉर्निंग दीपशिका।
3: गुड मॉर्निंग वेदिता। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।
0: सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? इट्स आवर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो।
3: Very, very, very excited, very happy.
0: And lots and lots and lots of preparations, so many things going on. और इतनी सारी मस्ती की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं. So, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे जो listeners हैं, आप उनसे हमेशा connected हैं, because every time अच्छा winner को call करती हूँ, बात करती हूँ, so you always call them. ये हमारी production assistant है और ये हमारी कह सकते हैं हमारी जो events होते हैं उनमें अगर ये नहीं होती ना तो हम पता नहीं, ये सारी चीज़ें यही करती है, भागते भागते, जैसे ही नर्मदा जी कहती हैं कि ये करना है, अच्छा बॉस करती हूँ, और फिर इसके बाद सारे काम फटाक से हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस रेडियो, बीइंग पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड आप उन लोगों में से हो जिन पे हम बहुत ज़्यादा बैट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। एनी मैसेज फॉर द लिसनर्स?
3: थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Without your support, this couldn't have happened today.
0: I'm so happy to have you in the studio.
3: Happy anniversary to all of you. Happy anniversary, Radio Musti and Radio Manoranjan.
0: Thank you so much, guys. वैसे दो लड़कियां इधर भी हैं, उछल कूद कर रही हैं, आ गई हैं उनका विश।

0: साल, हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार, हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3।
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: Hey guys, keep on listening to Radio Masti. Thank you so much. एक बार फिर आपको Radio Manoranjan, Radio Masti की जो anniversary है, इस मौके पे आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयां. चलिए इसी के साथ कुछ और भी friends से कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी आवाज गूंज रही है यहाँ पर. Thank you so much. और अगले गाने के साथ 9 बजे के समाचारों की ओर हम पहुंच रहे हैं.
1: Musti ka station, music ka celebration. RM2 Radio Musti, 1 year of pure sensation. Happy anniversary, RM2.
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 9 बजे हैं. देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं सुमेरा, चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. नमस्कार आदाब सुमेरा.
4: नमस्कार आदाब. कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं में कल एक दवा उपलब्ध कराई गई है, बाकी 2 दवाओं की कमी के चलते नेशनल कैंसर सेंटर ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया. स्वास्थ्य मंत्रालय में कापात बैठक भी बुलाई गई और इस हालत की वजहों का पता लगाया गया. मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि दवाओं की खरीद के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा बेहतर निगरानी के लिए हर 2 हफ्ता एक मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक लगेगी. सांसद वेरोनिक लुई गोविन के पति गुलशन गोविन को जमानत पर रिहा करने पर एतराज जताया गया. प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कास्नोयाल के बाशिंदों के साथ उनके रिश्तों के मद्देनजर और मुख्तलिफ स्कीपरों के साथ उनके ताल्लुकात से शायद वो फरार हो सकते हैं. प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि रूनियन टापू से सीसीटीवी तस्वीरों से मुजरिमाना पहलू सामने आए हैं. मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप की स्थानीय निदेशिका करीना ने जिस पूर्व वित्त मंत्री रंगानाथन पारियाच्ची और पुराने व्यापार मंत्री सुदेश कालीचरण के बीच फोन पर हुई बातचीत का मुद्दा कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पूछताछ का केंद्र रहा. सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप को करीब 30 बिलियन रुपए की कीमत पर पेट्रोली कॉन्ट्रैक्ट देने के सिलसिले में FCC जांच कर रहा है. हमारे सूत्रों के अनुसार प्रवीण जगनाथ ने फोन पर हुई बातचीत पर कुछ नहीं कहना चाहा क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठेके के सिलसिले में बात की और पुष्टि की कि STC की प्रशासनिक परिषद ने ठेका देने पर मंजूरी दी थी. अंडर वार्निंग पूछताछ के बाद प्रवीण जगनाथ को जाने की इजाजत दी गई. जॉन डैनियल पेरिन पर कत्ल करने का अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज है. वो 31 अगस्त को फिर से अदालत के सामने पेश होगा. उसे फिलहाल ब्रांसेगार्ड मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया. आज छोटे से आद्रियानो किलियानो पेरिन के अंतिम संस्कार किए जाएंगे. आज मुल्क भर में इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद की मिलाद मनाई जा रही है. मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले जा रहे हैं और जश्न किए जा रहे हैं. इस्लामी कैलेंडर की 12 रबीउल अव्वल को खुदा के आखिरी पैगंबर की पैदाइश हुई थी और कई दूसरे मुल्कों की तरह मुशरस में खास तकरीबों का इनेकाद किया जा रहा है. हस्ब दस्तूर फिनिक्स में हल्का कादरिया इशात इस्लाम की जानिब से कौमी सतह पर ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है. विदेश की खबरों में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान की अर्थनीति को सीमित बनाएगा. वो उसके तजारती साझेदारों को निशाना बनाएगा क्योंकि मध्य पूर्व की जंग में कोई नया मसौदा सामने नहीं आया. अमेरिका का दावा है कि वो ईरानी अर्थव्यवस्था को मुश्किल परिस्थिति

0: पाबंदियों में डालेगा, इसलिए वो ईरान के साथ जुड़े देशों पर नई पाबंदियां लगाने का इरादा रखता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार राधा।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv.

0: 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market din ke 10 baje se 11 baje tak. Port Louis Urban Terminal Mall din ke 12 baje se 1 baje tak. Roswell Mall by West din ke 2 baje se 3 baje tak. Flak Taxi Stand next to bus station sham ke 4 baje se 5 baje tak. सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ सेव द डेट सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर तो जरूर हमारा इंतजार करें साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी गुडलैंड्स पोर्ट लुइस रॉसबेल एंड फ्लैक तैयार हो जाइए हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी Sponsored by Lutavere.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: हमें भी तो प्यार का ही धन मिला है और इतना मिला है कि हमारा आंचल छोटा पड़ गया है. Once again, thank you so much. सुबह के 9:11 हुए हैं. We are celebrating the first anniversary of Radio Masti and Radio Manoranjan. हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार. Thank you so much. एक गेम के साथ थोड़ी देर में वापस आते हैं. मैं हूँ वेदिता, आपके साथ हूँ जब तक कि मेरे साथ पूनम नहीं जुड़ जाती.

माल, हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Welcome to Radio Musty. Yes.
3: बाप रे बेटा, ऐसा मत कर, स्पीकर फट जाएगा।
4: मस्ती के मूड में आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
3: गुड मॉर्निंग नीतू, क्या बात है, क्या खा के आई मॉर्निंग में?
4: मैं सोच रही थी तुम लाई हो आज स्पेशल डे।
3: नहीं तो आज
4: ये भूख के मारे है।
3: ये पार्टी होगी।
4: पार्टी तो होगी, सुबह शाम रात पार्टी तो होने वाली है। विश यू एंड आवर जितने भी हमारे आरजेस हैं, RM2 रेडियो मस्ती एंड RM3 रेडियो मनोरंजन को हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। हम एक साल के हो गए हैं।
3: हम एक साल के हो गए हैं एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग।
4: बड़े बच्चे बन गए।
3: एक साल का बच्चा बड़ा हो बन गया, लेकिन धमाका कर रहा है।
4: ऑफ कोर्स धमाका ना हो, क्योंकि हमारे साथ हमारे जितने भी लिसनर्स हैं विदिता, उन सभी को भी थैंक यू सो मच। दिल से आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आप ही के बदौलत तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मॉर्निंग से यही चल रहा है, और मॉर्निंग से पता नहीं वाइब कुछ अलग
4: मॉर्निंग है ना।
3: बिल्कुल, अभी तो मस्ती है, तो मॉर्निंग मस्ती हो रही है सभी लिसनर्स के साथ। अच्छा ये बताओ कि आज प्लानिंग क्या क्या है, क्या करना है आज?
4: देखो आज मस्ती का, यानी कि मस्ती के मूड में आ गए हैं तो डेफिनेटली सेलिब्रेट करने वाले ही हैं। लेकिन आज के लिए तो हम करेंगे ही सब
3: कल
4: के
3: क्या
4: साथ
3: करेंगे?
4: कल हम निकलेंगे रास्ते पर, यानी कि एक रोड शो होने वाला है और कई जगहों पर हम जाने वाले हैं। हमारे जितने भी लिसनर्स ऑडियंसेस हैं, हमें सुनते हैं लेकिन देखते भी है। कई लोग बोलते हैं हम आपको रेडियो में देखते हैं।
3: रेडियो में देखते हैं,
4: असल में देखने वाले हैं, क्योंकि हम आपके और करीब आने वाले हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ही सर लोग हैं जो हमारे टिकटॉक के साथ जुड़े रहते हैं और हमारे लाइव्स होते हैं, हमारे स्टूडियो में इतने सारे लोग हमसे मिलने आते हैं, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आज का दिन हमारे लिए, हमारे लिसनर्स ने इतना खास बनाया है। वी आर एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेटफुल।
4: यस, और ये जो प्यार है, अपनापन है, ये जो दोस्ती है, कभी कभी कुछ लोग दुखी हो जाते हैं तो एक प्यारा सा गाना आ जाता है, रेडियो पर सुन लेते हैं तो मूड एकदम से टकाटक जैसे है वो हो जाता है। कभी कभी हम भी लाइक परेशान होते हैं, आप सबकी आवाज सुनकर हम भी खुश हो जाते हैं।
3: हाँ, दैट्स द लव। हम एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं,
4: वो तो है ही। अगर परेशान ना करें तो आगे जिंदगी बिता नहीं पाएंगे। दस पोस्ट हाँ,
3: लेकिन खाली, खाली लगता है ना,
4: खाली खाली लगता है,
3: इसलिए रेडियो का नाम है रेडियो मस्ती। यहाँ पर होती है मस्ती। तो चलिए भाई, अब मस्ती तो हो ही रही, नीतू भी आ गई है, तो ऐसा करते हैं अभी आज भी हमारा सेलिब्रेशन होगा, कल हम बाहर होंगे, तो अभी के लिए थोड़ा मेकअप वेकअप कर ले।
4: चलो
0: Wednesday 26th of August, save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain, Goodlands New Market, दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल, दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट, दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन, शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere. Lutavere.
1: Welcome to RM2. Musty Mornings. Radio Musty.

आज आर एम टू और आर एम थ्री की पहली सालगिरह है। आप सभी लिसनर के प्यार और साथ ने इस एक साल को खास बनाया। दिल से धन्यवाद और हैप्पी एनिवर्सरी टू आर एम टू और आर एम थ्री।

0: You're listening to Radio Masti Vedita के साथ. Thank you so much, guys. चलिए भाई, अभी नीतू शाह से मिले थे, एक और मेहमान आ गई है.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Masti.
0: चलिए भाई, ये तो मॉर्निंग में आती हैं आपको जगाने के लिए अपने गीतों के साथ. कुछ पुराने गाने होते हैं और साथ में कुछ नए गाने होते हैं. हाँ, नए गाने की बात करें तो इनके गाने थोड़े इतने भी नहीं होते, 90s से तो काम चला ही लेती है. चलिए मिलते हैं और अभी बात करते हैं हम पूनम से. हाय पूनम.
3: हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन.
0: गुड मॉर्निंग पूनम.
3: क्या हाल चाल है सबका?
0: हाल चाल तो एकदम जबरदस्त.
3: वो आपके स्टाइल से आज पता चल रहा है कि आज आप किसी अच्छे से मूड में है भाई.
0: आज का क्या, हम तो हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं, लेकिन आज स्पेशल खास इसलिए है ना, क्योंकि आज हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ रेडियो मस्ती एंड रेडियो मनोरंजन.
3: राइट, RM2 रेडियो मस्ती आपके साथ एक साल से है और RM3 रेडियो मनोरंजन, इन दोनों ने जो कॉम्बिनेशन दिया है ना, पूरे मॉरिशियस को मैं बता नहीं सकती. हर तरह के गाने
0: दोनों हर तरफ है ना.
3: यही तो चीज होती है जब सब लोग हर तरफ होते हैं और हमारे लिसनर्स भी तो हर तरफ है, जम करके यहाँ आ जाते हैं, जम करके वहाँ आ जाते हैं और अपने जो मैसेजेस होते हैं और जो अपना प्यार होता है हमको ऐसे बांटते चले जाते हैं और हम पूरे मॉरिशस में वो जो खुशबू है ना फैलाते चले जाते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सो आपको रेडियो मस्ती रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमारी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ.
3: और आपको भी
0: थैंक यू सो मच. एंड हम एक साल से एक दूसरे के साथ हैं. लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम सिर्फ रेडियो नहीं चलाते, यहाँ पर सिर्फ रेडियो पर यहाँ आके हम लोग सिर्फ बात नहीं बनाते, यहाँ पर रिश्ते बनते हैं, फैमिली बनते हैं.
3: right.
0: और यहाँ पर हम लोग एक फैमिली हैं और ये फैमिली इतनी मस्ती खोर है, इतनी मस्ती खोर है.
3: मैं तो एक साल से ही आई हूँ यहाँ पर और मैंने जितना प्यार यहाँ पर पाया है, यहाँ पर सारों का जो सुबह सुबह मिलना होता है, चाहे होता है, आंखों में आंसू भी होते हैं और मॉर्निंग में जो धमाके करते हैं हम लोग डांस के साथ में, मस्ती के साथ में, और किसी के भी शो में घुस जाते हैं और पूछते हैं क्या हाल चाल है, ठीक है ना, तो ये तो चलता ही रहेगा ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए, थैंक यू सो मच पूनम. इसी के साथ पूनम जो है अभी आपका साथ देने वाली है. बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर खूबसूरत गीतों का सिलेक्शन जारी रखते हैं. थैंक यू पीपल, थैंक यू सो मच वंस अगेन.

0: मस्ती का स्टेशन, म्यूजिक का सेलिब्रेशन, RM2 रेडियो मस्ती, वन ईयर ऑफ प्योर सेंसेशन, हैप्पी एनिवर्सरी RM2।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: इंडीड इट्स अ वेरी वेरी वेरी स्पेशल डे टुडे. हम सभी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी. तो हमारे साथ स्टूडियो में नर्मदा जी हैं. चलिए उनसे पूछते हैं वो कैसा फील कर रही हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. नमस्कार जी नर्मदा जी.
1: गुड मॉर्निंग वेदिता, और हमारे तमाम जितने भी लिसनर्स लोग हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार बोलते हुए मैं हैप्पी एनिवर्सरी बोलना चाहूंगी. आज हमारा जो RM2 RM3 है एक साल का हो गया है.
0: हम बोल रहे हैं छोटा सा बच्चा बड़ा धमाका,
1: बहुत बड़ा धमाका कर रहा है. और फिर सुबह से मैं आपको सुन रही हूँ वेदिता, आप सभी लोगों को सम्मिलित करते हुए आज का ये दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात
0: है. सेलिब्रेशन है.
1: और एक बात जो है आप मिस कर गई है, हमारे ऑडियंस को बताना जरूरी है, याद दिलाना बल्कि जरूरी है कि आज शाम MBC टेलीविजन के तीसरे चैनल पे शाम के 6:30 बजे समाचार के ठीक बाद आप देखेंगे हमारे ऑडियंस को एक नए अंदाज में.
0: हम चाहते थे कि वो आप बोले क्योंकि हमें शर्म आती है. आप हमें झूमते हुए गाते हुए देखेंगे.
1: हम देखेंगे कि किस तरह हमारे ऑडियंस मस्ती में है, एंजॉय कर रहे हैं, और इसी प्रकार आप लोग जब हमको सुनते हैं और हम आप लोगों के पास आते हैं तो ये जो कनेक्शन होता है उन सब का बातों में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है. आपका साथ हमेशा रहे इसी प्रकार हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, यही हमारी प्रार्थना है.
0: और जब नर्मदा जी नहीं होती हैं तो एक ऐसा इंसान है यहाँ पर, एक ऐसा शख्स है हमारे बीच जिनके पीछे हम सभी भागते हैं जब भी कुछ होता है, और वो है हमारे प्यारे से दोस्त, हमारे RG, हमारे चैनल कोऑर्डिनेटर, और वो है विकास गौड़.
1: और ये पूरी टीम जो है आज स्पेशली आज के दिन, कल का दिन है, उनको सच में पूरी जो टीम है बहुत मिस कर रहे हैं.
0: तो
1: हेलो विकास, हैप्पी एनिवर्सरी.
2: हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी एनिवर्सरी. थैंक यू सो मच पूरी टीम को. टेक्नोलॉजी का फायदा है कि हम और आप कनेक्टेड हैं, जैसे हमारे लिसनर्स कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के जरिए, रेडियो के जरिए. So thank you so much for making part of the celebration. और जैसे नर्मदा जी ने कहा कि हमारी टीम ने बहुत धमाका किया, बहुत मस्ती की है, इसको देखना ना भूलें. We had so much of fun and I'm sure आप उसका हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे जैसे हमेशा बनते हैं रेडियो पर. और आज हमारी टीम बाहर भी जाएगी, घूमती फिरती, लोग चल रही है की तरह. सो इट्स स्पेशल डे एंड ये तो शुरुआत है. अब जब आपका साथ है तो बहुत लंबा आगे जाना है. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी दिल से. और ये कहूंगा कि म्यूजिक को अपना साथी हमेशा बना रखो, RM2 RM3 हमेशा आपके साथ.
0: थैंक यू सो मच विकास.

0: एंड विश्मा को भी हमारी ओर से रेडियो मस्ती रेडियो मनोरंजन की शुभकामनाएं हैं. सो आई गेस शी इज अराउंड समवेयर. आई वांट हर टू से अ फ्यू वर्ड्स अगर वो आपके पास है तो.
1: Hello, happy anniversary.
0: Happy anniversary.
1: Everyone.
0: Thank you, Vishma. Thank you so much.
1: Or speak in English rather. So all our fans of Radio Manoranjan, I'll say keep listening to us every morning. Telugu program hote hi hai. And they are there. They keep waiting for the programs. So keep listening. And we'll always be there for them.
0: थैंक यू विश्मा. थैंक यू सो मच विकास. थैंक यू सो मच विश्मा. चलिए नर्मदा जी थैंक यू. अभी बातें तो हमारी चलती रहेगी और भी बहुत सारे लोगों से मिलना होगा. इसी गाने के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं समाचारों की ओर जो आप सुनेंगे 10 बजे. फिर नील मनी नहीं बल्कि यहाँ पर पूनम होगी आपके साथ.

वेंसडे 26 अगस्त, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RN3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुड लेंस न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक।

0: रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट, दिन के 2 बजे से 3 बजे तक। फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन, शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्टरीज, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.
1: Time check, सुबह के 10 बज रहे हैं।
2: RM2 Radio Musti.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
5: North, South,
0: 103.5.
5: East, West,
0: 96.4.
5: Center,
0: 99.4.
6: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
1: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
7: नमस्कार राधा। मुरशिद एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने एनसी की परीक्षाओं के निर्धारित समय आम किए। 2 से 16 अक्टूबर के बीच ये इम्तहान किए जाएंगे। 2 अक्टूबर को ऑटन डिज़ाइन का पर्चा होगा, 6 अक्टूबर को आईसीटी, फिर 7 तारीख को फ्रांसीसी जबान और सोशल एंड मॉडर्न स्टडीज़ की परीक्षाएं होंगी। 9 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी स्टडीज़, जबकि 13 अक्टूबर को 3 पर्चे होंगे, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, एशियाई भाषाओं के, अरबी जबान और ख़याल मौरिशिया। 15 अक्टूबर को साइंस तथा 16 अक्टूबर को रियाजी यानी मैथ्स के साथ इम्तहान ख़त्म होंगे। सरकार ग्रेड 9 में एनसीए को खारिज करने के लिए सुधार ला रही है। पिछले हफ्ते ही एक ब्लूप्रिंट को प्रधानमंत्री दफ्तर के सुपुर्द किया गया, जिसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कल रात मून साहिल पर एक एलिफेंट सील नजर आया, लक्स होटल के पास उसे देखा गया। फौरन स्ट्रैंडेड मामल प्रोटोकॉल को लागू किया गया। नेशनल कोस्ट गार्ड और फिशरीज प्रोटेक्शन सर्विस ने जानवर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। रात भर उस पर निगरानी रखी गई। आलबी अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने आज सुबह उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन किया। अधिकारी जनता से मांग करते हैं कि वो उसके करीब जाने की कोशिश न करे। आज मुल्क भर में इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद की मिलाद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले जा रहे हैं और जश्न किए जा रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर की 12 रबीउल अव्वल तारीख को खुदा के आखिरी पैगंबर की पैदाइश हुई थी। कई दूसरे मुल्कों की तरह मुरशस में भी खास तकरीबों का इनेकाद किया जा रहा है। मस्जिदों में सुबह सादिक खास तकरीरें की गईं। जुमा मस्जिद में भी खास प्रोग्राम रहा। हस्ब दस्तूर फिनिक्स के हल्के कादरिया इशाती इस्लाम की जानिब से कौमी सतह पर ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी और इसका सीधा प्रसारण MBC टेलीविज़न पर किया जाएगा। इसके अलावा सुन्नी रजवी पोटवी ईदगाह में भी ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। विदेश में फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में एक भवंतर की वजह से दर्जनों घर तबाह हुए हैं और करीब 40 लोग जख्मी हुए। भवंतर से पेड़ उखड़ गए हैं और कई इमारतों की छतें उड़ गई हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Welcome to RM2
6: Musti Mornings Radio Musti.
0: आज RM2 और RM3 की पहली सालगिरह है। आप सभी लिसनर्स के प्यार और साथ ने इस एक साल को खास बनाया। दिल से धन्यवाद और हैप्पी एनिवर्सरी टू RM2 RM3।

0: to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते, 10:10 हो चुके हैं और आज का मूड है फुल ऑन पार्टी मूड। सोचो RM2 रेडियो मस्ती का और RM3 रेडियो मनोरंजन का है पहला हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम तो कहाँ से स्लो गाने चलाने वाले, बिल्कुल नहीं चलाने वाले। यहाँ पर जो माहौल है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर जो ये गाना थाना दीवाने वाला, इसने सबको दीवाना बना दिया है और हम चाहते हैं कि आज आप जहाँ जहाँ पे हैं बस दीवाने बनकर रहें, क्योंकि है आज हमारा सभी का प्यारा, सभी आरजेस का प्यारा RM2 रेडियो मस्ती का और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला जन्मदिन। तो सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसको जन्म तो दिया है हमारे MBC ने और इसका पालन कर रहे हैं हम सारे। तो इन्जॉय कीजिए गानों को और साथ में जुड़े रहिए हमारे प्यारे से हैप्पी बर्थडे टू यू के साथ।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
3: 10:26 हो चुके हैं दोस्तों और यहाँ पर चल रहा है जैसे कि मस्ती का माहौल, तो हमने सोचा कि चलो आपके लिए भी एक प्यारा सा टिप शेयर करते हैं जिससे आपका भी दिन अच्छा हो। आपने अगर कहीं स्पेशल कहीं जाना है वहाँ के लिए भी कुछ स्पेशल पहनने के लिए, कभी कुछ चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं आप। अगर आपको वाइट शर्ट, कुर्ती या टी शर्ट पहनना पसंद है तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, आपको उस जो भी आप ड्रेस पहन रहे हैं उसके नीचे सफ़ेद इनर पहनने की बजाय आपने स्किन टोन जैसे कि जो बेज कलर होता है, न्यूड होता है कलर, उसका कुछ पहनना है। कई बार वाइट कपड़ों के अंदर से वाइट इनर ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा आपको लगता है ऑड सा लगता है और लगता है अरे जम नहीं रहा है, बट अगर आप उसके साथ में स्किन टोन का कलर कुछ आसानी से डालेंगे तो वो क्या होगा कि आपके वाइट के साथ में और स्किन के साथ में ब्लेंड हो जाएगा। और वो चाहे वो लेडीज़ के लिए हो चाहे जेंट्स के लिए हो, एक चीज़ तो आपने अपने साथ में हमेशा अपने घर पे रखनी है अपने साइज़ के लिए, और उससे जब भी आपका दिल करे आप वाइट टी शर्ट्स पहनिए, ट्राई कीजिए। ट्रिक बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और कई बार इस चीज़ को हम बिल्कुल नॉर्मल करके अवॉइड कर देते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि आपने बेज का कलर का या न्यूड कलर से रिलेटेड कुछ चीज़ रखी है तो आपकी वाइट पैंट हो या आपकी वाइट शर्ट हो, टी शर्ट हो, बहुत ही क्लासी और स्मार्ट लगोगे। एंजॉय कीजिए गाने।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और यहाँ पर मस्ती का माहौल है ही है और आपको पता ही चल चुका है कि यहाँ पर पूरे एमबीसी में रौनक हो गई है, लोगों का ताता लग गया है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनको भी परमिशंस मिल गए, हमारे आर्जेस जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, हमारे केक्स आने शुरू हो चुके हैं और कहते हैं ना कि जब रौनक हो जाए तो फिर दिल भी खुश हो जाता है और हमारे जो आर्जेस हैं पूरे एमबीसी के जितने भी हैं, स्पेशली RM2 रेडियो मस्ती के, RM3 रेडियो मनोरंजन के, सारों ने अपना एक स्टाइल बना लिया। उन्होंने कहा है कि आज भी हंसना है, मुस्कुराना है, क्योंकि आज हमारा बर्थडे है। किसका बर्थडे है? RM2 रेडियो मस्ती का और RM3 रेडियो मनोरंजन का। और मैं आपको बताऊं, यहां पर क्यों ना धमाल मचे, क्यों ना तड़का लगे, क्यों ना ऐसे गाने चलें जहां पे हमारा मूड भी अच्छा हो और आपका भी अच्छा हो। जो भी अब आप कर रहे हैं वो करते रहिए, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे आपकी शॉप पे काम कर रहे हैं, या कहीं ड्राइव कर रहे हैं, या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, थोड़ा सा

0: ज्वाइन हमारे साथ भी कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे वो लिसनर्स हैं, क्योंकि आपके बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल छोटी सी है, हमें नहीं ये एहसास होता कि हम आपके बिना कहीं पे भी रह सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं, और 24 आवर्स एमबीसी यानी कि पूरे रेडियो मस्ती हो, चाहे RM3 हो, AM2 हो, सभी लोग आपके साथ रहते हैं सिर्फ आपकी स्माइल के लिए। तो इन्जॉय कीजिए गानों को, और आज बता दूँ आपको कि आज तो अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, बट जो कल होने वाला है वो बड़ा जबरदस्त प्यारा सा धमाका है। तो चलिए उसकी भी थोड़ी सी झलक ले लेते हैं और आपको बताते हैं कल क्या होने वाला है।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
1: Wednesday 26th of August, save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain, Goodlands New Market, दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल, दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट, दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन, शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्टवेस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को, और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.

0: टू रेडियो मस्ती करके श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गुंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
1: Et si vous révéliez la meilleure version de vous-même? Avec Flo Mauritius, Tanaz Hirani, cinéaste devenu life coach, vous invite à découvrir le meilleur de vous-même avec Sacred Mirrors 2. Le 1er novembre, rendez-vous au Hilton Mauritius Resort and Spa, Flic-en-Flac, pour une expérience unique de bien-être et de transformation. Ne manquez pas cela, réservez dès maintenant sur le 52 57 13 26.
0: RM2 Radio Musty. RM2
2: Radio Musty.
0: Feel the Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:45 हो चुके हैं. अरे ऐसा मत सोचिए कि हमारे स्टूडियो में सिर्फ सेलिब्रिटीज आते हैं या सिर्फ नॉर्मल लोग आते हैं. आज तो हमारे जितने आरजेज हैं ना, ये भी सेलिब्रिटीज जैसे से कम नहीं लग रहे हैं. और यहाँ पे एक एक करके हमारे आरजेज आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपको आपका हालचाल पूछ रहे हैं. और देखिए अब आ गई है रत्ना जी भी. तो चलिए, रत्ना जी बाहर से हैं और ये लो अमृता जी भी आ गए, वो भी बाहर खड़ी हैं, पर हमारे साथ आज स्टूडियो के इनसाइड आ गई हैं सुमी, जिसको आप बहुत ही प्यार से सुमी सरकार कहते हैं. हमारी सरकार. हेलो जी, गुड मॉर्निंग.
3: हेलो, गुड मॉर्निंग पूनम, और गुड मॉर्निंग हमारे रेडियो मस्ती के सारे लिसनर्स को. और यस, इट्स आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, तो आपको तो पता ही चल रहा होगा कि बहुत कुछ स्पेशल हो रहा है. आज जो वाइब है, जो मूड है, वो काफी एक्साइटमेंट से भरा है. क्यों पूनम?
2: बिल्कुल, मैं तो, मुझे तो ये मौका ही नहीं दिया आपने कि मैं पूछ सकूं आपसे. आपने तो पहले से ही शुरू कर दिया. क्या बात है, इसे कहते हैं तगड़ी वाली एक्साइटमेंट. तो हम तो कहते हैं कि यस, बताओ बताओ आपका एक साल पूरा ये RM2 के साथ, RM3 के साथ कैसा रहा जी?
3: इंडीड बहुत अच्छा रहा. यानी कि ये एक साल का सफर, इतना आप लोगों का प्यार मिला, इतना आप लोगों का अपनापन मिला, और साथ में रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन ने इतने सारे प्रोग्राम्स एक साथ किए.
2: Yes.
3: मतलब कि हम सी साइड पर जाकर हमने कितने प्रोग्राम्स किए, हमने क्विज प्रोग्राम किया, रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती एक साथ कोलैबोरेट होकर कितने सारे आउटडोर प्रोग्राम्स किए, और यहाँ पर कितनी सारी एक्टिविटीज तो हमेशा होते ही रहती है,
2: और एहसास भी नहीं होता कि हम थक गए हैं.
3: एग्जैक्टली,
2: वापिस आओ फिर काम करवाओ.
3: एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और हमारे जितने सुनने वाले उनको तो पता ही होगा, आज टीवी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है
2: शाम को. यस,
3: और कल जो है हमारा रोड शो होने वाला है, जहां पर हम जो है मॉरिशस के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहां पर आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों से फेस टू फेस मिलेंगे. तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा हमसे मिलने के लिए.
2: तो आपको कैसा लग रहा है कि अब आपने जो क्या क्या कल के लिए तैयारी की हुई है?
3: बहुत सारी तैयारियां की है.
2: जैसे कि जैसे कि
3: बहुत सारे गिफ्ट से हमारे लिसनर्स के लिए जो हमसे मिलने आएंगे, गेम्स होंगे, केक कटिंग होगा, बहुत कुछ होने वाला है.
2: आज
3: और
2: क्या
3: कुछ,
2: प्लान है?
3: कुछ जो है सरप्राइज भी रखते हैं ना, आएंगे तो पता चले.
2: तो आज आज के लिए क्या है, कुछ स्पेशल पता है
3: आज
2: आपको?
3: तो अगर आप लोग हमें देख पाते तो देखते कि हर कोई किस तरह से सच कर आया है, किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है, और बहुत कुछ वाला है अभी आने वाले घंटों.
2: देखो, घर में जब बच्चे की पार्टी, बर्थडे पार्टी होती है, तो पेरेंट्स कैसे खुश होते हैं, दोस्त फ्रेंड्स सब लोग खुश होते हैं. वैसे आज हमारा ये प्यारा सा RM2 RM3 का बर्थडे है, तो हम लोग तो आरजेस का मतलब भाई बनता है ना, आज तो तैयार होना बनता है. तैयारी कितने टाइम से चल रही थी बताओ भले?
3: काफ़ी समय से इसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि एक चीज़ आप करना चाहते तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होता है, सबका कोलैबोरेशन ज़रूरी होता है, सबका साथ ज़रूरी होता है. और हमारी एक टीम ऐसी है कि यहाँ पर हर कोई जो है एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहता है. कुछ करना है तो बताओ क्या करना है, कैसे करना है.
2: वाओ, ये तो बात अच्छी है भाई MBC की, और MBC के सारे RJs की, चाहे वो हमारे पूरी TV की टीम हो, चाहे हमारे जितने भी लोग हों जो साथ में आते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं वो एक टीम की तरह बन जाते हैं, और ऐसी कहीं पे भी कमी नहीं होने देते कि हमारे लिसनर्स कहीं और जा पाए. तो हम तो जाते
3: हैं, और साथ में हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी नर्मदा जी को भी, जिसके अंडर हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं उनके गाइडेंस के जरिए, है ना?
2: यस, बिल्कुल सही बात है. नर्मदा जी ने जो डिफरेंस लाया है, जो तरीका, जितने तरीके से वो स्ट्रिक्ट भी होती हैं और कितने प्यार से सबको समझाती भी हैं और सबको बोलती हैं ये गलती है वो, क्योंकि रेडियो पे बोलना आसान नहीं होता, मतलब अच्छे खासे तोते उड़ जाते हैं. तो हम लोग कह रहे हैं कि तोते मत उड़ाओ, काला चश्मा लगाओ और इंजॉय करो गानों को. तो भाई मैं तो कहती हूँ थैंक यू सुमी, इंजॉय कीजिए और जो तैयारी है वो कीजिए. मैं स्टूडियो से बाहर 12 बजे आऊंगी, तब मैं देखती हूँ आपने क्या क्या किया.
3: तब तक के लिए हैप्पी एनिवर्सरी सभी को.
2: हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू डियर.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. एक साल हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट. RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम. हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3.

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप समाचार सुमारा अकबर अली से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। दिलों में मोहब्बत और इस्लाम से अकीदत लेते हुए आज मुस्लिम कौम ईद मिलादुन नबी मना रही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुनिया की सबसे बड़ी रहमत का दर्जा देकर खुदा ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख पर बीबी आमीना को एक बेटा दिया था। इस्लाम के हवाले से हज़रत मोहम्मद पाक और नेक सीरत के मालिक थे। 40 साल की उम्र में आप पर कुरान पाक की आयतें नाजिल होने लगी थीं। फिनिक्स के अलीमिया कॉलेज में यौमुन्नबी बड़े रूहानी अंदाज में मनाया जा रहा है और इस मौके पर ख़ास मेहमान मौलाना शाह अनस सिद्दीकी और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, मंत्री शकील मोहम्मद वगैरह वहां पर मौजूद हैं। मुशरिस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने एनसीई की परीक्षाओं के निर्धारित समय आम किए। 2 से 16 अक्टूबर के बीच ये इम्तहानात किए जाएंगे। सरकार ग्रेड 9 में एनसीई को खारिज करने के लिए सुधार ला रही है और पिछले हफ्ते ही एक ब्लूप्रिंट को प्रधानमंत्री दफ्तर के सुपुर्द किया गया, जिसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कल रात मोन साहिल पर एक एलिफेंट सील नजर आया। लक्स होटल के पास उसे देखा गया। फौरन स्ट्रैंडेड मैमल प्रोटोकॉल को लागू किया गया। नेशनल कोस्ट गार्ड और फिशरीज प्रोटेक्शन सर्विस ने जानवर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। रात भर उस पर निगरानी रखी गई। अल्बियों अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने आज सुबह उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन किया। अधिकारी जनता से मांग करते हैं कि वो उसके करीब जाने की कोशिश न करे। विदेश में फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में एक भवंतर की वजह से दर्जनों घर तबाह हुए और करीब 40 लोग जख्मी हुए। भवंतर से पेड़ उखड़ गए हैं और कई इमारतों की छतें उड़ गई हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:05 हो चुके हैं और आपको बताइए रेडियो मस्ती में सिर्फ मस्ती होती है जहाँ पे ऐसे गाने चलते हैं दिल को छू लेने वाले, पर आज हमने चलाए हैं थोड़ा सा आपका मूड बनाने के लिए। और हमारे जहाँ पर हमने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको बताया आर एम टू रेडियो मस्ती की आज फर्स्ट एनिवर्सरी है, आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन की भी फर्स्ट एनिवर्सरी है। इन दोनों को जोड़ के सभी आर्टिस्ट इतना खुश है, हमारा पूरा स्टाफ कह लो, हमारी पूरी मैनेजमेंट कह लो, एम्बेसी, पूरे हंसी माहौल खुशी के माहौल में झूम रहा है इस समय। और हम चाहते हैं कि ये माहौल आप भी देख सकें। आज यहाँ से जिस तरीके से होगा मुझे पता नहीं है कि क्या तैयारियाँ हुई हैं, क्योंकि मैं स्टूडियो के इनसाइड हूँ, पर आपको कल बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। सभी आर्टिस्ट से आप मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गपशप मार सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, वाउचर्स लेकर आएंगे। और साथ में आपको इतना ही कहेंगे, जिस जिस स्पॉट पर भी हमारे आर्टिस्ट जाएंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, आप ज़रूर जाना, मिलना, उनसे बातें करना, और जो भी आप विन कर सकते हैं ज़रूर विन करना। पर अभी तो आप लोगों ने हमारा दिल जीता हुआ भाई, दिल जीतने के बाद हम तो चाहते हैं कि आप गाने भी सुनकर अपना मूड बनाएं। पर आपको हम एक चांस देने वाले हैं, इस गाने के बाद हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ में, और वो गेम का जो आप जवाब देंगे उसके साथ में हम थोड़ी मस्ती करेंगे और आपको मिलेगा 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर। तो बस जुड़े रहिएगा, इस गाने के बाद गेम शुरू करते हैं।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है भाई, हम आपसे जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, निभाते हैं। अब आपने भी हमारे साथ में जुड़ना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम खेलने जा रहे हैं आपके साथ एक प्यारी सी गेम। तो चलिए भाई, आपको बता देते हैं कि आपको एस्थेटिक स्पास बुते में, जो कि पोर्टलू इसमें है, वहाँ कुछ सर्विसेज मिलेंगी। वहाँ आप जाके फेशियल करवा सकते हैं, मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, लेज़र, नेल एक्सटेंशन, आई लैशेज, टैटू, आईब्रोज, बीबी ग्लो करवा सकते हैं। और आपको अगर आपको स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर भी मिल रहे हैं, जो कि स्पेशली लैक्मे इंडिया के थ्रू है। तो आपके साथ हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर्स, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको हमारे तीन जो सवाल हैं उसके अंदर से एक सवाल चुनना है और बताना है कि क्या है। बट आपको ये याद रखना है, फटाफट के चक्कर में अपना एड्रेस, नाम, पता, टेलीफोन नंबर भेजना मत भूलिएगा। हम पहले से आपको बता रहे हैं, तो हम खेलते हैं आपके साथ ये गेम। आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से आपको बताना है कि एस्थेटिक स्पास बुते में, जो कि पोर्ट लुइस में है, वहां पर आपको कौन सी सर्विस मिलेगी। ए, मोबाइल रिपेयर सर्विस, बी, मैनीक्योर सर्विस, 3, कार रिपेयर सर्विस। आपको बताना है 5491294 पर, और बताना है अपने पूरे एड्रेस, टेलीफोन और नाम के साथ, जहां पर आप जीत सकते हैं 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर। इस गाने के बाद हम आपको बताएंगे किसने जीता और वो हमारा विनर कौन होगा। एंजॉय कीजिए अपने गाने। आज RM2 और RM3 की पहली सालगिरह है। आप सभी लिसनर्स के प्यार और साथ ने इस एक साल को खास बनाया। दिल से धन्यवाद और हैप्पी एनिवर्सरी टू RM2 और RM3।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:22 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ, जहां में मस्ती के साथ में आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं गिफ्ट जीतने के। और इस समय हम लेकर आए थे आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर एस्थेटिका स्पास बुते की तरफ से। और उनका टेलीफोन नंबर आपको नोट डाउन करना है अगर आपको स्किन से रिलेटेड, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करनी है। 5257386 ये एक पोर्टल इसमें है और जहां पर आप जा सकते हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि आप फेशियल करवा सकते हैं जो कि लेडीज़ की बहुत बड़ी नीड होती है, क्योंकि रिलैक्सेशन तो चाहिए चाहिए। वैक्सिंग है, मैनीक्योर पेडीक्योर, लेज़र, नेल्स एक्सटेंशन, आईलैशेस, टैटू, आईब्रोज, कईयों की बहुत आईब्रोज होती नहीं है तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। बीबी ग्लो यानी कि स्पेशल नेचुरल ग्लो विदाउट एनी मेकअप, तो आप वहाँ जा सकते हैं और आपको फ्री स्किन कंसल्टेशन मिलेगी, जो कि वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जहाँ पे जो लैक्मी इंडिया की तरफ से आए हुए हैं। और हम तो चाहेंगे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन के साथ में, मस्ती के साथ में आपको गिफ्ट जीतने का मौका था 500 रुपये का। तो चलिए पहले सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि आपको एस्थेटिका स्पास बुते में कौन सी सर्विसेज मिलेंगी। ए पूछा था मोबाइल रिपेयर सर्विस, बी मैनीक्योर सर्विस, सी कार रिपेयर सर्विस, और बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है और बहुत सारे लोगों के आंसर ठीक भी हैं, कईयों की गिल्लत हैं तो, पर हमने बोला और हमने वही लकी ड्रॉ डाला और मिल गए हमारे को एक विनर हमारी। चलिए कौन जीते हैं देखते हैं।

क्या बात है, क्या बात है भाई, ये दिल करता है ऐसे म्यूजिक चलता रहे क्योंकि सबका दिल धक धक धक धक धक धक धक कर रहा होता है कि कौन जीता होगा, कौन जीता होगा। बिल्कुल जी, जीत चुकी है रोज़बेल से बबीता राम। और हम आपको

0: You are the winner. Congratulations, आपको मिला है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर. Enjoy कीजिएगा, स्किन को सुंदर बनाइएगा. और अगर आपको किसी को भी जाना है तो वहाँ जरूर जाइए, क्योंकि फ्री कंसल्टेशन जब मिलती है तो वही जाना ही चाहिए. Enjoy कीजिए अपने गानों को.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:37 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। हम लोग इतना खुश हैं आपको क्या बताएं। ये जो शो है ना, ये सिर्फ गानों का नहीं है, ये आपकी रफ्तार का साथी है। चाहे आप मेट्रो में हो, बस में हो, या आप दफ्तर की सीढ़ियों में अप एंड डाउन कर रहे हो और आप कह रहे हो अरे थोड़ा सा बॉस ने गुस्सा कर दिया, इसने कह दिया, कलीग ने कुछ कह दिया, तो हमारे जो गाने हैं ना आपको स्ट्रेस नहीं होने देते, आपको टेंशन लेने नहीं देते, आपको बोलते हैं कोने में जाओ, थोड़ा सा डांस कर लो, थोड़ा सा झूम लो, थोड़ा सा नाच लो, और इसके बाद फिर से आके बॉस को बोलो यस सर क्या करना है। तो ये काम होते हैं और ऐसे ही करना चाहिए। तो हम आपको बोलेंगे एक हर कदम जो हर बीट है, हर सांस है, यहाँ पर सुर आपके साथ है। जश्न मनाओ RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का। आज है बर्थडे और बर्थडे के लिए तो हम लोग लाते हैं बहुत सारे गाने। मंगलवार को बनाना है यादगार, बहुत ही प्यारा, पूरे परिवार के साथ में हम जहाँ से आपके साथ बैठे हैं वहीं पर इंजॉय कीजिए। और हम RJs हर वक्त आपके साथ है, आज पूरा दिन आपके साथ रहेंगे, कल हम रोड पर रहेंगे, तो आप जिनको भी मिलने आना है बिल्कुल मिलने आइएगा, एंजॉय कीजिएगा गानों के साथ। इसके बाद आपको मिलेगा एक प्यारा सा टिप, एंजॉय कीजिए गाने को।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
3: 11:42 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। अगर जो लोग अभी जुड़े हैं या सुबह से जुड़े हैं उनको हम तो कहेंगे गुड मॉर्निंग, बट साथ में कहेंगे प्यारे प्यारे से टिप्स के साथ में, बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ में हम लोग आज मना रहे हैं अपना RM2 रेडियो मस्ती का बर्थडे और RM3 रेडियो मनोरंजन का बर्थडे। चलिए भैया आपको एक प्यारा सा टिप देते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, बहुत लोगों को शौक होता है आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, प्लांट्स का, और उसमें कई बार धूल जमने लगती है, तो सब लोग क्या करते हैं, मतलब एक साल चलाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव लेकर आते हैं और उसके बाद उसको फेंकने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई चलो भाई दो दिवाली आएगी या कोई डे आएगा स्पेशल तो उनको फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका वो प्लांट बहुत एक्सपेंसिव है और उसमें मिट्टी लग गई है तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग लेना है, मतलब बहुत खरखर वाला नहीं, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट वाला जिसके ऊपर जिप लॉक लगा होता है ना, आपको पता होगा, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल महीन मोटा सॉल्ट नहीं, व्हाइट सॉल्ट, बट जो बिल्कुल पतला होता है वो आपने सॉल्ट लेना है। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो आप हाफ कटोरी ले सकते हैं, अगर आपका छोटा है तो आप 2-3 चम्मच ले लीजिए और उसके अंदर वो फ्लावर्स को डाल दीजिए, आराम से डाल दीजिए और उसको जिप लॉक करके हल्का हल्का सा शेक कीजिए। जब आप उसके अंदर हल्का हल्का सा शेक करेंगे तो जितनी भी धूल है, जितनी भी मिट्टी है उसके अंदर लग जाएगी और वो जो नमक है उस धूल को नीचे गिरा देगा, मतलब आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद आप एक हल्का सा गीला कपड़ा लीजिए या सूखा कपड़ा, डिपेंड्स ऑन आपका प्लांट कैसा है, उस पर लगाइए और हल्का हल्का सा साफ कीजिए और आप देखेंगे कि जितनी भी डस्ट आपके प्लांट्स में थी वो सारी निकल के नीचे गिर गई है। उसको आप फेंकिए, प्लास्टिक को फेंकना है फेंक दीजिए, उसको फिर से रखना है आपको, फिर से आप संभाल के रख सकते हैं। बट ये बहुत ही प्यारा सा टिप है जो कि आपको आपके घर को बहुत अच्छा सा बना सकता है। इंजॉय कीजिए गानों को।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:54 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही मस्ती मॉर्निंग शो के साथ में और मैं इस समय हूं आपके साथ पूनम। क्या माहौल है यहां पर आप सच में जान नहीं सकते। आर एम टू रेडियो मस्ती और आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन का आज है हैप्पी बर्थडे टू यू वाला दिन और यहां पर क्यों ना तैयार हो। आज तो हमें प्राउड फील हो रहा है, एक साल हमने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ आप सबके साथ गुजारा और आप सब ने हमारे साथ इतने गेम्स खेले हैं, इतनी सारी बातें की है, यहां पर आए हैं, यहां पर हमारे साथ स्टूडियो शेयर किया है, इतनी सारी बातें बताई है, तो हम सब आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे थैंक यू सो मच हमारा हर जगह हर समय साथ देने के लिए। तो एंजॉय कीजिए अपने गानों को, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा नितिशा का। तो मैं तो फिर से बोलूंगी हैप्पी बर्थडे आरएम2 एंड आरएम3 रेडियो मनोरंजन। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप समाचार सुमायरा अकबर अली से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर निशान मोहिपत को 6 महीने कैद की सजा दी गई है। आज इंटरमीडिएट अदालत में मैजिस्ट्रेट जेड एनगन चाइकिंग ने पाया कि एक महिला पुलिस पर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहिपत

0: पत्नी बदतमीजी की थी। जॉन डैनियल पेरिन पर कत्ल करने का अस्थायी इल्जाम दर्ज है। वो 31 अगस्त को फिर से अदालत के सामने पेश होगा। उसे फिलहाल ब्राउनसिक मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। आज छोटे से आद्रियानो किलियानो पेरिन के अंतिम संस्कार किए जाएंगे। दिलों में मोहब्बत और इस्लाम से अकीदत लेते हुए आज मुस्लिम कौम ईद मिलादुन्नबी मना रही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुनिया की सबसे बड़ी रहमत का दर्जा देकर खुदा ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख पर बीबी आमिना को एक बेटा दिया था। इस्लाम के हवाले से हज़रत मोहम्मद पाक को नेक सीरत के मालिक थे। 40 साल की उम्र में आप पर कुरान पाक की आयतें नाजिल फरमाई गई थीं। फिनिक्स के अलीमिया कॉलेज में यौम-उन-नबी बड़े रूहानी अंदाज में मनाया गया और मौके पर मोहम्मद अनस सिद्दीकी, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, मंत्री शकील मोहम्मद खास मेहमान। कल रात मून साहिल पर एक एलिफेंट सील नजर आया लक्स होटल के पास। उसे देखा गया। फौरन स्ट्रैंडेड मामल प्रोटोकॉल को लागू किया गया। नेशनल कोस्ट गार्ड और फिशरीज प्रोटेक्शन सर्विस ने जानवर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। रात भर उस पर निगरानी रखी गई। आलबियो अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने आज सुबह उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन किया। अधिकारी जनता से मांग करते हैं कि वो उसके करीब जाने की कोशिश न करें। विदेश में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान की अर्थनीति को सीमित बनाएगा और उसके सभी तिजारती साझेदारों को निशाना बनाएगा। अमेरिका का दावा है कि वो ईरानी अर्थव्यवस्था को मुश्किल परिस्थितियों में डालने के लिए उससे जुड़े सभी देशों पर नई पाबंदियां लागू करेगा। अमेरिका के प्रतिबंधों को रोकने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान के वित्त मंत्री अली मदनी जादे ने कहा कि उनके देश ने 2 सालों की योजना बना ली है। मदनी जादे ने यह भी कहा कि चीन और रूस ने अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। सोहन लेन गोंद पोइंट-ओ-पिमा में 57 साल की 57 years old श्रीमती दुल्हंती गोपी, श्रीमती दुल्हंती गोपी जो विश्वानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10:30 बजे कल दिन के 10:30 बजे के घर सोहन लेन गोंद पोइंट-ओ-पिमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोइंट-ओ-पिमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Retro Rhythm.
4: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: It's a very good afternoon to you all, my dear listeners. स्वीकार करें नीतुषा का करजोर प्रणाम. Really hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. And of course, it's a Tuesday afternoon. So हम आपके साथ रहने वाले हैं up till 2 p.m. Yes, आपको ले चले हैं down memory lane और उन सुनहरे पलों को याद करते हुए. बस हमारे साथ जुड़े रहें. बेहतर से बेहतरीन गाने आपके नाम करते चलेंगे. Really hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. It's lunch time. Bon appétit. शुभ आहार.

0: रेट्रो रिदम।
1: कहते हैं ना कि सुनहरे दौर की सुनहरी यादें। जी हाँ, बॉलीवुड का वो दौर जब गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। बीट द 50s, 60s या फिर 70s के गीतों में क्या था? मोहब्बत थी, दर्द था, शरारत थी और जिंदगी का एक खूबसूरत फलसफा भी था। रफी साहब हो, लता जी, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे या फिर महेंद्र कपूर जैसे सुरों के जादूगरों ने हर जज्बात को आवाज दी। तो चलिए आज फिर लौटते हैं उसी गोल्डन एरा में जहां हर धुन एक कहानी कहती थी।

0: हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: कहानी तो आपकी भी आ रही है. Very good afternoon to you, रेखा. साथ देने के लिए thank you so much. All the way from Vakwa कहती है, please नीतू ये next गाना मेरे नाम कर दीजिए. And to all my families, why not? बच्चे अभी स्कूल में हैं, घर खाली खाली सुना सुना सा है, लेकिन आपका दिल बिल्कुल खाली नहीं है, क्योंकि the next गाना goes out to you.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Come and meet the MBC and Lutoviati this Wednesday, 26th of August, or celebrate KJ MBC RM2 or MBC RM3 ki first anniversary. Subah 10 baje se lekar all over the island. Games, hangama, full on masti, guaranteed. Aaye aur maza lijiye Lutovia ke sabhi zaruri educational informations aur responsible khel ke bare mein. Quiz sessions, goodies aur celebrations poore din ke dauran. Zyada jankari के लिए लुतुवेयर लुतुटेक के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए. लुतुवेयर और एमबीसी, हंगामा ही हंगामा.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: On veut faire un bon shopping à petit prix, méga déstockage peut venir côté Platinum Plaza du 20 jusqu'à 31 août 2026. Top t-shirt, polo shirt à partir de 10 des 150 roupies. Pantalon avec chemise pour monsieur et madame à partir de 10 500 roupies. Ban prix là extra, mais ban stock limité. Pas laisser l'occasion la passer. Platinum Plaza, Royal Road, poste de Flak. Téléphone 57 68 26 38.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता. आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए. ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे.

0: रेट्रो रिदम।
1: कुछ पुराने गाने आज भी दिल को इतने करीब क्यों लगते हैं? कभी सोचा है आपने? शायद इसलिए क्योंकि उनमें सिर्फ मेलोडी नहीं बल्कि एहसास बसा होता था। एक आवाज में मोहब्बत, एक अंदरा में जुदाई और एक मुखड़े में पूरी जिंदगी। गोल्डन एरा बॉलीवुड म्यूजिक ने हमें सिखाया कि अच्छा गीत वक्त के साथ पुराना नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड, वो तो और भी हसीन होता चला जाता है।

So please drive carefully, have a safe drive. वैसे गोल्डन एरा को याद करना हो और रफी साहब का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? रफी साहब की आवाज में रंगीनियत थी, रोमांस भी, भक्ति और जज्बात की गहराई भी। कभी वो महबूब के दिल की बात कहते थे, कभी दर्द को आवाज देते थे और कभी देशभक्ति का जज्बा भी जगा देते थे। आज के सफर में सुनिए उन्हीं सुनहरे सुरों को एक खूबसूरत दास्तान।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: 1 baja hai. सुनते देश विदेश की खबरें आपसे विधिमा नमस्कार।
5: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को नमस्कार। डॉक्टर निशान मोहिपत को इस मंगलवार को इंटरमीडिएट कोर्ट द्वारा 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ये सजा मजिस्ट्रेट जे दिनांग चाय किंग द्वारा तब सुनाई गई जब प्लास्टिक सर्जन को 7 जुलाई 2026 को एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ गलत व्यवहार करने का दोषी पाया गया था। घटना 29 अप्रैल 2022 की है और ये एक निजी क्लिनिक में परामर्श के दौरान हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार जो उस समय 29 वर्ष की थी, डॉक्टर निशान मोहिपत ने उनकी सहमति के बिना उनके स्तनों को छुआ था और कई बार उन्हें चूमा था। डॉक्टर ने खुद को निर्दोष बताया था और उनके बयान को चुनौती दी थी। अपने फैसले में मजिस्ट्रेट जेड चाइकिंग ने मुख्य रूप से घटना के बाद हुई व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया था। अदालत ने माना था कि शिकायतकर्ता अपने बयान के मुख्य बिंदुओं पर सुसंगत बनी रही थी। सजा पर बहस के दौरान प्रिंसिपल स्टेट काउंसिल वकील दामोदर सिंह बिसेसर ने कारावास की सजा की मांग की थी। डॉक्टर निशान मोहिपत के वकील निर्मल बस गोपाल ने बिना जेलवासी वाली सजा के पक्ष में

0: दलील दी थी। डॉक्टर निशान महिपत ने इस बात पर जोर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखते हैं। डॉक्टर महिपत के लिए उनके वकील ने फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। मॉरिशस और ब्रिटिश दोनों पासपोर्ट रखने वाली 21 वर्षीय एक युवती को सोमवार 24 अगस्त को SSO अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आरसू के एक अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार स्थिति खुशबा की रहने वाली संदिग्ध दुबई से आ रही थी, तभी उसे कस्टम्स अधिकारियों के सहयोग से आरसू के कर्मियों ने रोक लिया। पुलिस ने उसके सामान से खिलौनों के 3 डिब्बे बरामद किए, जिनमें कृत्रिम गंध वाला एक पेस्ट जैसा पदार्थ था, जिसके सिंथेटिक ड्रग्स होने का संदेह है। जांचकर्ताओं को दी गई जानकारी के अनुसार जब्त की गई मात्रा लगभग 3.1 किलो है, जिसका मूल्य लगभग 50 मिलियन रुपए है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और 25 पाउंड स्टर्लिंग का एक नोट भी जब्त किया गया है। और विदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 से 30 अगस्त के बीच भारत के बड़े हिस्सों में बारिश, आंधी, तूफान और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया है। साथ ही कई राज्यों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: RM2 Radio Musti.

0: ये हमारे दिल की बात है कि आप हमेशा हमारी जिंदगी में शामिल हैं, हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात में शामिल हैं। थैंक यू सो मच। 1:08, वेलकम बैक सुनी तू आपके साथ टिल 2 PM। रेट्रो रिदम में आप सबके मैसेजेस का अरे बाप रे बाप बहुत सारे हैं, बस एक एक करके हम आपके मैसेजेस को पढ़ते चलेंगे। लेकिन हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो मस्ती RM2 और RM3 रेडियो मनोरंजन। 1 साल हो गया है और 1 साल के इस प्यार में, लेकिन आपका साथ तो बरसों से मिल रहा है। थैंक यू सो मच। 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार।
1: मस्ती का स्टेशन, म्यूजिक का सेलिब्रेशन, RM2 रेडियो मस्ती, 1 year of pure sensation। हैप्पी एनिवर्सरी RM2।

0: रेट्रो रिदम
1: बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे भाई, क्यों तोड़े जब आप जैसे प्यारे प्यारे लोग हो हमारे साथ। ऑलराइट नीतू, इतने सारे मैसेजेस, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ज्योति ईशा तो बिनागस से, हैप्पी एनिवर्सरी टू रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती एंड ऑल ऑर्जेस, थैंक यू आपके लिए है माधव परिवार। गुड आफ्टरनून आकाश एंड मनसुख फैमिली, फर्स्ट एनिवर्सरी टू रेडियो मस्ती एंड RM3, थैंक यू सो मच। बस आपका प्यार है, आपका साथ है, तभी तो हम इतनी दूर तक चले आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग दिस सॉन्ग सिलेक्शन। यहाँ पर हबी सुदेश के नाम जो आई नाराज है, सुनंदा आपो फ्रॉम लाल माची, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान है इसलिए तो परेशान है। चलिए आपकी परेशानी को दूर करते हैं। यहाँ पर हाय नीतू नमस्कार, 27th को मुकेश जी की बरसी है, यस उनका आप गाना सुनना चाहते हैं, ओके मैं कोशिश करती हूँ। साथ में विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर सुनील अली ऑफ मोको पॉपलेमोसस, आपकी वाइफ ममता, बेटा अश्विन, अनिश, केविना, आलिया परिवार, भाई बहन सब की तरफ से ढेर सारा प्यार। नेक्स्ट गाना किन के नाम चलाते हैं, यहाँ पर जीना जो सुगी माई डियर, गुड आफ्टरनून, इक्वली गुजार टू हुम रागिनी, ओके थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस भेज रहे हैं दोनों रेडियो चैनल्स के लिए। आ पूरी और यहाँ पर है तरकारी, पिक्चर मैसेज हम देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यालेश एंड श्याम फैमिली। कैसे है चांदनी पुरुषोत्तम, अपना जीवन रेल की पटरी चले, आपका जीवन जो है रेल की पटरी पर चले, यही हम कामना करते हैं। प्रणाम जी एंजॉय कर रही है, थैंक यू कल्याणी फ्रॉम कॉटुगल, और ये अगला गाना आपके नाम भी, आप कौन है अंजलि जी, आपके मैसेजेस हैं यहाँ पर। डेविचन फैमिली, हरी फैमिली, राहुल, राजू, विमक, विमल है अंशु, रवि और सब के नाम, श्याम एंड डेविचन फैमिली, तो आप ये एंजॉय करते रहे। और यहाँ पर एक दोस्त ने कहा कि कल आपकी टीम कहाँ जा रही है, कल हम देश के कोने कोने चार भाग में जाएंगे, तो ध्यान से सुने कहाँ मिलने आप आ सकते हैं।
2: 26th of August, save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain, Goodlands New Market, din ke 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल, दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट, दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन, शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें, साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी।

0: एनिवर्सरी गुडलैंड्स पोर्ट लुइस रोजवेल एंड फ्लैग तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी स्पॉन्सर्ड बाय लुटवेयर।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: क्या बात है, ऐसे गाने कभी पुराने होते नहीं है, दिल के किसी ना किसी कोने में छुप से जाते हैं और जब भी कोई इमोशन जाग जाता है ना, तो हर सिचुएशन में वो जो गाना होता है वो सामने आ जाता है। व्हाट्स योर फेवरेट? एक ऐसी आवाज जो नन्ही सी कली की तरह कोमल थी और हिमालय की तरह बुलंद, कौन है वो भाई? जी हाँ, बात हो रही है अबाउट द ग्रेट लेजेंडरी लता जी। उनकी आवाज ने हिंदी सिनेमा की हीरोइंस को एक नई पहचान दी ना, चाहे प्यार का इजहार हो या फिर कोई और एहसास, उन्होंने अपनी आवाज से हर एहसास को जैसे कहते हैं अमर बना दी। तो दिल थाम कर सुनिए एक और एवरग्रीन मेलोडी।

0: फॉरेन फ्री रेडियो मनोरंजन साथी पहला वाट दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा।
1: पहला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बधाने आरएम 2 अने आरएम 3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ।
2: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
3: रेडियो मस्ती

आज आर एम टू और आर एम थ्री की पहली सालगिरह है। आप सभी लिसनर के प्यार और साथ ने इस एक साल को खास बनाया। दिल से धन्यवाद और हैप्पी एनिवर्सरी टू आर एम टू आर एम थ्री।

किशोर कुमार का गाना सुनना चाहते हैं। वैसे मूड तो थोड़ा सा रोमांटिक है ही, मस्ती भरा भी है, क्योंकि जब किशोर कुमार की आवाज गूंजती है तो हवाओं में भी एक अलग सी खुशी महसूस हो जाती है। उनकी आवाज में यूथफुल एनर्जी थी, रोमांस था, पागलपन था, एक नेचुरल वार्म्थ थी, है ना। उनके गाने किसी एक जेनरेशन के लिए नहीं, ये तो हर जेनरेशन के दिल की धड़कन है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ाइए और खो जाइए किशोर कुमार के जादू में। व्हाट्स इट

0: रेट्रो रिदम।
1: एक साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, लेकिन आपका प्यार आपका साथ बरकरार है। थैंक यू। बीच इन मॉरिशस या फिर सात समुंदर पार, हमेशा आपके मैसेजेस, आपके फोन कॉल्स आते हैं। आज भी बहुत ही खास है हमारे लिए, तो ये जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं आपके बिना वो भी अधूरा है। सो हमारे हर सफर में आप

0: हमारे हम सफर बने रहते हैं, ऐसे ही बने रहिए। दिल से वंस अगेन जितना भी आपको थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें, वो उतना ही कम है। तो बस इन गानों के जरिए आपका मनोरंजन होता रहता है 24/7। थैंक यू सो मच।
1: ए भाई,

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

0: रेट्रो रिदम।
1: टाइम टू से बाय बाय। यस, हमारे जाने का टाइम आ गया है और चलते चलते कुछ नाम आपके लिए भी और मस्ती भरी रात आपके साथ। थैंक यू सो मच, विश कर रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी टू रेडियो मस्ती एंड रेडियो मनोरंजन। थैंक यू सो मच। भूलिएगा नहीं है, कल हमारी जो पूरी टीम है हम निकलने वाले हैं एक रोड शो के लिए और कई जगहों पर हम आपसे मिलने आएंगे, लाइव रहेंगे। सो साथ निभाते रहिएगा डेफिनेटली। विशिंग ऑल द आरजेज, ऑल द फैमिलीज ऑफ रेडियो मस्ती एंड रेडियो मनोरंजन हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। साथ में हमारे जितने भी लिसनर्स, आप भी हमारे परिवार हो। थैंक यू सो मच। 2 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे ऑफ कोर्स बॉम्बे टॉकीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।

0: रेडियो मस्ती।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विद्यमा, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मॉरिशस में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशान मोहिपत को इंटरमीडिएट कोर्ट ने 29 अप्रैल 2022 के घटना में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अवांछित दुर्व्यवहार का दोषी पाते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 29 वर्षीय पीड़िता की शिकायत और व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह फैसला मजिस्ट्रेट जे न्यांग चाय किंग ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने जेल की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने गैर कारावास सजा का अनुरोध किया था। डॉक्टर के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। सोमवार 24 अगस्त को एसएसओ हवाई अड्डे पर मॉरिशस और ब्रिटिश पासपोर्ट धारक 21 वर्षीय युवती को आदसू और कस्टम्स अधिकारियों ने दुबई से लौटने पर गिरफ्तार किया। उसके सामान से खिलौनों के 3 डिब्बों में लगभग 3.1 किलो सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुआ, जिसकी लागत करीब 50 मिलियन रुपए हैं। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और 25 पाउंड स्टर्लिंग का नोट भी जब्त किया गया है। मॉरिशस और सेशल्स के बीच संसदीय सहयोग। सेशल्स की राष्ट्रसभा की स्पीकर अजाहेल अनेस्टा को इस मंगलवार को उनकी मॉरिशस की समकक्ष श्रीन ओमिरुदी सिफ्रा द्वारा स्वागत किया गया। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य दोनों संस्थानों को अपनी कार्यप्रणाली की तुलना करने और संसदीय तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करना है। और विदेश में दक्षिण फ्रांस के गांवों में एक विनाशकारी बवंडर ने तबाही मचाई है, जिसमें 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार शाम तक लगभग 2,800 घरों में बिजली नहीं थी, जबकि कई सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: साल, हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार, हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: नी मैं वारी जामा विद दिस ट्रैक आपका हम वार्म वेलकम करते हैं दोस्तों सेलिब्रेटिंग फर्स्ट एनिवर्सरी एंड इसके लिए तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग RM2 रेडियो मस्ती एंड RM3 रेडियो मनोरंजन आपका प्यार नहीं होता तो शायद ये एक साल इतना खास नहीं होता सो बिग थैंक यू टू एवरीवन जो इतने प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड रहे एंड चेंजेस के बाद आपने अपना प्यार हम तक पहुँचाया सो इट मीन्स अ लॉट और चलिए अभी के लिए तो हमारा म्यूजिकल कारवां जारी रखते हैं इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज दो से लेकर चार बजे तक मैं हूं परी आपके साथ ट्यूसडे आफ्टरनून को सजाने वाले हैं गुड म्यूजिक के साथ और आपका प्यार और आपकी स्पेशल विशेज यू कैन ऑलवेज सेंड अस ऑन अ मैजिकल नंबर नंबर तो वही है इट्स 5499-1294
0: यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती
2: सो वेल आपका अपना रेडियो मस्ती जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2:08 दोस्तों ट्यूसडे आफ्टरनून है इट्स 25th of August एक साल कंप्लीट किया है आपके इस फेवरेट रेडियो स्टेशन ने सो थैंक यू फॉर द लव और थोड़ा और प्यार आपसे एक्सपेक्ट करेंगे प्यार को बनाए रखिएगा साथ को बनाए रखिएगा और कोशिश रहेगी कि गुड म्यूजिक के साथ हम आपको एंटरटेन करते रहें हमेशा बीट मॉर्निंग बीट नाइट RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: तो जैसे हमने कहा न्यू या फिर ओल्ड हर कोई फ्लेवर आपको मिलता है बिकॉज ये है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती अभी के लिए इट्स टाइम जहां पर हम बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स लेकर आते हैं 2 से लेकर 4 बजे तक होता है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज फॉर नाउ फ्रॉम द फिल्म गिनी और यस इट्स अ वेरी फेमस फिल्म और इसका पार्ट 2 भी आया गिनी विद सनी पार्ट 2 उसी का ये गाना जो रहा वेरी पॉपुलर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई उम्मीद तो थी वैसे इस फिल्म से बहुत ज़्यादा लेकिन जो मैजिक चाहिए था शायद कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था लेकिन दिस वन गॉट पॉपुलर सो ये गाना आपके नाम हीर एंड पैराडॉक्स आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं एंजॉय दिस वन

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी. सभी को नमस्कार. फिनिक्स स्थित तालिमिया कॉलेज में आज राष्ट्रीय स्तर पर ईद मिलादुन्नबी मनाई गई. ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस को चिन्हित करने का एक उत्सव था. मौलाना मोहम्मद अनास सिद्दीकी ने विशेष रूप से पैगंबर की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की. मॉरिशस में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशान मोहिपत को इंटरमीडिएट कोर्ट ने 29 अप्रैल 2022 के घटना में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अवांछित दुर्व्यवहार का दोषी पाते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है. 29 वर्षीय पीड़िता की शिकायत और व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह फैसला मजिस्ट्रेट जे डगान चाय किंग ने सुनाया. अभियोजन पक्ष ने जेल की सजा की मांग की थी जबकि बचाव पक्ष ने गैर कारावास की सजा का अनुरोध किया था. डॉक्टर के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है. सेशल्स की राष्ट्रसभा की स्पीकर अज़ाहेल अनेस्ता को इस मंगलवार को उनकी मॉरिशस की समकक्ष शिरीन ज़िफ़्रा द्वारा स्वागत किया गया. इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य दोनों संस्थानों को अपनी कार्यप्रणाली की तुलना करने और संसदीय तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करना है. और विदेश में ट्यूनीशिया में स्वयंसेवकों ने देश के दक्षिण पूर्वी तट के पास 15 प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के डूबने के बाद अभी भी लापता 2 लोगों की तलाश जारी रखी है. जबकि बेनगदियान शहर इस त्रासदी से भड़की हिंसक झड़पों और प्रदर्शनों से जूझ रहा है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music, music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
5: Radio Musti.
8: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाढ दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा. पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्धाने RM2 आणि RM3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ.
9: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना.
8: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु.
10: इनिय मुदल आंड निरेव नलवाटिकल ऑरेंज फ्री RM2
11: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह के हार्दिक शुभकामनाएं. रेडियो

0: Well, that was a beautiful track to start with. Lut le gaya from the film Dhurandhar. Hamare sabhi listeners jo hamara saath de rahe hain, chaliye aapka hum swagat karte hain. 3:07 and celebrating first year of RM2 Radio Masti and RM3 Radio Manoranjan. Aapke liye pyar hi pyar beshumar and studio mein we also have a beautiful Ginisha jo aaj saari pehen kar lag rahi hai bala ki khoobsurat.
1: ओहो जब ऐसा कोई चीज देखे तो बोलते हैं वाओ सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ
0: सो बिल्कुल आज तो हर कोई लुक कर रहा है एज अ वाओ एंड थैंक यू सो मच हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ देते हैं हमारे सभी आरजी इस कोशिश यही रहती है कि आपको एंटरटेन करते रहें अभी के लिए फर्स्ट ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ सो गुड विशेस एंड थैंक यू सो मच
1: एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू मी टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू रेडियो

वेंसडे 26 अगस्त, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RM3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere. Lutavere. RM2 Radio Masti.

0: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, your number one Bollywood station.

0: that was taken from the film Tere Ishq Mein, जिसमें नजर आई थी कृति सनन. तो चलिए, कृति सनन इन दिनों अपने विज्ञापन यानी कि एड को लेकर काफी ट्रोल हो रही है और इस मामले पर उन्हें एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने भी जमकर घेरा था. अब कृति ने इस मामले पर करारा जवाब दिया है और चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है. उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए ऐड किया था और एक्ट्रेस ऐड में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती नजर आई, मगर उनके कपड़े जो हैं वो काफ़ी रिवीलिंग थे और इंडो वेस्टर्न ड्रेस में वो दिखाई दी. कृति सनन की ड्रेस पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है. सो लेट मी टेल यू यहाँ पर पूरा मामला क्या है. अब आपको बता दें दैट ये ऐड उन्होंने किया और लोगों का कहना था कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो इतना ट्रेडिशनल त्यौहार है और इसमें ऐसे रिवीलिंग कपड़े उन्होंने क्यों पहने. तो अब कृति ने इन ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा है कि किसी महिला के कपड़े उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापती है और उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर लिखा है कि त्योहारों की असली भावना आपके कपड़े में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मनाते हैं. रक्षाबंधन सुरक्षा और प्यार का त्यौहार है. मैं अपनी बहन और उनके साथ मैं रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाती हूँ. हम एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं और एक दूसरे की अच्छी सेहत, खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं. हमारे लिए यह त्यौहार प्रार्थना और सेलिब्रेशंस का है और ये मैं अपने पेट के साथ भी मनाती हूँ क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है. सो ये यहाँ पर कहना है कृति सनन का, जो अभी के लिए तो ट्रोल हो रही है और अब उन्होंने दिया है इस मामले पर करारा जवाब. अब देखना ये होगा कि क्या इसके रिप्लाई में कंगना कुछ रिप्लाई करने वाली है, कुछ जवाब देने वाली है. लेकिन दैट्स बॉलीवुड, एक बात उठती है तो फिर मामला आगे बढ़ते ही जाता है. लेकिन अभी के लिए हम मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे. गुड म्यूजिक आप तक पहुँचाएंगे, साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती.

0: Oldies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: एंड वेल फ्रेंड, सेलिब्रेशन मोड ऑन. जैसे कि आप जानते हैं कि आज का दिन है खास, एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे जहां पर सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं 800 रुपए का गिफ्ट वाउचर, 800 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय सीक्रेट ब्यूटी, जहां पर आपको मिलने वाला है एक ब्राइटनिंग फेस मसाज. पाया जाता है एट फॉरसाइड क्यूपेप और डिटेल्स देंगे आपको थोड़ी ही देर में. सो सिंपल सा सवाल, RM2 रेडियो मस्ती, RM3 रेडियो मनोरंजन आज अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको हमें बताना है ये कौन सी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. इज इट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एनिवर्सरी? आपके सही जवाब 5499-1294 पर, 5499-1294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ आज हमारे रेडियो की कौन सी एनिवर्सरी है. सेंड अस योर राइट आंसर्स अपने पूरे नाम और पूरे पते के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट.
0: RM2 Radio Musti.

0: Bombay Talkies,
1: Radio Musti,
2: Radio Musti.
3: तो पूछा था आपसे सवाल कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज RM2 एंड RM3 द राइट आंसर इज फर्स्ट एनिवर्सरी यस एक साल कंप्लीट हुआ है और यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद रियांश जिदन आपने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब आप है कौन दे मास पावे से सो कांग्रेचुलेशन खेला आपने RM2 रेडियो मस्ती के साथ और जीता है 800 रुपए का गिफ्ट वाउचर यस ये है सीक्रेट ब्यूटी की तरफ से जहां पर आप ये गिफ्ट कर सकते हैं अपनी वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड को जो भी या फिर आपके मामा को एनीवन जिसे आप इसे गिफ्ट करना चाहते हैं मिल रहा है एक ब्राइटनिंग फेस मसाज और ये है वर्थ ₹800 पाया जाता है एट फॉरेस्ट साइड क्यूपिप सीक्रेट ब्यूटी फॉर मोर डिटेल्स आप कॉल कर सकते हैं 5754001257540012 सो सीक्रेट ब्यूटी की तरफ से मिलता है 800 रुपए का ये गिफ्ट वाउचर आपको और ये जो है आप तक पोस्ट किया जाएगा एंड हमारे जो पीए है विल गेट इन टच विद यू फॉर मोर डिटेल्स सो अभी के लिए कहेंगे कांग्रेचुलेशंस जीतने के मौके और भी मिलेंगे स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ
0: RM2 रेडियो मस्ती

0: Oldies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So well, ladies and gentlemen, यहाँ पर celebrating one year of Radio Musti and Radio Manoranjan और full on celebration mode आप तक है. कल होने वाला है एक road show, do not miss, across the island हमारी team जाने वाली है, जहाँ पर loads of मस्ती भी होने वाली है. So क्या पता कल आपसे कहीं ना कहीं मुलाकात ज़रूर हो. लेकिन अभी के लिए यहाँ पर आपसे मिलने आते हैं on radio और अभी के लिए एक और सवाल पूछेंगे आपसे, जहाँ पर आप जीत सकते हैं 500 रुपये का gift voucher, 500 rupees का gift voucher एस्थेटिका की ओर से. फर्स्ट फ्लोर कीनो स्क्वायर पोर्ट लुइस में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं. इस इनाम को अगर आप पाते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं. सो सिंपल सा सवाल है, बस जानना चाहते हैं कि आप हमारे रेडियो को कितना फॉलो करते हैं, कितना पसंद करते हैं. सो चलिए दोस्तों, 12 से लेकर 2 बजे तक एवरी डे यानी कि मंडे टू फ्राइडे ऑन RM2 रेडियो मस्ती एक प्रोग्राम होता है जिसमें पुराने गाने चलते हैं. उस प्रोग्राम का नाम क्या है, बात हो रही है RM2 रेडियो मस्ती की. 12 से लेकर 2 बजे तक आपके लिए लेकर आते हैं पुराने गानों का कारवां. और आपको हमें इस शो का नाम बताना है ऑन रेडियो मस्ती, ये शो कौन सा होता है 12 से लेकर 2 बजे तक, जहां पर आप एंजॉय करते हैं पुराने गाने. सेंड मी योर राइट आंसर्स पूरे नाम और पते के साथ. अगर पहली जीत हो चुकी है प्लीज दूसरों को मौका आप दें, और अगर अभी तक नहीं जीते हैं डू ट्राई योर लक. योर राइट आंसर्स 5499124 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ 12 से लेकर 2 बजे तक कौन सा वो शो होता है जिसमें हम पुराने गाने आपके लिए चलाते हैं. सो आपके सही जवाब आपके पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द बेस्ट.
0: North, South, East or West, tune into the very best. Radio Musti,

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: सवाल यहां पर आपसे पूछा था सवाल 12 से लेकर 2 बजे तक कौन सा वो प्रोग्राम होता है जहां पर आप एंजॉय कर पाते हैं पुराने गाने एंड द राइट आंसर इज रेट्रो रिदम यही वो शो है 12 से लेकर 2 बजे तक जहां पर आपके लिए हम चलाते हैं पुराने गाने मिले हमें बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद शामिली हुकुम आपने दिया है सही जवाब आप है बोनाकाय से कांग्रेचुलेशंस Well, आपने दिया सही जवाब और खेला है आपने RM2 रेडियो मस्ती के साथ जीता है ₹500 का गिफ्ट वाउचर एस्थेटिका की ओर से फर्स्ट फ्लोर किनो स्क्वायर पोर्ट लुइस फॉर मोर डिटेल्स आप कॉल कर सकती हैं 5257-3866 5257-3866 सो कांग्रेचुलेशंस हमारी विनर आप है शामिली हुकुम दिया है आपने सही जवाब और जीत गई हैं ये शानदार वाउचर सो दैट्स द राइट आंसर एंड थैंक यू सो मच हमारा साथ दिया आपने आपका गिफ्ट जो है वो आपको पोस्ट किया जाएगा ये जो आपको पोस्ट किया जाएगा एंड वील गेट हमारी टीम विल गेट इन टच विद यू वेरी सून सो जीतने के मौके मिलते रहेंगे स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ
0: RM2 रेडियो मस्ती

0: ब्यूटीफुल लवली गानों स्पेशली लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन R2 रेडियो मस्ती गाइस चेक योर टाइम इट्स 4 PM
1: R2 रेडियो मस्ती
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार विदिमा के साथ नमस्कार
6: नमस्कार गिनीशा सभी को नमस्कार पोटली में आज सुबह इस परंपरा को एक बार फिर निभाया गया कैथेड्रल में एक पवित्र मास के साथ सैंडवी का त्यौहार मनाया गया जिसमें देश के कई श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे पोटली के बिशप मोसिनियर जोमिकाइल जोहन का प्रवचन एक सामाजिक चुनौती रोजगार में भेदभाव पर केंद्रित था उन्होंने कहा कि समाज में अधिक सामाजिक न्याय लाने के लिए सैंडवी के मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए मोसिनियर जोमिकाइल जोहन ने श्रमिक जगत के लिए एक धर्म प्रांत आयोग की स्थापना की भी घोषणा की फिनिक्स स्थित अलेमिया कॉलेज में आज राष्ट्रीय स्तर पर ईद मिलाद उन नबी मनाई गई ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस को चिन्हित करने का एक उत्सव था मौलाना मोहम्मद अनास सिद्दीकी ने विशेष रूप से पैगंबर की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की सेशेल्स की राष्ट्रसभा की स्पीकर अजाहेल अनिस्ता को इस मंगलवार को उनकी मॉरिशस की समकक्ष शिरीन ओमिरोदी जिफ्रा द्वारा स्वागत किया गया इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य दोनों संस्थानों को अपनी कार्यप्रणाली की तुलना करने और संसदीय तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करना है और विदेश में भारत 12 और 13 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी होगा ये 7 वर्षों में उनकी पहली यात्रा होगी और दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच संबंधों में सुधार का एक नया संकेत भी होगा तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद नमस्कार
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजनासाठी पहिल्या वाढदिवस साठी हार्दिक शुभेच्छा
8: पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्दाने RM2 અને RM3 તરફથી ઘણી ઘણી શુભકામનાઓ
9: રેડિયો મનોરંજન ઓર રેડિયો મસ્તી કે પહેલ કા સાલગીરા કે ઢેર બના શુભકામના
10: રેડિયો મસ્તી મરી રેડિયો મનોરંજન કુ તુલી વાર્ષિકોત્સવ શુભાભિનંદનલુ
11: ઈનીય મુદલ આંડ નિરેવ નલવાટકલ ઓરેંજ ફ્રી RM2
12: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं
13: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक
14: साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन
15: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2

0: माल, हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3।
1: Rafthar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: रिलेटेड एंटरटेनमेंट RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: RM2। We have got beauty products सभी के हमारे listeners के लिए I've got so many gifts to give away आज।
2: यानी कि आज pampering day है।
0: Of course मैं Santa Claus बन गई हूँ। अभी से ही celebration शुरू हो चुके हैं on RN2 Radio Masti। So my dear lovely listeners, just stay tuned and stay connected. Yes, I've got so many cadeaus to give away to you। यानी कि आपको participate करना पड़ेगा। सवाल पूछेंगे, कभी सवाल नहीं पूछेंगे, कैसे करेंगे ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे थोड़ी देर में। All those जो अपने laptops बंद कर चुके हैं, mobile उठा चुके हैं, गाड़ी की चाबी उठा चुके हैं from the office to get back home, please drive carefully. अपना radio का volume आज थोड़ा सा और भी high कर लीजिए, क्योंकि आज हम सभी लोगों की anniversary है. So congratulations to you guys and stay tuned and stay connected for some good music.
3: वो नहीं आने वाली,
4: आने वाली,
3: वो बेवफा, शलावती,

थर्सडे 26 अगस्त, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RN3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू

बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्टरेस, रॉसबेल एंड फ्लैग, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.

0: 92 Radio Musti.
1: Come and meet the MBC and Lotoverti this Wednesday, 26th of August. Or celebrate KJ MBC RM2 or MBC RM3 ki first anniversary. Subah 10 baje se lekar all over the island. Games, hangama, full on masti, guaranteed. Aaye aur maza lijiye Lotoverti ki sabhi zaruri educational informations aur responsible khel ke bare mein. Quiz sessions, goodies aur celebrations poore din ke dauran. Zyada jankari के लिए लुतुवेयर लुतुटेक के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए. लुतुवेयर और एमबीसी, हंगामा ही हंगामा.
0: RM2
2: रेडियो मस्ती.
3: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता. आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए. ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे.
4: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
0: RM2.
5: Well guys, I really hope that you are loving these beautiful and lovely गानों का selection से जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए on RM2 Radio Masti. जी हाँ, आज का दिन है extra extra special क्योंकि Radio Masti celebrate कर रहे हैं अपना first anniversary. एक साल, 365 days, countless गाने, endless masti आप लोगों के साथ, और सबसे important आप लोगों का प्यार और आपका और हमारा रिश्ता. अपने सुना, enjoy किया और request हमेशा भेजी, messages किए, calls किए और हर moment में Radio Masti का साथ दिया. आप हमेशा खड़े रहे बाय आवर साइड, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया जी हमारे पूरे RM2 रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से. बिल्कुल, तो आज सेलिब्रेशन सिर्फ रेडियो मस्ती का नहीं, ये सेलिब्रेशन आप सभी लोगों का है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग आवर बैकबोन. सो कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग हमारे साथ. हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू रेडियो मस्ती. वैसे आपकी आवाज, आपकी मस्ती, और ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन. यू आर लिसनिंग टू गिनेश राइट नाउ. थैंक यू सो मच जी. एंड जस्ट रिमाइंड यू, द शो इज लाइव on TikTok, RM2 Radio Masti. Well, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आज तो I've got so many cadeaus for you. Cadeau ही cadeau लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. तो चलिए, let's begin with one cadeau for you, not with a game. आपको बस हमें लिख के भेजना है. Yes, happy first anniversary Radio Masti. जी हाँ, you just have to write it down. Happy first anniversary Radio Masti. ये लिख के अपना full name और full address के साथ हमें भेजना होगा on 54991294 पर 5499129294. You just have to write happy first anniversary Radio Masti, full name और full address के साथ. Send it to me right now, right away, and you can win a voucher. Yes, a voucher which is given to you by Secret Beauty by Lovna Obilak Patpur. It's a brightening facial worth 1800 rupees. Ji haan, it's a brightening facial of 1 hour worth 1800 rupees. Jahan pe aap relax karenge, refresh karenge, and you're gonna revive. Secret Beauty is by Lovna Obilak Patpur. It is a ladies only beauty and wellness salon jo hai located in Forest Side, dedicated to helping women feel confident, beautiful, and also relax. So they offer a wide range of professional treatment, facial treatment, HIFU face and body treatment, anti-aging, derma planning and peeling, facial eye treatment, head massage, face massage, relaxing body massage aur detox bhi. Bahut saare cheeze hain. So it is located at Forest Side aur unka number hai 5754-0012 5754-0012. It's one brightening facial you can win right now worth 1800 rupees offered to you by Secret Beauty. Just write happy first anniversary Radio Masti, full name or full address ke saath, and send it to me right now on 5499294.

0: हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3। RM2
1: Radio Musti
0: Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius. RM2
1: Radio Musti.
2: Raftar Vibes. Filmy Rides.
0: RM2

खूबसूरत गानों का ये सिलसिला लेकर आए हैं आज आप लोगों के लिए. यस इट इज अ स्पेशल डे क्योंकि आज हम मना रहे हैं अपना फर्स्ट एनिवर्सरी. एक साल पहले हमने शुरू किया था एक सफर और आज वो सफर बन गया है एक ब्यूटीफुल मस्ती फैमिली. जी हां, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. रेडियो मस्ती को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है. इस जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए, हर सॉन्ग के साथ सिंग अलोंग करने के लिए, हर शो को लव देने के लिए, प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू

सो मच हमारे रेडियो मस्ती फैमिली. वैसे आपके मैसेजेस ने हमें स्माइल दी, आपकी रिक्वेस्ट ने शोज को एक्साइटिंग बनाया और आपकी सपोर्ट ने हमें और बेटर करने की एनर्जी हमेशा से दी. रेडियो मस्ती का फर्स्ट एनिवर्सरी आपके नाम. कीप द लव इनकमिंग एंड कीप द लव ऑलवेज माय डियर, बिकॉज मस्ती अभी तो शुरू हुई है ऑन रेडियो मस्ती इन योर रफ्तार वाइब्स. तो चलिए जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले सबको बोला था कि ऑन आर एन टू रेडियो मस्ती का जो व्हाट्सएप नंबर है, नॉर्मल मैसेजेस नंबर है 5 4 9 9 12 94. यू जस्ट हैव टू सेंड मी हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू रेडियो मस्ती. एंड हमने बोला था कि अपना फुल नेम और फुल एड्रेस जरूर भेजना, क्योंकि विल बी सेंडिंग इट टू यू बाय पोस्ट. तो चलिए जी, अभी मेरे पास एक गिफ्ट वाउचर है वर्थ 1800 रुपीज. इट्स अ ब्राइटनिंग फेशियल फॉर 1 hour, रिलैक्स रिफ्रेश एंड रिवाइव बाय गया सीक्रेट ब्यूटी बाय लवना अविलक पाटपुर. और लकी ड्रॉ में किसका नंबर निकल आया है, लेट्स चेक इट आउट. जी हाँ, और आज का लकी विनर है द पर्सन हु इज विनिंग दिस लवली वाउचर द ब्राइटनिंग फेशियल इज रानीशी गमना गायन. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू. बिल्कुल जी, कंग्रेचुलेशंस टू यू रानीशी गमना गायन, लटू ऑफ सेंट जूलियन डेटमा. सो यू आर विनिंग दिस ब्राइटनिंग फेशियल. यू गोना लुक टू सेक्सी, यू गोना लुक वेरी प्रीटी. जी हाँ, रिलैक्स रिफ्रेश एंड रिवाइव बाय सीक्रेट ब्यूटी बाय लवना अभिलक पाटपुर जो है एट फॉरेस्ट साइड के पेपर. एंड द नंबर इज 5754001 2. यू कैन कॉल ऑन फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर. यू गोना गेट योर लवली वाउचर, दे विल बी पोस्टिंग इट टू यू. सो कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू यू.

0: 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market din ke 10 baje se 11 baje tak. Port Louis Urban Terminal Mall din ke 12 baje se 1 baje tak. Roswell Mall by West din ke 2 baje se 3 baje tak. Flak Taxi Stand next to bus station sham ke 4 baje se 5 baje tak. सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ. सेव द डेट, सेव द डेट. बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें. साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. फर्स्ट एनिवर्सरी. गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए. हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26th of August को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. Sponsored by Lutavere. Lutavere.
1: Just to remind our dear lovely listeners, the show is live on RM2 Radio Masti on TikTok. Agar aap hame live dekhna chahenge, you would love to enjoy each and every vibe that we are sharing right now in the studio. So why not, it's happening on RM2 Radio Masti. Radio Masti is officially 1 year young. Ji haan, ek saal ki dosti, ek saal ki music, ek saal ki entertainment. Aur ek saal ka non-stop masti aapke aur hamare beech mein. Aur is journey ka real VIP is kaun? You and only you, my dear and lovely listeners. Our listeners are joining. हमारे दिल के करीब रहते हैं. सो थैंक यू फॉर मेकिंग रेडियो मस्ती अ पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग्स एंड एवरी लिटिल मोमेंट इन बिटवीन. सो हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी रेडियो मस्ती. टर्न अप द वॉल्यूम बिकॉज आज मस्ती डबल है मेरी जान, क्योंकि आज मेरे पास कार्डियो ही कार्डियो है. सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आज सभी लोगों को मौका दे रहे हैं टू विन लॉट्स ऑफ कार्डियोज. और अभी के लिए आई हैव गॉट अ वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय नवेली कैफे. जी हाँ, नवेली कैफे इज ऑफरिंग टू यू अ वाउचर. यानी कि Naveli Cafe is where delicious food, great flavors and a beautiful dining experience come together. From our irresistible jo hain pani puri, vara pav aur mouth-watering momos to favorites like chili cauliflower, beetroot cheese, tikki aur chicken banjara wahan pe banta hai, butter chicken burger aur flavorful tofu tikka masala aur bahut kuch sabhi logon ke liye, taki wo wahan pe jaake enjoy kar sake apno ke saath. Whether you are joining them for lunch, dinner, you're simply a delicious bite, Naveli is all about good food, good vibes and bringing people together. So agar aap jeetna chahoge a voucher worth 500 rupees offered by Naveli Cafe and RM2 Radio Masti on the anniversary right now, right away, hum puchenge ek bahut hi aasan sa sawal. Ji haan, roz to hum aa jate hain aap logon ka saath dene ke liye on RM2 Radio Masti 4 aur 7 ke beech mein, aur is show ka naam hai Raftar Vibes. Lekin on Friday afternoon 4 aur 7 ke beech mein hum aa jate hain aapka saath dene ke लिए. उस शो का नाम क्या है? ऑन फ्राइडेज आफ्टरनून 4 और 7 के बीच में, 4 बजे और 7 बजे के बीच में शो का नाम क्या है? 5 4 9 9 12 94. सेंड मी द राइट आंसर विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस, देन यू कैन बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम. यू जस्ट हैव टू टेल मी द शो ऑन फ्राइडे आफ्टरनून जो आता है ऑन रेडियो मस्ती 4 बजे और 7 बजे के बीच में, जहां पे हम ही आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए. सो व्हाट्स द शो ऑफ द नेम? आप हमें सही जवाब भेजें और आप जीत पाएंगे अ वाउचर worth 500 rupees offered to you by Naveli Cafe.

बिल्कुल जी, हम आपको नहीं तर पाएंगे आज के दिन, क्योंकि आज वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए. वैसे ही कभी कार में तो कभी घर में, कभी ऑफिस में, और कभी बस हेडफोन्स लगाकर आप लोग हमारे सुनते रहते हैं. रेडियो मस्ती ने गुजारा है आपके साथ एक पूरा साल. जी हाँ, हमें गाने जो है हमने बजाया आपके लिए, और आपने दिल से सुना, हमने जोक्स किए, आप लोग हंसे, हमने रिक्वेस्ट की, और आपने अपने फेवरेट्स गाने चूज किए, और इसी तरह बन गए हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी आपके और हमारे बीच में रेडियो मस्ती. सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वन ईयर एग्जैक्टली आप लोगों के साथ. फ्रॉम द एंटायर रेडियो मस्ती टीम, दिल से थैंक यू माय डियर. बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जिन्होंने बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से हमारा साथ दिया. आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. सो हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू रेडियो मस्ती फैमिली एंड टू ऑल दोस जो हमें सुन रहे हैं ऑन रेडियो एंड वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक. आप सुनते रहिए और हम मस्ती करते रहेंगे, तो बस सुनते रहना ऑल इन टू रेडियो मस्ती. पूछा गया है एक सवाल जो बहुत ही आसान है, एंड सही जवाब देने पर आपको मिल रहा है वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफ टू यू बाय नवेली कैफे जो है एट उस्मान एवेन्यू सैंपल फिनिक्स. यस, यू कैन विन दिस वाउचर ऑफर टू यू राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती जस्ट बाय गिविंग मी द राइट आंसर. किसी ने बोला है कि आप हमने सुना नहीं आपका सवाल क्या है, तो दोबारा पूछ रही है. जी हाँ, फ्राइडेज को आफ्टरनून में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में द इज अ शो. बिल्कुल जैसे रफ्तार वाइब्स आज मंडे से थर्सडे होता है, तो फ्राइडेज को कौन सा शो आता है 4 और 7 के बीच में, जो मैं ही आती हूँ आप लोगों का साथ देने के लिए. यू जस्ट हैव टू टेल मी द

0: name of the show on 5499 1294 54991294 par full name or full address ke saath. And you're going to win a voucher worth 500 rupees offered to you by Naveli Cafe.
1: Masti ka station, music ka celebration. RM2 Radio Masti, 1 year of pure sensation. Happy anniversary, RM2.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides.
3: RM2.
4: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
5: Sports News.
6: Radio Musty in the mix.
0: वेल गाइस टाइम बेटा चला जा रहा है 4:43 हो चुके हैं यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन जहां पे फिलहाल के लिए बॉलीवुड की दुनिया से निकलकर लेके जाएंगे आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद जी
7: गुड आफ्टरनून आपको गुड आफ्टरनून आरएम टू लिसनर्स वैसे आज तो दिन भर फुल मूड फुल स्विंग सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी एक बार फिर आप सभी लिसनर्स को हमारी पूरी टीम की ओर से खासतौर पर स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए और शाम को काफ़ी लोग सुनते हैं तो आपको भी कहेंगे थैंक यू फॉर बीइंग विद अस चलिए बात कर लेते हैं फुटबॉल की आज काफ़ी मैच खेले जाएंगे खासतौर पर फॉर द चैम्पियंस लीग आज तीन टीमें क्वालिफाई होंगी इनमें अभी रिटर्न लेग जो खेले जा रहे हैं सो यूईएफए चैंपियंस लीग प्ले ऑफ सबह का मुकाबला एच बी शेवा से 2-1 से शेवा टीम की जीत हुई थी फर्स्ट लेग में फिर बोडो ग्लिंट एनईसी टीम के खिलाफ 3-1 से बोडो ग्लिंट की जीत हुई थी आज हो मैदान में है तो लगभग कह सकते हैं एक कदम ग्रुप स्टेज में तीसरा मैच एल ए एस के वर्सेस सेल्टिक सेल्टिक ने भी अपना मैच जीता था 3-0 से फर्स्ट लेग में इंग्लिश लीग कप के लिए भी काफी मैच आज खेले जाएंगे इनमें कार्डिफ नॉर्विच डनकास्टर मिडिल्सबोरो फिर ब्लैकबर्न शेफील्ड यूनाइटेड बार्न्सले क्रू ब्लैकपूल लिंकन कैम्ब्रिज यूनाइटेड मिलवॉल फ्लीटवुड श्रिस्बरी इप्सविच लेस्टर प्लाइमूव कोवेंट्री शेफील्ड वेनेसडे वुल्व्स साउथहैम्पटन वेस्ट हैम स्टीवेनेज रेडिंग स्टोक हल सिटी वॉल्सॉल लेटन ओरियंट वाटफोर्ड पीटरबोरो बर्मिंगहम ब्रेडफोर्ड नॉटिंगहम फॉरेस्ट लीड्स फिर कल बाकी मैच खेले जाएंगे फॉर द लीग कप इनमें प्रीमियर लीग की कुछ टीमें आएंगी कल में ब्रेडफोर्ड बर्नले Newcastle United, West Bromwich Albion, Spurs, Charlton, Preston, Everton और कल ही UEFA Champions League के चार प्लेऑफ के रिटर्न लेग के मैच खेले जाएंगे इनमें लियों फेनेरबाचे सेल्ये स्लोवान एके एथेंस लेव्स्की वाइकिंग डिनामो ज़ाग्रेब वाला मैच होगा ये कल के लिए हैं कल की बात कल भी करेंगे सावीनो आ गया है टोटनहम हॉटस्पर ने जो मैनचेस्टर सिटी ने उसे बेच दिया और खबर है कि अब और दो साइनिंग होने वाले 75 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में साइन किया गया सावीनो को सो टोटनहम हॉटस्पर जो पहला मैच हार गई थी उसके लिए संभलना जरूरी होगा बाकी क्रिकेट की बात करें तो आज इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा है इसमें टीम इंडिया की स्थिति काफी मजबूत है दे स्कोर 503 declared. श्रीलंका की टीम अभी 238 रनों से पीछे हैं, खेल रहे हैं 285 रन पर सो इंडिया लीडिंग बाय 238 रन जो काफी मजबूत लीड बताई जा रही है सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड फिर मिलेंगे कल सुबह कीप ऑन एंजॉयिंग आरएम2 एंड वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी टू द होल टीम ये टीम जब काम करती है तो जिस तरह से स्पिरिट है इस टीम में तो बाकी टीम में कहते हैं सलाम थैंक यू सो मच बाय बाय
0: इसमें तो कोई डाउट नहीं है अरविंद जी थैंक यू सो मच एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू ब्रो
4: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
8: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo le plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou

0: 413-10-53.
1: Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.
3: साल भर में सबसे प्यारा
2: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा. पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्दाने RM2 अने RM3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ.
4: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का साल गिरा के ढेर बना शुभकामना.
2: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु.
5: इदिय मुदल आंडु निरेव नलवाटुकल ऑरेंज फ्री RM2.
6: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह के हार्दिक शुभकामनाएं.
7: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक.

0: RM2 Radio Masti.
1: That was such a beautiful and mesmerizing track, especially for you on RM2 Radio Masti. Yes, we are celebrating our first anniversary. The energy, the vibes is so high. Today, main aapko kya batau? Subah se hum log celebrate kar rahe hain and wishing all of you, our dear and lovely listeners, yes, a happy anniversary. To chaliye pucha gaya tha ek sawal jahan pe aapko mil raha hai. A voucher worth of 500 rupees offered to you by Naveli Cafe from Usman Avenue, Sample Phoenix. Yes, humne pucha tha ek sawal. Rose afternoon ko 4 aur 7 ke बीच में होता है एक गेम एक शो जिसका नाम है रफ्तार वाइब्स विल बी राइट्स लेकिन फ्राइडेज को सेम टाइप में एक डिफरेंट शो होता है उसका नाम क्या है द नेम इज अ फ्राइडे मश

मैशअप। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे मैशअप और सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया और गलत जवाब भी हमें दिए हैं। सो अभी लकी ड्रॉ में हमारा न्यूटन गोपाल का नाम निकल आया है। सो कंग्रेचुलेशंस। So Newton ji, congratulations to you. Newton Gopal, she's from Nivea Mille Triolet. Congratulations, my beautiful. You are winning a voucher worth 500 rupees offered to you by Naveli Cafe. So congratulations and happy first anniversary to you too, my dear.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

Radio Musti. खूबसूरत गानों का ये सिलसिला यस चलेगा, लेकिन खाडू की बारिश हो रही है आज, गिफ्टों की बारिश हो रही है। सो माय डियर लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं, आपको बता दें कि द गेम जो अभी होने वाला है इट्स स्पॉन्सर्ड बाय ticketbox.mu। सो क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान, यानी द ग्रेट सिंगर फ्रॉम बॉलीवुड। एंड नाउ आवर एंटी रेडियो मस्ती इज गिविंग यू द चांस टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव। प्ले विद आवर एंटी रेडियो मस्ती एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ गोल्ड टिकट टू असिस्ट spectacular Shan live concert. One voice, one stage, one unforgettable night, and it's going to happen at SVICC at Pai on the 5th of September 2026, sham ke raat ke 8 baje se lekar onwards, and it's proudly organized by ticketbox.mu. puchenge ek sawal, aapko sahi jawab dena hai. You just have to tell me the singer Shan, how old is he, unki umar kya hai, how old is the singer Shan? Give me the right answer right now and be my lucky winner. 549-1294 full name or full address ke saath send me the right answer and win a gold ticket to watch the Shan live concert in Mauritius. So how old is the singer Shan? 549-1294 best of luck to you.

0: साल हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड RM3।
1: Rafthar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

आज आर एम टू और आर एम थ्री की पहली सालगिरह है। आप सभी लिसनर के प्यार और साथ ने इस एक साल को खास बनाया। दिल से धन्यवाद और हैप्पी एनिवर्सरी टू आर एम टू आर एम थ्री।

चलिए वो बन गया है अ फैमिली वॉइस इन बॉलीवुड थ्रू रोमांटिक मेलोडिक एंड फील गुड सॉन्ग. ओवर द इयर्स शान हैज डिलीवर्ड न्यूमरस मेमोरेबल हिट्स अक्रॉस हिंदी सिनेमा एंड इवन इंडियन पॉप सिंगर अर्निंग स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशंस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. उनकी जो वार्म वोकल स्टाइल है, एफर्टलेस स्टेज प्रेजेंस है और जो एबिलिटी टू कनेक्ट इमोशनली अपने ऑडियंस के साथ ने उनको बनाया है एक पॉपुलर लाइव परफॉर्मर. सो एंजॉय द कैरिस्मेटिक एनर्जी सोलफुल वॉइस एंड टाइमलेस मेलोडीज ऑफ शान लाइव ऑन SVICC का जो स्टेज है ऑन द 5th ऑफ सितंबर 2026 रात के 8 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स. एंड यस, अभी के लिए हमने पूछा एक सवाल और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए और सही जवाब देने पर आपको मिल रहा है टिकट, अ गोल टिकट. एंड जी हाँ, हमने लकी ड्रॉ में किसका नाम निकाला है अभी. जी हाँ, लेट्स चेक इट आउट.

0: FM2.
1: Radio Musty.
2: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui danse l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
3: Tamam Deals, il arrive coup de métrique. Pas croise, pas rêver. Du 14 au 31 août, profite jusqu'à 50% discount. Oui, the team bien attendez. Carreau, robinet et sanité à top qualité avec du rat, 50 tranquillité. Tamam Deals là, tamam même ça. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
4: Sans mon climat, pas tout n'est que pécose ça même. Qui fait? Parce qu'il la vie, tout la vie. La vie tout du monde dans tout pays affecté par la sécheresse, par une tempête, par une baisse production alimentaire. Et un pays qui est plus vulnérable que les autres. Maurice, pour faire tonne sur la voie ensemble avec les autres pays comme nous, de COP31, qui est une conférence internationale au changement climat. La voix Maurice, c'est où la voix? Participe dans consultation qui ministère l'environnement PFR avant nous soumettre nos positions nationales. Donne-nous l'idée ou proposition, l'osamane l'adresse là. menv@govamu.org et COP31proposals2026@gmail.com. Ou pour gagner plus renseignements, le site internet et le BVA qui passe Facebook officiel ministère de l'Environnement. Date limite, 4 tantôt, le 6 septembre 2026.
5: Common Meads, MBC and Lotto Verti. This Wednesday, 26th of August. Or celebrate KJ MBC RM2 or MBC RM3 ki first anniversary. Subah 10 baje se lekar all over the island. Games, hangama, full on musti, guaranteed. Aaye aur maza lijiye Lotto Verti ke sabhi zaruri educational informations aur responsible khel ke bare mein. Quiz sessions, goodies aur celebrations poore din ke dauran. Zyada jankari के लिए लोटोवेयर लोटोटेक के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए. लोटोवेयर और एमबीसी, हंगामा ही हंगामा.
0: आरएम2
1: रेडियो मस्ती.
6: साल भर में सबसे प्यारा
7: आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन सेट ही पहला वाट दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा.
8: पहला वर्ष ने वर्ष काटनी तमने बद्दा ने आरएम2 अने आरएम3 तरफ से घणी घणी शुभकामनाओ.
9: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना.
10: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदन लु.
11: इनिय मुदल आंड निरेव नलवाटिकल आरएम फ्री आरएम2
12: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं.
13: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक.

साल, हजारों यादें और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन का पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आपका प्यार, हमारी मस्ती और म्यूजिक का ये सफर हमेशा रहे फुल ऑन वॉल्यूम। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी RM2 एंड

0: बिल्कुल जी, विशिंग यू लोड्स ऑफ लव, लोड्स ऑफ हैप्पीनेस ऑन ऑल इंटर रेडियो मिस्टी. वी आर सेलिब्रेटिंग अवर फर्स्ट एनिवर्सरी. ये हमारी सेलिब्रेशन नहीं है, ये आपकी सेलिब्रेशन है. रेडियो मिस्टी की कहानी में एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों का, यानी कि हमारे लिसनर्स का. एक साल पहले हमने माइक्रो जो फोन है ऑन किया था, जो हमारे माइक ऑन किया था, लेकिन आपने अपना दिल, अपने दिल के स्पीकर्स को ऑन कर दिए थे. और आज रेडियो मिस्टी को हो गया है एक पूरा साल. इस जर्नी में आपने हमें सुना, सपोर्ट किया, अप्रिशिएट भी किया, और कभी कभी कंप्लेन भी किया, लेकिन it doesn't matter, अपनों के बीच में ये चलता ही रहता है. और honestly, we love every bit of it, because radio मस्ती सिर्फ हमारी नहीं, आपकी है, ये आपकी रेडियो है. So thank you मस्ती family, one year complete, और जर्नी अभी बाकी है मेरे रोज. And yes, आज तो गिफ्टों की बारिश हो रही है on air, और हमारे listeners सुनते चले जा रहे हैं, और इतने सारे लोग जो हैं सही जवाब भेज रहे हैं और गलत जवाब भी है. जी हाँ, हमने पूछा है अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे स्पोर्ट्स गुरु का नाम क्या है ऑन रेडियो मैसेज, जो रोज सुबह आते हैं और शाम को पौने चार बजे आ जाते हैं फॉर योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज, जो हमारे टांगे खींचते हैं, हमें सुनाते हैं, हंसाते हैं, और दुनिया के लेटेस्ट से लेटेस्ट स्पोर्ट्स खबरें अपडेट देते रहते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए और कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिए, लेकिन the right answer is Arvind Bisesar. Yes, Arvind Bisesar ji, he is our sports guru. और आज के lucky draw में किसका नाम निकल आया है? आपका कौन है? मेरा नहीं, आपका of course. And आज का lucky winner है प्रिया मीनुआ of Ruisseau Riyad Long Mountain. से Ruisseau Rose Riyad Long Mountain. So congratulations. अच्छा गलत लिखा है, से Ruisseau Rose Road I guess Long Mountain. Congratulations to you, Priya Minowa. So congratulations to you, my beautiful. You are winning a voucher worth 800 rupees offered to you. It's a head massage for 30 minutes offered to you by Secret Beauty by Lavna Avilakpatpur. Relax, refresh and revive, my dear. Yes, she is located at Forest Side Cure Paper. Number hai 5754012. So congratulations to you.
1: RM2 Radio Masti.

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो प्रिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो प्रिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: महफिल
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: RM2
3: Wishing our dear and lovely listeners a happy first anniversary on RM2 Radio Masti. Ji haan dosto, umeed karte hain that you guys are having a great time by listening to us, and yes, that you are enjoying the entire show, kyunki aaj itne sare hum gifts lekar aaye hain aap logon ke liye. Aaj normal listening allowed nahi hai, aaj volume hona chahiye bilkul ekdam high. Ji haan dosto, aapko to bas bhejna hai wahan par messages, aapko hamesha apne dil ki baat likh ke bhejna hai on 5499 1294 par. Thodi der में हम लेकर आएंगे एक और गेम आप लोगों के लिए, जो सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: वेलकम टाइम हो चुका है 5:48 और लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपके फैशन टिप्स ऑन R&T रेडियो मस्ती सो माय डियर लवली ब्यूटीफुल लेडीज जो साथ दे रही हैं। और वैसे अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आज हम डिफरेंट जो फैशन टिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रोज। और आज हम बात करेंगे, फैशन टिप है बैंगल्स के नाम। जी हाँ गर्ल्स, अगर आपको चाहिए एक सिंपल बट एलिगेंट लुक तो ट्राई करो क्लासिक बैंगल्स जो हैं ग्लॉस बैंगल्स। अपने जो आउटफिट के कलर के साथ मैचिंग बैंगल्स पहनो या फिर कंट्रास्टिंग कलर चूज करो फॉर दैट एक्स्ट्रा पॉप। इंडियन वेयर हो या सिंपल कुर्ती, बैंगल्स कैन इंस्टेंटली अपग्रेड योर लुक। रिमेंबर फैशन में कभी कभी छोटी सी डिटेल ही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और बहुत ही जल्द जो है वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, राखी भी, एंड ऑल्सो इंडियन आउटफिट तो हम बहुत ही पहनने वाले हैं। सो अपने बैंगल्स को मैच करना मत भूलिएगा।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। एक साल, एक सफर और हजारों यादें, म्यूजिक के बीच मस्ती की बातें।
3: RM2 रेडियो मस्ती हर पैशन के संग,
1: आपके फेवरेट ट्यून से लेकर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट तक, आपकी स्माइल से लेकर आपकी स्टोरीज तक।

have been a part of every beat of RM2. एक साल में मिले कितने सारे दोस्त और सबसे बढ़कर आपका प्यार. आज वॉल्यूम थोड़ा लाउड करो, स्माइल थोड़ी और ब्राइट करो और सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करो. दिस इज आवर सेलिब्रेशन.

0: FM2
1: Radio Musty.
2: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné de tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Oda Manzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, mais commandez, noir méné. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: RM2
1: Radio Musty.
4: Such a lovely, lovely gaane lekar aaye hain, especially aap logon ke liye on RM2 Radio Musty, and I really hope that you guys are really, really enjoying it, just like we are doing right now in the studio. Ji haan dosto, we are celebrating our first anniversary, aur isi mauke par kado pe kados dete chale ja rahe hain. Itne sare gift, aye hai meri jaan, how lucky you are. Of course, lucky hona chahiye kyunki aap log ho na hamare liye itna special, hamare dil ke kareeb jo rehte ho. To chaliye ji, abhi thodi der pehle humne pucha tha ek sawal ki 7 se 9 baje ke beech mein jo show hota hai every morning on RM2 Radio Musty, Monday se lekar Friday tak, uska naam kya hai? And the name of the show is Morning Beat. बहुत सारे लोगों ने राइज एंड शाइन भी लिख के भेजा है, लेकिन वह तो 5 से 7 के बीच में होता है. मॉर्निंग बीट 7 से 9 के बीच में, एवरी मॉर्निंग इट हैपेंस ऑन ऑल टू रेडियो मसी. और आज सही जवाब हमें दिया है बहुत सारे लोगों ने, और लकी ड्रॉ में शुभा भी चाडर का नाम निकल आया है फ्रॉम रॉयल रोड मोटीडा. Congratulations to aaj ka lucky winner Shubha Bijadar ji, jo Royal Road Motida ki rehne wali hai. Yes, the real answer, the exact answer is Morning Beat. Roz subah on RM2 Radio Musty 7 se 9 ke beech mein hamara morning show ka naam hai Morning Beat. So congratulations my beautiful, you're winning a voucher worth 500 rupees offered to you by Ella Boutique from Vakwa.

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा ऑन ऑनलाइन टू रेडियो मसीह, लेकिन 6 बजे की समाचारों की के बाद अभी फिलहाल के लिए चलिए चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 पीएम।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
3: Radio Musti.
4: North, South,
3: 103.5.
4: East, West,
3: 96.4.
5: नमस्कार।

0: मंगलवार 25 अगस्त 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में आज ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश की याद में मनाया जाता है ये मुबारक दिन। फिनिक्स के आलिमिया कॉलेज में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहे। पैगंबर की तालीम और इंसानियत के पैगाम पर जोर दिया गया। पोटली में आज सैंडवी पर्व मनाया गया। कैथेड्रल में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। बिशप जॉन मिकाएल जुरन ने रोजगार में भेदभाव का मुद्दा उठाया। सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया। दो दिन पहले रोशबुआ में 7 महीने के आद्रियानो पेरिन की दर्दनाक मौत और आज नम आंखों के बीच उसे अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों की सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारी को लेकर अपनी आवाज़ उठाई। मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच निवेश और कारोबार के मजबूत सेतु के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर। बालाक्लावा में आयोजित लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स में निवेश और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वैश्विक बदलाव और समाज की बेहतर योगदान के लिए राष्ट्रपति धर्मगोकुल को समारोह का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और विदेश में ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अमरीका ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। देश भर में मुस्लिम परिवार आज ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। ये मुबारक दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीम और इंसानियत के लिए दिए गए उनके पैगाम को याद करने का ये ख़ास मौका है। इसी सिलसिले में फिनिक्स के आलिमिया कॉलेज में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। मौलाना मोहम्मद अनास सिद्दीकी ने ख़ास तौर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद की तालीम और उनके पैगाम पर रोशनी डाली। उन्होंने देश की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ भी की। मीगान पुना पनायकन, करुणा लालू।
1: इस वर्ष पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश की 1501वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हजरत मोहम्मद इस्लाम के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं।
2: Aujourd'hui nous avec grand la joie parce que c'est nous prophète sur naissance aujourd'hui, c'est grâce à lui qui nous gagne tout. Si nous là aujourd'hui c'est grâce à lui.
3: C'est un guide pour nous, il y a un grand personnage. Et nous encourage tout le monde, vous nous suivez ce droit chemin.
4: Les montagnes, c'est une bonne manière. Vous êtes dans les cœurs pour maman, papa. Pour tout le monde en général, c'est tous les enfants qui allent à l'école. Tous les temps, maman, papa, ils m'occupent de notre bonne conduite. Et à l'école, je respecte notre professeur.
1: ईद मिलादुन्नबी का आधिकारिक जश्न कई गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में लगाया गया। इनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल शामिल थे। हल्काए कादरिया ईशाइत इस्लाम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने हजरत मोहम्मद की तालीमात और आपसी सद्भाव के साथ जिंदगी जीने की अहमियत पर जोर दिया। सैयद मोहम्मद अल हसनी ने कहा,
5: de vivre ensemble, qui nous demande d'être cohérents et de vivre en coexistence. Et cette coexistence, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire des ponts entre les communautés, les ponts entre les amoureux de chaque religion, de chaque prophète, de chaque obédience, de chaque religion, qu'elle soit ancienne ou récente.
1: Maulana Muhammad Anas Siddiqui, jo khas taur par is mauke ke liye Mauritius tashreef laaye, ने ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात की अहमियत और मौजूदा दौर में उनकी मुनासिबत पर जोर दिया।
6: दिस कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे एंड माशाल्लाह द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री हैज बिकम सो मच डिस्टिंग्विश्ड। मेरा दिस सेलिब्रेशन इज अ मस्ट, इट इज अ नीड ऑफ आवर हार्ट, इट इज अ मस्ट फॉर आवर सोल। It is a duty of our human bodies. और विदाद होता रहेगा तो हम फटते नहीं रहेंगे, विदाद होता रहेगा तो घर में सुकून भी होगा, विदाद होता रहेगा तो हमारी जिंदगियां कामयाब भी होंगी।
1: जश्न के दौरान रूहानी

0: पेशकश भी हुई।
1: दो दिन पहले खुशबा में 7 महीने के अद्रियानो पेरिन की दर्दनाक मौत और आज नम आंखों के बीच उसे अंतिम विदाई दी गई। दोपहर बाद अद्रियानो की अंतिम यात्रा उसकी मां के घर से नोत्र दाम दे लासोम्पसियन चर्च के लिए निकली। परिवार, करीबी और स्थानीय लोग इस दुख की घड़ी में साथ आए। इस मासूम की मौत ने समाज को भी झकझोर दिया है। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों की सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारी को लेकर अपनी आवाज उठाई। पोटली में आज सेंट लुई पर्व की पुरानी परंपरा एक बार फिर निभाई गई। गिरजाघर में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और देश की कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। पोटली के बिशप जोमिकाइल जुगन ने अपने संदेश में रोजगार में भेदभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने सेंट लुई के मूल्यों से प्रेरणा लेकर समाज में अधिक न्याय और समानता की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही नौकरी की दुनिया से जुड़े मुद्दों के लिए एक आयोग की भी घोषणा की। सोमवार 24 अगस्त को एसएसओ हवाई अड्डे पर मॉरिशस और ब्रिटिश पासपोर्ट धारक 21 वर्षीय युवती को आजसू और कस्टम्स अधिकारियों ने दुबई से लौटने पर गिरफ्तार किया। उसके सामान से खिलौनों के 3 डिब्बों में लगभग 3.1 किलो सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुआ, जिसकी लागत करीब 50 मिलियन रुपए है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और 25 पाउंड स्टर्लिंग का नोट भी जब्त किया गया है। मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच निवेश और कारोबार के एक मजबूत सेतु के रूप में आगे बढ़ाना लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स में आज इस सोच पर खास जोर रहा। हिंद महासागर में मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति, अफ्रीका तक पहुंच और दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने वाले ढांचे, जिनमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी शामिल हैं, चर्चा के अहम पहलुओं में रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीति, व्यापार, कला और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मॉरिशस और भारत की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को वैश्विक बदलाव और समाज की बेहतर दिशा में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि पोटली में आज सेंट लुई पर्व की पुरानी परंपरा एक बार फिर निभाई गई। गिरजाघर में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और देश की कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। क्लोदे जोफा का देवादू रजनी बिकर।
2: 25 अगस्त गिरजाघर की ओर से सेंट लुई को सम्मानित किया जा रहा है। जरूरतमंदों के प्रति ध्यान एवं न्याय की भावना को लेकर उनके गहरे विश्वास के लिए हर साल की तरह श्रद्धालु, पादरी और महानुभाव उनके नाम पर रखे गए गिरजाघर में आयोजित समारोह के लिए एकत्र होते हैं। इस मौके पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। साथ में राजा से संत बने इस महानुभाव के मूल्यों को भी याद किया गया। अपने संदेश में पोर्टलिस के बिशप ने सेंट लुई के एक संदेश पर जोर दिया, जिसका आज बोलबाला है सामाजिक न्याय। मोंसेयर जोमिकाइल जुगन ने कहा,
3: être juste selon saint louis ce n'est pas seulement donner à chacun ce qui lui revient mais aussi regarder la personne derrière la situation et reconnaître sa dignité qui ne dépend ni de sa richesse ni de son statut ni de son origine. Le discernement nous demande d'écouter. Cette écoute fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui dans l'Église catholique la synodalité, le marcher ensemble.
2: Monseigneur Jean-Michel Giraud ne a adhikariyon dwara uthaye gaye kadmon par bhi baat ki taki adhik samajik nyay ho, jaise ki Equal Opportunities Commission, Law Reform Commission, Truth and Justice Commission aadi ka bhi zikr kiya gaya.
3: Tout en venant avec des recommandations pour une révision des lois existantes, en collaborant aussi avec ceux qui ont la responsabilité au niveau de notre société civile, l'État et d'autres collaborateurs, cela doit aussi s'accompagner d'un volet éducatif pour changer les mentalités.

0: अंतर्गत गिरजाघर की ओर से छोटे बच्चे आद्रियानो को भी याद किया गया, जिसकी मौत पिछले रविवार को हुई। साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में साइकिल रेस में अहम जीत हासिल करने वाली किम्बर्ली लेकोर दुबियो को बधाई दी गई। सेल्वी का पर्व पीढ़ियों से चलती आ रही है और ये एक परंपरा है। लोग प्रार्थना करने के लिए पोर्टलिस शहर इतिहास के बारे में जानने के लिए एकत्र होते हैं।
1: कोविड-19 के दौरान डायलिसिस मरीजों की मौत की न्यायिक जांच में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के 3 अधिकारियों ने क्यूपिप की अदालत में गवाही दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर हेल्थ रिकॉर्ड ऑफिसर के मुताबिक अप्रैल 2021 में क्वारंटीन केंद्र बनाए गए तमाशा होटल में ठहरे मरीजों से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। मॉरिशस और सीशेल्स के बीच पुराने और करीबी संबंधों को संसदीय स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम। सीशेल्स की राष्ट्रसभा की स्पीकर आजागलनिस्ता ने आज अपनी मॉरिशन समकक्ष शरीन ओमिरुद्दी जिफ्रा से मुलाकात की। इस अध्ययन यात्रा के दौरान दोनों देशों की संसद के कामकाज, अनुभवों और अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करने पर जोर दिया गया। सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसी संदेश के साथ अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज ADPS ने सड़क सुरक्षा को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान शुरू किया है। ADPS रोड सेफ्टी प्लेज नाम की इस पहल के जरिए लोगों को नियमों के डर से नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान में अलग अलग कंपनियों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जा रहा है।
2: सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो रोजाना हमारी सड़कों पर सफर करता है। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश के तहत अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज अपने रोड सेफ्टी प्लेज अभियान के तहत सीधे कर्मचारियों से उनके कार्यस्थल पर जाकर मुलाकात कर रहा है। विभिन्न कंपनियों में प्रेजेंटेशंस और बातचीत के जरिए संगठन के प्रतिनिधि वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की याद दिलाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात अच्छे और सुरक्षित व्यवहार को लगातार अपनाने पर जोर दिया जाता है। जिगी अनुदय कहते हैं, अन्य चालकों राहगीरों पर भी ध्यान देना चाहिए, गाड़ी की जाँच करनी चाहिए। योगिनी कंदन कहती हैं, गाड़ी चलाने से पहले खुद को तैयार करती हूं कि मैं गाड़ी चला सकूंगी या नहीं। कर्मचारियों के बीच इस संस्कृति को लगातार याद दिलाना हमेशा अच्छा होता है। सड़क पर कुछ गलत व्यवहार से जुड़े खतरों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और जानकारी देने के सत्र आयोजित किए जाते हैं। ओशन ट्रैशर के एडमिन एंड अकाउंटेंट्स मैनेजर कनेन अनिया काउंटन कहते हैं, हमारी कंपनी में कई चालक हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज के लिए जागरूकता फैलाने का मतलब केवल नियमों या उल्लंघन की स्थिति में होने वाली सजाओं को याद दिलाना नहीं। अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज की प्रोग्राम डायरेक्टर दीक्षा रामदवा कहती हैं, इस प्लेज पर हस्ताक्षर करने से खुद से वादा करते हैं कि ऐसे व्यवहार अपना रहे हैं जो उचित हो और इसका हमेशा पालन करना चाहिए। हमारी सड़कों पर व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सोच में बदलाव भी जरूरी है। इस अभियान के जरिए अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज ज्यादा जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है।
1: श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष समय। इस पवित्र महीने में श्रद्धालु पूजा, अभिषेक, मंत्र जाप और प्रार्थना के जरिए महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। शिव भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, इसे मन की शांति, समर्पण और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग भी माना गया है। भगवान शिव को देवों के देव, महादेव और परम कल्याणकारी माना जाता है। श्रावण मास की ऐसी ही भक्ति का भाव वापिन्युरे तेयहूश के रामेश्वरनाथ मंदिर में देखने को मिला, जहां भक्तों ने भगवान शिव की आराधना कर सुख, शांति और कल्याण की कामना की।

0: भगवान शिव को कल्याणकारी और आदि योगी माना जाता है, जिनकी सच्ची भक्ति जीवन में सत्य, पवित्रता और सबका कल्याण चाहना है। शमशान की भस्म और गले में विष धारण करने वाले भगवान शिव हमें ये संदेश देते हैं कि मनुष्य अपने अहंकार और विकारों को त्याग कर ही वास्तविक भक्ति को प्राप्त कर सकता है।
1: शिव जी ने दोनों लाफोज आकोसान को तो पहिए।
2: शिव जी के भक्ति से बहुत हमने के बरकत हुए ला, हमने के सुख शांति और सेहत के भी बहुत अच्छा पड़ेला।
0: ध्यान, आत्म अनुशासन और आत्मनिरीक्षण से जुड़ी ये साधना समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के प्रति समरसता और समानता का भाव सिखाती है। यही वजह है कि अन्य देवी देवताओं से भिन्न सहजता के प्रतीक आशुतोष शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे आडंबरों की नहीं बल्कि एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चे मन से जपे गए ओम नमः शिवाय मंत्र की ही आवश्यकता होती है।
3: जिसको सबकी भक्ति प्राप्त हो जाती है वो शिवमय हो जाता है। भक्ति का नाम तुलसीदास जी के अनुसार श्रद्धा ही भक्ति है, विश्वास ही भक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। माता पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शिव स्वयं विश्वास हैं। तो भक्ति के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि हमारे मन का विश्वास ही भगवान शिव की भक्ति है।
0: श्रावण मास के इस पवित्र महीने में शिव आराधना का ये महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, जब चारों तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारों के बीच भक्तगण इस सहजता और निष्ठा के साथ देवाधिदेव महादेव को जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति अपने भीतर के विकारों को त्याग कर परम शांति, ज्ञान और शिवत्व को प्राप्त करने की एकांतरिक यात्रा है। शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूँ, यानी मुझ में भी वही कल्याणकारी चेतना है का ये बोध ही शिव भक्ति की पराकाष्ठा है, जो अंततः जीव को मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाता है। मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच निवेश और कारोबार के एक मजबूत सेतु के रूप में आगे बढ़ाना लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स में आज इस सोच पर खास जोर रहा। अशिता रघु।
4: मॉरिशस में एक मंच पर जुटी राजनीति, कारोबार और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स के सातवें संस्करण के माध्यम से मॉरिशस के राजनीतिक नेताओं, कारोबारियों, निवेशकों और रचनात्मक जगत की जानी मानी हस्तियों ने एक सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही क्षेत्र में मौजूद निवेश के अवसरों को समझने और मॉरिशस के जरिए दूसरे अफ्रीकी बाजारों तक पहुँच बनाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ।
5: Nous avons une collaboration étroite entre l'Inde et Maurice. Et dans ce contexte-là, nous vous avons remercié M. Vijay Darda et de son organisation LOCMAT qui prend l'initiative de Maurice et M. qui Owen Above qui aujourd'hui peut faire une award cérémonie pour Banjo qui fait un gros succès dans différents secteurs. Mais il prend une occasion pour Banla ouvrir l'Isier qui a une opportunité et dans Maurice.
6: अगर हिंदुस्तान को कुछ करना है, बदलाव लाना है, तो यही गेटवे जो यहाँ से हम लोग अफ्रीका की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हम अफ्रीका क्यों जाना चाहते हैं कि वहाँ की जो मिनरल्स है उनको यूज़ करें हम लोग। यहाँ की जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो बढ़नी चाहिए, इक्वलिटी बढ़नी चाहिए। केवल कुछ इंडस्ट्रीज घराने नहीं पनपने चाहिए, तो साथ साथ में छोटे जो उद्योजक है वही रोजगार दे सकते हैं।
4: सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने मॉरिशस में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में रुचि दिखाते हुए टेक्निक, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सेक्टरों पर चर्चा की।
7: टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मॉरिशस में आके कुछ बिल्ड करें जो इंडिया से हम यहाँ लेके आए। तो हम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आए उसी के साथ साथ हम AI को भी जोड़ रहे हैं। तो AI और ब्लॉकचेन मिलके पूरी देश की जो भी अर्थव्यवस्था है, जो इकोसिस्टम्स है, या जो भी काम करने के तरीके है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ट्रेसेबिलिटी है, आइडेंटिटी है, ऐसी ढेर सारी चीज़ों के लिए हम भारत से मॉरिशस भी आना चाहते हैं, मॉरिशस में निवेश करना चाहते हैं, मॉरिशस में कंपनियां खोलना चाहते हैं।
4: बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह की मौजूदगी ने फिल्म उद्योग और मॉरिशस के बीच संभावित सहयोग, शूटिंग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर भी चर्चा का रास्ता खोला।
8: मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एक तरह का जो सॉफ्ट पावर होता है कंट्री का, जो जो कल्चर्स को जोड़ता है, जो कंट्रीज़ को जोड़ता है, जो बियॉन्ड लैंग्वेज एक तरह का कनेक्ट बनाता है। एंड आई थिंक सिनेमा से बेटर, फिल्म से बेटर और कोई, मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। वी वर इन थाईलैंड, इफ आई लुक राइट आई फेल्ट लाइक आई वाज इन अमेरिका समवेयर, व्हेन आई लुक लेफ्ट, व्हेन आई लुक्ड एट द हिल्स, एंड इट्स जस्ट अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ वेरिड यू नो सीनरीज यू हैव।
4: सम्मेलन में उपस्थित मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को प्रतिष्ठित लोकमत ग्लोबल चेंज मेकर आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो वैश्विक बदलाव में योगदान के लिए अलग अलग राष्ट्र नेताओं को दिया जाता है। कूटनीति से कारोबार तक, टेक्निक से संस्कृति तक, लोकमत वन वर्ल्ड समिट ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग के कई आयामों को एक मंच पर लाने की कोशिश की।
9: और विदेश में ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। नई कार्रवाई के तहत 60 लोगों, संस्थाओं और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले देशों को भी अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था तक पहुँच खोने का खतरा हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी देश या चीनी बैंक को सीधे निशाना नहीं बनाया गया है। उधर तेहरान ने अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने की बात कही है और भरोसा जताया है कि उसके बड़े व्यापारिक साझेदार वाशिंगटन के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल करुणा लालू के साथ।
10: हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि आज रात के दौरान आसमान में बादल घेराएंगे और कल सुबह भी देश के पूर्वी हिस्से तथा ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है। इस बीच देश के पश्चिमी हिस्से तथा सेंट्रल प्लाटो पर बादल घेराएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 26 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और स्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती है। सूर्यास्त 5:59 पर, कल सूर्योदय 6:24 पर।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:23 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: सोहन लेन ग्रैंड पॉइंटोपिमो में 57 साल की 57 years old की श्रीमती दुलहंती गोपी जो विश्वानी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके घर सोहन लेन ग्रैंड पॉइंटोपिमो से उठाकर पॉइंटोपिमो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30। एलियन सन्स रॉयल रोड बुबासे में 69 साल के 69 years old के श्री लोमेश प्रसाद सिंह जगरनोथ जो रोशन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे एलियन सन्स रॉयल रोड बुबासे से उठाकर शिबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: RM2 Radio Musty.
3: 3, 2, 1. Happy birthday!
4: एक साल, एक सफर और हजारों यादें, म्यूजिक के बीच मस्ती की बातें।
5: RM2 रेडियो मस्ती, हर पैशन के संग
4: आपके फेवरेट ट्यून से लेकर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट तक, आपकी स्माइल से लेकर आपकी स्टोरीज तक। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एवरी बीट ऑफ RM2। एक साल में मिले कितने सारे दोस्त और सबसे बढ़कर आपका प्यार। आज वॉल्यूम थोड़ा लाउड करो, स्माइल थोड़ी और ब्राइट करो और सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करो।
6: दिस इज आवर सेलिब्रेशन।
7: Shakyo Time Studio ki ghar mein 6:31 ho chuke hain. You are listening to your number one radio station. Ji haan, that's Radio Musty, and we are celebrating our first anniversary today. So congratulations to you, our listeners. It's your radio. So abhi ke liye aapko yaad dila de that you are listening to Ganesha in your Raftar Vibes. 7 baje tak agar abhi hai saath dene ke liye. And yes, my dear, वैसे ही आपको बता दे कि एक साल, 1 year complete करना easy नहीं होता, लेकिन जब listeners का प्यार साथ होना, so सब कुछ possible होता है. रेडियो मस्ती के फर्स्ट ईयर में आपने हमें जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए हम ट्रूली ग्रेटफुल हैं. और अब सवाल है कि आगे क्या, आगे और म्यूजिक और एंटरटेनमेंट और मोर सरप्राइजेस, मोर क्रेजी मोमेंट्स. यस यस एंड यस माय डियर, बिकॉज रेडियो मस्ती का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो स्टोरी अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ जीना है साथ में हमारे लिसनर्स के साथ. लेकिन फिलहाल के लिए आई गॉट यू अ वाउचर वर्थ 800 rupees. इट्स अ फेस मसाज ऑफर टू यू बाय सीक्रेट ब्यूटी बाय लवना उबिलक पाटपुर. यस, रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रिवाइव, यानी कि फॉर यू माय डियर. अगर आप जीतना चाहोगे राइट नाउ अ वाउचर वर्थ 800 rupees फॉर अ फेस मसाज, गिव मी द राइट आंसर ऑन 54991294 पर 5499124 फुल नेम फुल एड्रेस के साथ. रफ्तार वाइब्स के बाद जो शो आता है 7 से लेकर 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे ऑन रेडियो मस्ती, उस शो का नाम क्या है? रात के 7 o'clock से लेकर 9 o'clock तक जो शो आता है रफ्तार वाइब्स के बाद, उस शो का नाम क्या है? 5499124 फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ. सेंड मी द राइट आंसर एंड ट्राई टू योर लक. यू नेवर नो, अगर लक ने आज आपका साथ दे दिया, यू कैन विन द वाउचर. सो बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर.
5: RM2 रेडियो मस्ती.

0: थर्सडे 26 अगस्त, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RM3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere. Lutavere.
1: Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.

थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑनर रेडियो मस्ती। 6:43 हो चुके हैं गणेश ऑन द माइक और फिलहाल के लिए पूछा गया था एक सवाल, जी हाँ, जो बहुत ही आसान है कि रफ्तार वाइब्स के बाद जो शो आता है 7 से लेकर 9 बजे रात को, उसके उस शो का नाम क्या है? बिल्कुल, 7 से 9 के बीच में जो शो आता है रात को उसका नाम क्या है? एंड द राइट आंसर इज इवनिंग लाउंज। थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्त जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आज का लकी विनर है हमारी प्यारी तेजेश्वरी तिलक फ्रॉम ब्रांच रोड बोना के। शी इज विनिंग अ फेस मसाज ऑफर्ड बाय सीक्रेट ब्यूटी। यस माय डियर, कांग्रेचुलेशंस टू यू। So, आज का लकी विनर तजी स्वी तिलक फ्रॉम ब्रांच रोड बोना के। यस, द आंसर इज इवनिंग लाउंज एंड यू आर विनिंग अ फेस मसाज वर्थ 800 रुपीज ऑफर टू यू बाय सीक्रेट ब्यूटी बाय लव नाउ बिलक पार्पो जो है एट क्यू पिप्स। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस।

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास। जेठा तुलसीदास।
1: महफिल शमा फिरती हो कहां।
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: RM2।

0: साल, एक सफर और हजारों यादें, म्यूजिक के बीच मस्ती की बातें।
1: RM2 रेडियो मस्ती, हर पैशन के संग
0: आपके फेवरेट ट्यून से लेकर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट तक, आपकी स्माइल से लेकर आपकी स्टोरीज तक। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एवरी बीट ऑफ RM2। एक साल में मिले कितने सारे दोस्त और सबसे बढ़कर आपका प्यार। आज वॉल्यूम थोड़ा लाउड करो, स्माइल थोड़ी और ब्राइट करो और सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करो। दिस इज आवर सेलिब्रेशन।
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
5: North, South,
0: 103.5.
5: East, West,
0: 96.4.
5: Center,
0: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: 7 p.m.
0: Evening Lounge.
8: Evening Lounge.
6: RM2
0: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: Let's learn to fall in love again. रेडियो मस्ती के सभी प्यारे सुनने वालों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन इवनिंग लाउंज। द सूथिंग जर्नी टू अ सूथिंग इवनिंग। कुछ बहुत ही निहायत ही रोमांटिक कूल गाने संजय के साथ अभी से रात के 9 बजे तक।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti.
3: इसमें 7:15 हुए हैं, 16 मिनट हो चुके हैं, सबों को नमस्कार, आदाब एंड वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती. सभी लोग यहां पर रेडियो में गियरिंग अप और प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रैंड रन इवेंट ऑफ टुमारो, सेलिब्रेटिंग वन इयर्स ऑफ टुगेदरनेस. आप सभी श्रोताओं के संग ऑल आवर फिडल लिसनर्स जो हमेशा 24 घंटे हर एक दिन हर एक सप्ताह में 7 days अ वीक 366 days अ ईयर हमारा साथ निभाया, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद. और हम भी आपसे मिलने आ रहे हैं. फिलहाल एक क्वीज करना चाहते हैं आपके संग. अगर आप हमें सही जवाब देते हैं तो आपको मिलता है एला बुचिक वाक्वा की ओर से ₹500 का एक गिफ्ट वाउचर. एला बुचिक वाक्वा की ओर से ₹500 का एक गिफ्ट वाउचर. और इसको हासिल करने के लिए आपको हमें बस इस सवाल का जवाब देना है. आप पूरे मॉरिशस में यू कैन लिसन टू रेडियो मस्ती ऑन फ्री फ्रीक्वेंसीज, जैसे कहते हैं मेगाहर्ट्ज एफएम. आप इन फ्री फ्रीक्वेंसीज को शामिल करें, अपने मैसेज में हमें बताएं कौन से फ्री 3 frequencies पर आप रेडियो मस्ती को हासिल कर सकते हैं इन मॉरिशस, और हमें भेजें अपने अपने नाम और अपने पूरे पता के साथ ऑन 5499-1294. अगर अभी हाल में आपकी जीत हुई है तो कृपया प्लीज लिव द चांस टू फॉर अदर्स टू विन दिस गिफ्ट वाउचर. थैंक यू वेरी मच.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: प्यार तो होना ही था, जब ऐसे गाने चल रहे हैं तो प्यार अवश्य होता है। सो कुछ समय पहले हमने आपसे सवाल किया था, आपसे सवाल किया था कि what are the frequencies of Radio Masti, and the frequencies are 99.4, 103.5 और 96.4। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने पहले जीत भी चुके हैं। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समवन हु इज नॉट येट वन एनी इन द नियर हिस्ट्री, और जिनके नाम जाता है ये इनाम ऑफ 500 रुपीज वाउचर गिफ्ट ऑफर्ड बाय इला बुचिक वाकवा, वो है यास्मीन रस्तम ऑफ बेलेयर रिविया सेश। यास्मीन जी, आपको बधाई हो, यू विन 500 रुपीज गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय इला बुचिक वाकवा। आपको बहुत जल्द एमबीसी से कोई कॉन्टैक्ट करेगा एंड विल टेल यू हाउ यू गोइंग टू कम टू गेट योर वाउचर। एक बार फिर बधाई, और जितने भी लोगों ने भाग लिया आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इवनिंग लाउंज,
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2,
0: रेडियो मस्ती।

0: Thursday, 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together. Let's dance together. Let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain. Goodlands New Market, दिन के 10 बजे से 11 बजे तक पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ सेव द डेट सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर तो जरूर हमारा इंतजार करें साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी गुडलैंड्स पोर्ट लुइस रॉसवेल एंड फ्लैक तैयार हो जाइए हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी Sponsored by Lutavere.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

0: इवनिंग लाउंज
1: संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। बढ़ते हैं अगले क्विज के साथ, व्हिच विल अलाउ यू टू विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड बाय एस्थेटिका एस्पास बूटी पोलवी। यस, 500 रुपीस का एक गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड टू यू बाय एस्थेटिका एस्पास बूटी पोलवी। और इसको जीतने के लिए आप हमें इस बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल प्रश्न का जवाब दीजिए बाय सेंडिंग ए मैसेज ऑन 5499294। अपना नाम और अपना पता अवश्य ज़रूर इसमें शामिल करें। आप हमें बताएं, वैसे तो रेडियो मसी इज़ नॉट ओनली म्यूज़िक, इट्स ओनली लॉट्स ऑफ फन, इट्स ऑल्सो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और देश विदेश की खबरें। सो आप हमें बताएं कि रेडियो मस्ती पर जो पहला फ्लैश चलता है, रेडियो मस्ती पर जो पहला फ्लैश चलता है वो कितने बजे चलता है, जो पहला फ्लैश चलता है वो कितने बजे चलता है। आपका जवाब ऑन 5499 1294।

0: जी रात के 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। हमने आपसे कहा कि रेडियो मसीह पर इट इज़ नॉट ओनली म्यूज़िक, म्यूज़िक के अलावा दर इज़ बहुत बहुत और कुछ, मस्ती ही होती हैं लेकिन जानकारियां भी होती हैं, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल, देश विदेश की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और हमने आपसे सवाल किया कि रेडियो मस्ती पर जो पहला न्यूज़ फ्लैश चलता है वो कितने बजे चलता है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर समवन हु हैज नॉट वॉन अभी तक ऑन रेडियो मस्ती। अगर कोई है वैसा तो आप हमें झट से मैसेज कीजिए ऑन 5499 1294।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The
5: Musti. It's 8 p.m.
6: 3, 2, 1.
7: एक साल एक सफर और हजारों यादें म्यूजिक के बीच मस्ती की बातें
8: RM2 रेडियो मस्ती हर पैशन के संग
7: आपके फेवरेट ट्यून से लेकर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट तक आपकी स्माइल से लेकर आपकी स्टोरीज तक यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एवरी बीट ऑफ RM2 एक साल में मिले कितने सारे दोस्त और सबसे बढ़कर आपका प्यार आज बोलियो थोड़ा लाउड करो स्माइल थोड़ी और ब्राइट करो और सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करो
9: दिस इज आवर सेलिब्रेशन
6: हैप्पी बर्थडे
7: इवनिंग लाउंज
10: इवनिंग लाउंज
4: RM2
0: रेडियो मस्ती

0: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Masti.
1: पिंजरा तोड़ के उड़ जाना, it's the final destination कि एक दिन हमें सब छोड़कर जाना ही होगा. लेकिन उससे पहले भी, it's to transcend our limitations and to achieve our full potential. ये भी है इस गाने का अर्थ. नमस्कार आदाब and welcome on the frequencies of Radio Masti. ये है इवनिंग लाउंज संजय के साथ. और कुछ समय पहले हमने एक सवाल किया था कि कितने बजे दिन के 24 आवर्स में हमारा पहला फ्लैश चलता है. बिकॉज रेडियो मस्ती इज़ नॉट ओनली म्यूजिक, इट्स इंफॉर्मेशन, इट्स

0: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा।
1: पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बधाने आरएम 2 अने आरएम 3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ।
2: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
3: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु।
4: इनिय मुदल आंडु निरेवु नलवाटुकल ऑरेंज फ्री ऑरएम 2
5: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
6: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।
7: साल भर में सबसे प्यारा होता है
8: इवनिंग लाउंज।
9: इवनिंग लाउंज
10: RM2
11: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: हमारे आप मिल रहे हैं ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती, 24 घंटे आपकी सेवा में, 7 डेज अ वीक, 366 डेज अ ईयर। अब की बार टाइम टू प्ले अगेन एक बहुत ही सिंपल सा क्विज। आपने हमें ये तो बता दिया कि सुबह को जो पहला फ्लैश चलता है वो 6 बजे चलता है। अब पूरे दिन के दौरान एक फ्लैश होता है जो अंग्रेजी में होता है। देर इज अ फ्लैश एटलीस्ट वंस पर डे जो चलता है और वो अंग्रेजी में चलता है। आप हमें बताएं कि रेडियो मस्ती पर कौन सी फ्लैश कितने बजे की फ्लैश अंग्रेजी में चलती है। आपका जवाब ऑन 5499294। एंड वंस अगेन वी रिमाइंड यू, प्लीज लेट अदर्स विन, जिन्होंने अभी तक कोई इनाम नहीं जीता है ऑन रेडियो मस्ती। नाउ अगर आपका कोई दोस्त है, व्हिच यू कैन कॉल एंड टेल टू लिसन टू रेडियो मस्ती एंड टू सेंड मैसेज, आई डोंट माइंड बट आई नीड समवन जिन्होंने अभी तक कोई इनाम नहीं जीता है। आई डू होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप हमें बताएं कि रेडियो मस्ती पर कौन सी फ्लैश, कितने बजे की फ्लैश चलती हैं जो हिंदी में नहीं अपितु अंग्रेजी में होती है। 5499294 एंड विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर्ड बाय रुस्टिक आर्ट। अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर्ड बाय रुस्टिक आर्ट एट नवेली सैंपल फिनिक्स।

0: 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways, distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market din ke 10 baje se 11 baje tak. Port Louis Urban Terminal Mall din ke 12 baje se 1 baje tak. Roswell Mall by West din ke 2 baje se 3 baje tak. Flak Taxi Stand next to bus station sham ke 4 baje se 5 baje tak. सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ. सेव द डेट, सेव द डेट. बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें. साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. फर्स्ट एनिवर्सरी. गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए. हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26th of August को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. Sponsored by Lutavere. Lutavere.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musty.

आठ बजकर 31 मिनट यू लिसनिंग टू इवनिंग लाउंज संजय के साथ थैंक यू जहां पर भी से आप हमारा साथ निभा रहे हैं विशिंग यू ऑल अ वेरी सूदिंग इवनिंग बॉन वॉयज इफ यू आर टू वर्क एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम इफ यू आर ड्राइविंग सो हमने आपसे सवाल किया कि पूरे दिन के दौरान ऑन द आवर यू हैव फ्लैशेस और ज़्यादातर फ्लैशेस और इन हिंदी कभी भोजपुरी में होता है भोजपुरी वाला फ्लैश तो 8 बजे होता है हमने आपसे पूछा कि एक फ्लैश जो अंग्रेजी में होता है और वो कितने बजे का फ्लैश होता है और बहुत सारे सही जवाब आए बट आई वॉज वेटिंग फॉर द सही जवाब एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अभी तक नहीं जीता है एंड वो जवाब हमें मिला फ्रॉम मिस्टर नवीन सोला ऑफ फ्लोरियाल सही जवाब 17 आवर्स थैंक यू नवीन सोला जी और इतने सारे सही जवाब हमें मिले इस बात का सबूत है कि यू लिसन टू रेडियो मसी वेरी अटेंटिवली और आपको पता है कि कितने बजे क्या होता है कितने बजे फ्लैशेस होते हैं कितने बजे कौन सा प्रोग्राम आता है किस तरह के गाने सुनने को मिलते हैं इट्स ऑल अ कॉन्ट्रा दे कॉन्फियंस जैसे कहते हैं विद आवर लिसनर्स एंड अस इट्स अ प्रिविलेज टू बी सर्विंग द नेशन इन दिस वे एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी हैविंग सच गुड लिसनर्स एज यू डियर लिसनर्स ऑफ रेडियो मसी सो एक बार फिर नवीन भाई को बहुत बहुत बधाई You are winning a gift voucher worth 500 rupees offered to you by Rustic Art. आप रहते हैं फ्लोरियाल, so it won't be difficult for you क्योंकि Rustic Art at Naveli is at Saint Paul Phoenix, very near to your place. So Naveen ji, आप को बहुत जल्द कोई contact करने वाला है from the embassy to inform you of how you're going to get your gift voucher worth 500 rupees. जितने भी लोगों ने भाग लिया आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद Thank you very much and keep on playing with Radio Masti.

0: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: साल, एक सफर और हजारों यादें। म्यूजिक के बीच मस्ती की बातें।
1: RM2 रेडियो मस्ती, हर पैशन के संग।
0: आपके फेवरेट ट्यून से लेकर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट तक, आपकी स्माइल से लेकर आपकी स्टोरीज तक। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एवरी बीट ऑफ RM2। एक साल में मिले कितने सारे दोस्त और सबसे बढ़कर आपका प्यार। आज वॉल्यूम थोड़ा लाउड करो, स्माइल थोड़ी और ब्राइट करो और सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करो। दिस इज आवर सेलिब्रेशन।

बहुत सारे आपके मैसेजेस आए हैं माला जी को हम करते हैं सलाम थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन दिस म्यूजिकल कारवा और ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है इनकी ओर से नाम लिखा है यस मिस्टर कविराज गिरधारी उन्होंने कहा कि उनको प्रोग्राम कैंपस बहुत ही अच्छा लगता था एंड ही वुड सो मच लव टू हैव इट अगेन क्या करें जी क्या कहें आपको कविराज भाई सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है बट थैंक यू फॉर लविंग गुड रिसर्च टू प्रोग्राम्स लाइक दैट नेक्स्ट सॉन्ग आल्सो गोइंग इनके लिए जिन्होंने लिखा है कि संजय विकास सुमी उषा परी दिव्या ये हैं ऋषि जी की ओर से मैसेज लिखते हैं best of luck for tomorrow more many years to come RM2 RM3 you are a 7-star teams intertwined with lots of love and 24-car golden smile thanks for this message Rishi ji and the next one goes for you and for all those jo is samay hamare saath jude hue hain

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे.
4: लड़की बड़ी अनजानी है.
0: Radio Musti, all the way.
5: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.

सो वेल फ्रेंड्स, रात का समय और आज का दिन है वेरी खास एंड स्पेशल. सो वेलकम टू योर लेट नाइट ग्रूव्स एंड यस, सेलिब्रेटिंग वन ईयर. RM2 RM3 ने कंप्लीट किए हैं अपने वन ईयर और इस सेलिब्रेशन में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं. तो चलिए दोस्तों, कुछ ब्यूटीफुल गानों के साथ आपकी रात को सजाएंगे. मैं हूं परी आपके साथ रात के 12 बजे तक.

So, यहाँ पर खूबसूरत गाने चल रहे हैं और जैसे हमने कहा कि सेलिब्रेशन मोड इज ऑन, 365 डेज पास हो चुके हैं और पता भी नहीं चला कि कब ये एक साल की जर्नी यहाँ तक पहुँच गई. सो थैंक यू, आपका प्यार आपका साथ हमेशा हमारे संग रहा एंड ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे ये वादा रहा. अभी के लिए साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

चलिए दोस्तों, रात के इस समय में कुछ खूबसूरत गाने शामिल हो रहे हैं और आप भी हमारे म्यूजिकल हमसफर बने हुए हैं। सो आई एम श्योर आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग डे अब टाइम है आप था जहां पर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं और इन गानों को सुनते हुए आपकी रात थोड़ी सी और म्यूजिकल मैजिकल बन रही है। वी डू होप, एंड साथ देने के लिए शुक्रिया। अगला गाना आप सभी के नाम।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

A warm welcome, हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. वेल, रात के 11 तो बज चुके हैं, एक्चुअली रात के 10 बज चुके हैं और हमारे साथ कनेक्टेड है आप. सो आई एम श्योर दैट इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं. एंड लाइक वी सेड, वी आर सेलिब्रेटिंग वन ईयर, एक साल कंप्लीट किया है RM2 रेडियो मस्ती ने. सो आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है और इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा. अभी के लिए कुछ और प्यारे गाने आपके लिए लेकर आएंगे रात के 12 बजे तक.

गाने तो होते हैं खास एंड कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको स्पेशल फील करवाते हैं. लाइक वी सेड के मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक भागदौड़ में वक्त का पता कहाँ चलता है. पता तो तब चलता है जब रात आगे बढ़ती है और वक्त थोड़ा सा ऐसे होता है जहाँ पर आप रिलैक्स करते हुए गानों को सुनते हैं और गानों के जो लिरिक्स हैं उन्हें समझते हैं. सो आई डू होप दैट ये जो गाने हैं आपको अभी अच्छा फील करवा रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ.

So well, गाने तो होते हैं खास एंड कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको स्पेशल फील करवाते हैं. लाइक वी सेड के मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक भागदौड़ में वक्त का पता कहाँ चलता है. पता तो तब चलता है जब रात आगे बढ़ती है और वक्त थोड़ा सा ऐसे होता है जहाँ पर आप रिलैक्स करते हुए गानों को सुनते हैं और गानों के जो लिरिक्स हैं उन्हें समझते हैं. सो आई डू होप दैट ये जो गाने हैं आपको अभी अच्छा फील करवा रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर एवरी वन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ.

खूबसूरत गाने चलते रहेंगे और आपका साथ भी हमारे लिए खास एंड स्पेशल। थैंक यू फॉर वन ईयर और अभी तो बस जर्नी शुरू हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले गीत के साथ।

एंड विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं अगली आवर की ओर. म्यूजिक विल स्टिल कंटिन्यू और आपका साथ भी हमारे साथ बना रहेगा. सो इधर आप लेट नाइट काम कर रहे हैं यानी कि नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर अभी आराम से हमारे गानों को एंजॉय कर रहे हैं जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, दैट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स. मैं हूं परी आपके साथ, मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट आवर.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ,
4: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट,
4: 96.4,
3: सेंटर,
4: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

एक बार फिर आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यस, टाइम तो पास होते जा रहा है लेकिन गानों का कारवां जारी है। आपका साथ, आपका प्यार ऑलवेज स्पेशल, सो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे म्यूजिकल हमसफर बनने के लिए और RM2 रेडियो मस्ती को चुनने के लिए एज योर रेडियो पार्टनर। अभी के लिए साथ देने के लिए शुक्रिया एंड नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू ऑल।

प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हम चला रहे हैं रात का टाइम अंदाज से और लेट नाइट ग्रूव्स. वेल फ्रेंड्स, आरएम टू रेडियो मस्ती, जितना प्यार आपने दिया है उसके लिए तो हम आपको जितना थैंक यू कहे उतना कम है, लेकिन बस अभी के लिए थैंक यू कहने के लिए वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. डेडिकेट करेंगे ये सारे गाने हमारे सभी लिसनर्स के लिए.

That was a beautiful track. 90s हो या फिर मिलेनियल के गाने या फिर कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आते हैं हमारे इस लेट नाइट ग्रूव्स प्रोग्राम में, जहां पर गाने जो हैं वो थोड़े से स्लो डाउन होते हैं और मूड जो है वो एकदम मस्त, एकदम रोमांटिक रहता है. सो थैंक यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, साथ देने के लिए शुक्रिया. अगला प्यारा सा गाना आप सभी के लिए. So

एंड वेल दोस्तों, हम वन ईयर सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं और जहां पर हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग से लेकर रात तक डिफरेंट शोज हम लेकर आते हैं, नए गाने हो या फिर पुराने गाने, आपको सब कुछ मिलता है ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो बस कोशिश यही रहेगी कि ये प्यारे प्यारे सुर जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहें, आपके फेवरेट सिंगर्स की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहे, आपकी फेवरेट मेलोडीज आप तक पहुंचाते रहे। साथ देने के लिए शुक्रिया। परी का साथ है रात के 12 बजे तक।

And well friends, with this खूबसूरत गाना, it's time for Pari to say goodbye. लेकिन आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा. मुलाकात होगी आपसे जल्द, लेकिन गाने चलते रहेंगे 24/7 आपके लिए on RM2 Radio Masti. One year celebration, once again आपको तहे दिल से कहेंगे thank you, शुक्रिया, धन्यवाद. साथ देते रहिए and have a great night.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2, Radio Musti.

26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market din ke 10 baje se 11 baje tak. Port Louis Urban Terminal Mall din ke 12 baje se 1 baje tak. Roswell Mall by West din ke 2 baje se 3 baje tak. Flak Taxi Stand next to bus station sham ke 4 baje se 5 baje tak. सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ. सेव द डेट, सेव द डेट. बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें. साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. फर्स्ट एनिवर्सरी गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैग. तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26th of August को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. Sponsored by Lutavere.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: हो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।